90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज के इस प्रसारण सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, मैं सुनीता सिंह।

श्रोताओं, आज शनिवार है। विक्रम संवत 2083 के ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की 30वीं तिथि और शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि। तदनुसार 16 मई सन 2026। इस समय 7:04 और 55 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, प्रकृति ने एक कोरा सा दिन हमारी हथेलियों पर रख दिया है, एक उजला मुस्कुराता हुआ कोरा सा दिन। अब इस दिन को किस दिशा में लेकर चलना है, इस दिन को अपने किन कार्यों से सजाना है, संवारना है, ये हमारे ऊपर है। अक्सर मनुष्य चाहता है कि उसकी जो जिंदगी है उसके मन मुताबिक चले, उसकी चाही हुई राहों पर चले। लेकिन सूत्र ये है कि जिसका दिन उसकी चाही हुई राहों पर चलता है, जिंदगी उसी की किसी मनुष्य के मन मुताबिक चल पाती है। यानी अपने दिन को वो दिशा दें जिस दिशा में आप अपनी जिंदगी को देखना चाहते हैं। इसी सुंदर और सकारात्मक विचार के साथ आइए प्रवेश करते हैं आज के दिन में, और आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास लेकर हम उपस्थित हुए हैं आज की इस सभा में। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ, उसके बाद अक्षय निधि का प्रसारण होगा और फिर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। सुबह 8 बजे वतन का राग कार्यक्रम में हम बात करेंगे मंगल पांडे की। इतिहास के पन्नों से इस कार्यक्रम में सुबह 8:30 बजे आप सुनेंगे रानी दुर्गावती की विजय की गाथा। योग संवाद, ये कार्यक्रम 9 बजे आप तक पहुंचेगा। आज की चर्चा का विषय श्री राम की वैराग्य दशा। भारत विभूति कार्यक्रम में सुबह 9:30 बजे आप सुनेंगे योगाचार्य BKS अयंगर पर केंद्रित कार्यक्रम। नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा सुबह 10 बजे। 10:30 बजे आजाद हिंद कार्यक्रम में हम बात करेंगे मृगेंद्र कुमार दत्त और रामकृष्ण राय की। सुर सागर, ये कार्यक्रम 11 बजे प्रसारित होगा। इसमें आज आप भक्ति गायन सुनेंगे कलाकार राम भावसार। और 11:30 बजे सुनिएगा धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद की 47वीं कड़ी। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद आप सुनेंगे आज की पहली प्रस्तुति कार्यक्रम जीवन सौरभ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जीवन सौरभ। भगवान बुद्ध के सुविचार। अगर आप अपने जीवन में असफल हैं तो इसका यह अर्थ है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं। आपका अतीत कितना ही कठिन क्यों ना हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें। जिस प्रकार मोमबत्ती आग के बिना जल नहीं सकती, उसी प्रकार मनुष्य भी बिना आध्यात्मिकता के नहीं जी सकता। आप अपनी स्वयं की क्षमता से कार्य करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। अगर आप पानी को हाथ से पकड़ोगे तो आपके हाथ से छूट जाएगा, इसीलिए उसे बहने दो, क्योंकि वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। उसी प्रकार जब आपको अपने जीवन में घटित होने वाली परिस्थितियां समझ में ना आए तो शांत और तटस्थ भाव से उसे देखें, क्योंकि समय आने पर वह अपना मार्ग स्वयं बना लेगा। भगवान बुद्ध के सुविचार। इन सुविचारों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जीवन सौरभ।

0: मैं हूँ मितुल प्रदीप, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद जैसे अक्षय निधि हैं। यही अक्षय निधि डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी के स्वर में आपके लिए।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 112 से वाचन। ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं द्वावा, पृथ्वी, अग्नि और अश्विनी कुमार। छंद है जगति और त्रिष्टुप।
1: ईडे द्यावा पृथ्वी पूर्व चित्तये अग्निम घर्मम सुरुचम यामनिष्टये याभिर भरे कारमंशाय जिन्वथस्ताभिरु शु उति भिरश्विनागतम द्युलोक भूलोक तथा भली प्रकार प्रज्वलित तापयुक्त अग्नि की हम सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं। हे अश्विनी देवो, जिनसे कर्मशील पुरुषार्थी व्यक्ति को समर क्षेत्र में अपना भाग ग्रहण करने के लिए आपका मार्गदर्शन मिलता है, उन संरक्षण साधनों के साथ आप दोनों हमारे यहाँ पधारें। युवोर्दानाय सुभरा असश्चतो रथमा तस्थुर्वचसं न मन्तवे याभिर् धृष्यो वधः कर्मन्निष्टये ताभिरु शु उति भिरश्विनागतम। हे अश्विनी देवो, भरण पोषण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति जिस प्रकार इधर उधर न भटक कर ज्ञानी जनों के पास जाते हैं, उसी प्रकार आपके रथ के समीप दान ग्रहण करने के लिए साधक स्थित रहते हैं। जिन संरक्षण शक्तियों से आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनकी बुद्धियों और कर्मों को प्रेरित करते हैं, उन्हीं शक्तियों के साथ आप दोनों भली प्रकार यहां पधारें। युवं तासाम दिव्यस्य प्रशासने विषाम क्षयथो अमृतस्य मज्मना याभिर्धेनुमस्वं पिन्वथो नरा ताभिरु शु उतिभिरश्विनागतम। हे नेतृत्व गुण युक्त अश्विनी कुमारो, आप दोनों दिव्य लोक में उत्पन्न हुए, सोमरस के पीने से अमर और बलशाली बने तथा उसी बल से इन सभी प्रजाजनों पर शासन करते हैं। आपने जिन चिकित्सा प्रणालियों से बंध्या अर्थात प्रजनन क्षमता से रहित गौओं को प्रजनन योग्य हृष्ट पुष्ट और दुधारू बनाया, उन संरक्षण साधनों सहित आप निश्चित ही हमारे यहाँ पधारें। याभिः परिज्मा तनयस्य मज्मना द्विमाता तूर्षु तरणिर विभूषति याभिस्त्रिमंतुर भवद्विच क्षणस्ताभिरु शु ऊति भिरश्विना गतम। सर्वत्र विचरणशील वायुदेव और अग्निदेव जिस बल से दो माताओं अरणियों से उत्पन्न होकर अति गतिशील होकर विशेष शोभायमान होते हैं तथा कक्षीवान ऋषि जिन तीन साधन रूपी यज्ञों से विशिष्ट ज्ञानवान बने हैं, हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों उन संरक्षण साधनों के साथ हमारे यहाँ पधारें। याभी रेभम निवृतम सितमद्भय उद्वंद मैरयतम स्वर्दृशे याभि कर्णवम प्र सिशा संतमावतम ताभिरु शु ऊति भिरश्विना गतम। हे अश्विनी कुमारो, जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने जल में संपूर्ण स्थिति में डूबे और बंधन युक्त रेभ तथा वंदन को बाहर निकालकर प्रकाश के दर्शन योग्य बनाया, जिस प्रकार साधनारत कर्णव को संरक्षण साधनों द्वारा उचित रीति से समर्थ बनाया, उन्हीं संरक्षण युक्त साधनों के साथ आप हमारे यहां पधारें। याभिरंतकम जसमान मारणे भुज्युम याभिरव्यथि भिर जिजन्वथुः याभिः करकंधुम वैयम च जिन्वथस्ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम। हे अश्विनी देवो, जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने कूप गर्त में पड़े और कष्ट पीड़ित राजर्षि अंतक को बाहर निकाला, जिस कड़ी मेहनत से तुग्र पुत्र भुज्यु को सुरक्षित किया और करकेंधु तथा वैय की जिन संरक्षण साधनों से युक्त होकर रक्षा की, उन संरक्षण साधनों से युक्त होकर आप हमारे यहां पधारें। याभि शुचंतिम धनसाम सुषम सदम तप्तम घर्म मोम्या वंतमत्रये। याभि प्रिष्णगुम पुरुकुत्समावतम ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम। हे अश्विनी कुमारो, जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने धन वितरण करता शुचंती को श्रेष्ठ निवास योग्य स्थान दिया, अत्रि ऋषि के लिए तप्त बंदी गृह को शांत किया तथा प्रिष्णिगु तथा पुरुकुत्स को सुरक्षित किया, उन संरक्षण सामर्थ्यों से युक्त होकर आप हमारे यहां पधारें। याभि शचीभिर्वृषणा परावृजम प्रांधम श्रोणम चक्षस एतवे कृथः। याभिर्वर्तिकाम ग्रसिता ममुंचतम ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम। हे अश्विनी कुमारो, जिस सामर्थ्य से आपने पंगु परावृक ऋषि को, नेत्रहीन रिज्राश्व को और पैरों से लंगड़े श्रोण को दृष्टि युक्त करके पांवों से चलने फिरने योग्य बनाया, भेड़ियों द्वारा मुख में पकड़ी हुई दांतों से घायल चिड़िया को अपनी सामर्थ्य से मुक्त करके आरोग्य प्रदान किया, उन आरोग्य प्रद चिकित्सा साधनों के साथ आप हमारे यहां पधारें। याभि सिंधुम मधुमंत मशश्चतम वसिष्ठम याभि रजरा वजिन्वतम याभि कुत्सम श्रुतरियम नर्यमावतम ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम। हे चिर युवा अश्विनी कुमारो, आप दोनों ने जिस सामर्थ्य से मधुर जल रूप रस वाली नदियों को प्रवाहित किया, जिससे वशिष्ठ कुत्स श्रुतर्य और नर्य को शत्रुओं से सुरक्षित किया, उन्हीं संरक्षण साधनों के साथ आप हमारे यहां उपस्थित हों। याभिर विश्पलाम धनसामथर्व्यम सहस्र मीडह आजा वजिन्वतम याभिर वशमश्यम प्रेणी मावतम ताभिरु शु उतिभिरश्विना गतम। हे अश्विनी कुमारो, जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने हजारों योद्धाओं द्वारा लड़े जा रहे समर क्षेत्र में अथर्व वंश में उत्पन्न धनदात्री विषपला का सहयोग किया तथा प्रेरणा प्रद अश्वराज के पुत्र वश ऋषि को संरक्षित किया, उन्हीं संरक्षण सामर्थ्यों के साथ आप हमारे यहां अवश्य पधारें। या भी सुदानु औषिजाय वणिजे दीर्घ श्रवसे मधुकोशो अक्षरत कक्षीवंतम स्तोतारम याभिरावतम ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम। हे श्रेष्ठ दानदाता अश्विनी कुमारो, जिस सामर्थ्य से आपने उषिक पुत्र दीर्घश्रवा नामक व्यापारी के लिए मधु के भंडार प्रदान किए तथा स्तोत्रकर्ता कक्षीवान को सुरक्षित किया, उन्हीं संरक्षण शक्तियों के साथ आप दोनों हमारे यहां अवश्य पधारें। याभी रसाम क्षोदसोदनः पिपिन वथुरनश्वम याभी रथमावतम जिशे याभिस्त्रिशोक उस्रिया उदाजत ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम। हे अश्विनी कुमारो, जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने नदी के तटों को जलों से भरपूर किया, जिससे अश्वों से रहित रथ को तेज गति से चलाकर शत्रु को पराजित करके विजय उपलब्ध की तथा कर्ण व पुत्र त्रिशोक के लिए दुधारू गौओं को प्रदान किया, उन्हीं संरक्षण सामर्थ्यों के साथ आप हमारे यहां पदार्पण करें। याभि सूर्यम परियाथः परावती मंधातारम क्षौत्रपत्येष्वावतम याभिर्विप्रम प्र भरद्वाजमावतम ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम। हे अश्विनी कुमारो, जिस सामर्थ्य से आप दोनों दूर स्थित सूर्य देव के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, आप दोनों ने जिस प्रकार मानधाता को क्षेत्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करने की सामर्थ्य प्रदान की तथा ज्ञान संपन्न भरद्वाज को जिन श्रेष्ठ सुरक्षा साधनों द्वारा बचाया, उन्हीं सामर्थ्य युक्त साधनों के साथ हमारे यहां पधारें। याभिर महामति थिग्वम कशोजुवम दिवो दासम शंबर हत्य आवतम याभिः पूर्भिद्ये त्रसदस्युमावतम ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम। हे अश्विनी कुमारो, जिन सामर्थ्यों से शंबर का वध करने वाले संग्राम में अतिथिग्व कुशोजुव और महान दिवोदास को आप दोनों ने संरक्षण प्रदान किया था, शत्रु नगरों को ध्वस्त करने वाले संग्राम में त्रसदस्यु दस्युओं को संत्रस्त करने वाले राजा को संरक्षित किया था, उन्हीं संरक्षण सामर्थ्यों के साथ आप हमारे यहां उपस्थित हों। याभिर्वर्मम् विपिपानमुपस्तुतम् कलिम् याभिर्वित्तजानिम् दुवस्यथः याभिर्व्यश्वमुत पृथिमावतम् ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम्। हे अश्विनी कुमारो, जिन सामर्थ्यों से सोमरस पान करने वाले निकटस्थ लोगों द्वारा प्रशंसनीय वर्म ऋषि को आप दोनों ने संरक्षित किया, जिनसे धर्म पत्नी सहित कलि ऋषि को संरक्षित किया तथा अश्वरहित पृथ्वी को संरक्षित किया था, उन सभी सुरक्षा साधनों से आप यहां आए। याभिर नरा शयवे याभिरत्रये याभिः पुरा मनवे गातु मीशतुः याभिः शारी राजतम स्यूम रश्मये ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम्। नेतृत्व क्षमता संपन्न हे अश्विनी कुमारो, जिन सामर्थ्यों से शयु का सहयोग देने के लिए जिनसे अत्रि ऋषि को कारागृह से मुक्त करने के लिए जिनसे मनु को पुरातन समय में दुख से निवृत्त होने का रास्ता आप दोनों ने बताया था तथा शत्रु सेना पर बाणों का प्रहार करके स्यूम रश्मि की रक्षा की, उन्हीं समस्त संरक्षण सामर्थ्यों से युक्त आप हमारे यहां पधारें। या भी पठर्वा जठरस्य मज्मनाग्निर् नादीदे चित इद्धो अजमन्ना याभि शरिया यतमवथो महाधने ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम्। हे अश्विनी कुमारो, आपकी जिन सामर्थ्यों का सहयोग पाकर समिधाओं से प्रदीप्त तेजस्विता युक्त अग्नि के समान ही पठर्वा राजा युद्ध में अपनी शारीरिक शक्ति से अति तेजस्वी बना था, विशाल संपदा अर्जित करने वाले संग्राम में आप दोनों ने शर्यात को जिनसे संरक्षित किया था, उन्हीं संरक्षण सामर्थ्यों के साथ आप यहां पधारें। याभिरंगिरो मनसा निरण्यथोग्रम गच्छथो विवरे गो अर्णसः याभिर्मनुम शूरमिषा समावतम ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम्। हे अश्विनी कुमारों, आंगी रसों द्वारा श्रद्धापूर्वक आप दोनों की स्तुति किए जाने पर जिस सामर्थ्य से आपने उन्हें संतुष्ट किया, चुराए गए गौ समूह को प्राप्त करने के लिए गुफा के दरवाजे में आप दोनों ही आगे जाते हैं तथा जिस सामर्थ्य से शूरवीर मनु को संग्राम में चतुर अन्न सामग्री द्वारा सुरक्षित किया, उन्हीं संपूर्ण सामर्थ्यों के साथ आप दोनों हमारे यहां आए। या भी पत्नीर विमदाय न्यूह थुरा घवा या भी ररुणी रशिक्षतम या भी सुदास ऊहथु सुदेव्यम ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम्। हे अश्विनी कुमारों, जिन सामर्थ्यों से आप दोनों ने विमद की धर्म पत्नियों को उनके निवास स्थान पर पहुंचाया, लाल वर्ण की घोड़ियों को भली प्रकार प्रशिक्षित किया अथवा लाल रंग की उषाकालीन किरणों को मनुष्यों के लिए प्रेरित किया तथा पिजवन पुत्र सुदास को दिव्य संपदा प्रदान की। उन्हीं प्रेरणा प्रद शक्तियों के साथ हमारे यहाँ पधारें। याभिः शन्ताति भवथो ददाशुषे भुज्युम याभिः रवथो याभिः रघ्रिगुम ओम्यावतीं सुभरामृतस्तुभं ताभिरु शु ऊतिभिरश्विनागतम्। हे अश्विनी देवो, जिन सामर्थ्यों से आप दानी मनुष्यों के लिए सुखद बने, भुज्यु और अधिगु को आपने संरक्षित किया तथा ऋतस्तुभ को श्रेष्ठ पौष्टिक और आनंदप्रद अन्न सामग्री प्रदान की। उन्हीं सुखदायक सामर्थ्यों के साथ आप दोनों हमारे यहाँ पदार्पण करें। याभिः कृशानुमसने दुवस्यथो जवे याभिर्यूनो अर्वन्तमावतम् मधुप्रियं भरथो यत्सरंभ्यस्ताभिरुषु ऊतिभिरश्विनागतम्। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने जिन सामर्थ्यों से कृशानु का संग्राम में सहयोग किया, नवयुवा पुरुकुत्स के गतिशील अश्व को संरक्षित किया तथा मधुमक्खियों के लिए मधुर शहद उत्पन्न किया, उन्हीं संरक्षण साधनों के द्वारा आप हमारे यहाँ आए। याभिर नरम गोशु युधम नृषाह्ये क्षेत्रस्य साता तनयस्य जिन्वथः याभिरथाम अवथो याभिरवर्तस्ताभिरुषु ऊतिभिरश्विनागतम्। हे अश्विनी कुमारो, जिन सामर्थ्यों से आप गौओं के संरक्षणार्थ संघर्षशील योद्धाओं को और कृषि उत्पादनों की वितरण वेला में कृषकों को पारस्परिक कलह से संरक्षित करते हैं तथा वीरों के रथों और अश्वों की सुरक्षा करते हैं, उन्हीं सामर्थ्यों सहित आप दोनों उत्तम रीति से यहाँ आए। याभि कुत्समार्जुनेयम् शतक्रतु प्रतुर्वीतिम् प्रच दभीतिमावतम् याभिरध्वं संतिम् पुरुषंतिमावतम् ताभिरु शु ऊतिभिरश्विनागतम्। सैकड़ों यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म संपन्न करने वाले हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने जिन सामर्थ्यों से अर्जुन के पुत्र कुत्स तुर्वीति एवं दधीति को तथा ध्वसंति और पुरुषंति ऋषियों को संरक्षण प्रदान किया, उन्हीं सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ आप श्रेष्ठ विधि से यहाँ पदार्पण करें। अपनस्वतीमश्विना वाचमस्मे कृतम नो दस्रा वृषणा मनीषाम अद्युत से वसे निहुये वाम वृधे च नो भवतम वाजसातौ। हे दर्शन योग्य शक्ति संपन्न अश्विनी कुमारों, आप दोनों हमारी वाणी और बुद्धि को सत्कर्मों में नियोजित करें। हम याजक गण सन्मार्ग में उपलब्ध होने वाले अन्न हेतु आप दोनों का आवाहन करते हैं। आप दोनों ही यज्ञ में हमारी वृद्धि के कारण बने। द्युभि रक्तुभिः परि पातमस्मानरेष्टि भिरश्विना सौभगेभिः

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 112 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
1: रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि, प्रस्तुति डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी की थी। बनी रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम। नमस्कार, भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह। आइए मिलकर शुरू करते हैं आज की भजन यात्रा।

श्रोताओं, अक्सर मनुष्य जीवन को समझने की कोशिश करता है, लेकिन सच ये है कि जीवन समझने की बात है ही नहीं। जीवन तो जीने की बात है, स्वाद लेने की बात है। समझ का अर्थ होता है कि हम बिना स्वाद लिए समझने की चेष्टा में लगे हैं, हम बिना जिए जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोच कर देखें कि बिना भोजन किए कभी भूख मिट सकती है? समझने से कब किसकी भूख मिटी है? और भूख मिट जाए तो समझने की चिंता कौन करता है? इसलिए जीवन समझने का विषय नहीं है, जीवन जीने का विषय है, स्वाद लेने का विषय है। उसके बाद ही आप जान पाएंगे कि जीवन क्या है, और ये ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं हो पाता।

श्रोताओं, इंसान ने एक बड़ी बुनियादी भूल सीख ली है और वो है जीवन को समझ के द्वारा भरने की। जीवन कभी समझ से भर ही नहीं सकता, इससे तो धोखा पैदा होगा। आप जीवन में प्रेम करें तो प्रेम को जानेंगे, प्रार्थना करें तो प्रार्थना को जानेंगे। आप अहंकार की सीढ़ियां थोड़ी उतरेंगे तो निरहंकार को जानेंगे। हम डूबेंगे जीवन में तभी परमात्मा का थोड़ा सा बोध पैदा होगा। इसीलिए कहा है कि जीवन समझने का विषय नहीं, जीने का विषय है।

तो श्रोताओं, इसके साथ ही संपन्न होती है आज की भजन यात्रा। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। ब्रह्मदेश वर्मा पर विजय और सिख युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत वर्ष पर निष्कंटक राज्य करने के सपने देखे, पर उन्हें क्या पता था कि सन 1857 का वर्ष उनकी आशाओं पर तुषारपात का वर्ष सिद्ध होगा। देशव्यापी युद्ध की गोपनीय तैयारियां होने लगी, किसी उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा थी। म्यान में पड़ी भारतीय तलवारें बाहर निकलने को आतुर हो रही थीं। वीरों के भाले शत्रु के रक्त के प्यासे हो रहे थे। भारतीय बंदूकें और तोपे अग्नि वर्षा के लिए विकल हो उठी थीं। वीरों की भुजाएं अब फड़क रही थीं। आजादी के दीवानों को प्रतीक्षा के एक पल एक वर्ष जैसे लंबे लग रहे थे। आखिरकार एक दीवाने के धैर्य का बांध टूट ही गया और वे सामूहिक अभियान की प्रतीक्षा किए बिना ही अंग्रेजों को ललकारते हुए रणभूमि में कूद पड़े। 29 मार्च 1857 का दिन अंग्रेजों के लिए दुर्भाग्य के दिन के रूप में उदित हुआ था। 5वीं कंपनी की 34वीं रेजिमेंट का 446 नंबर का सिपाही वीरवर मंगल पांडे अंग्रेजों के लिए प्रलय सूर्य के समान निकला था। बैरकपुर की संचलन भूमि में प्रलय वीर मंगल पांडे का रणघोष गूंज उठा। बंधुओं उठो, उठो, तुम अब भी किस चिंता में निमग्न हो? उठो, तुम्हें अपने पावन धर्म की सौगंध। चलो, स्वातंत्र लक्ष्मी की पावन अर्चना करेंगे। इन अत्याचारी शत्रुओं पर तत्काल प्रहार करो।

मंगल पांडे के बदले हुए तेवर देखकर अंग्रेज सार्जेंट मेजर ह्यूसन उनके पथ को अवरुद्ध करने के लिए आगे बढ़ गया। उसने उन विद्रोही को उसकी उद्दंडता का पुरस्कार देना चाहा। अपनी कड़कती आवाज में मंगल पांडे को खड़ा रहने का आदेश दिया गया। वीर मंगल पांडे के अरमान अब मचल उठे। वो शिव शंकर की भांति सनद्ध होकर रक्त गंगा का आवाहन करने लगे। उनकी सबल बाहुओं ने बंदूक अब तान ली। उनकी सधी हुई उंगलियों ने बंदूक का घोड़ा अपनी ओर खींचा और गोली का तीव्र स्वर वातावरण में गहरा उठा। मेजर ह्यूसन घायल कबूतर की तरह भूमि पर तड़प उठा। उसका रक्त भारत की भूमि पर बह गया। 1857 के वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे ने एक फिरंगी की बलि ले ली थी। विप्लव महायज्ञ के पुरोधा मंगल पांडे की बंदूक पहला स्वाहा बोल चुकी थी। स्वातंत्र यज्ञ की वेदी को दस्यु देह की समिधा अर्पित हो चुकी थी। ह्यूसन को धराशाही हुआ देखकर लेफ्टिनेंट बॉब वहां पर जा पहुंचा। उस अश्वारूढ़ गोरे ने मंगल पांडे को घेरना चाहा। पहला ग्रास खाकर मंगल पांडे की बंदूक की भूख अब और भड़क उठी थी। बंदूक ने दूसरी बार मुंह खोला और लेफ्टिनेंट बॉब घोड़े सहित धरती पर दिखाई दिया। गिरकर भी बॉब ने अपनी पिस्तौल मंगल पांडे की ओर साध दी और गोली चला दी। विद्युत गति से वीर मंगल पांडे गोली का वार बचा ले गए और बॉब रह गए देखते। अपनी पिस्तौल को मुंह की खाते हुए देखकर बॉब ने अपनी तलवार खींच ली और वो मंगल पांडे पर टूट पड़ा। मंगल पांडे भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। बॉब ने मंगल पांडे पर प्रहार करने के लिए तलवार तानी ही थी कि पांडे की तलवार का भरपूर हाथ उस पर ऐसा पड़ा कि बॉब का कंधा तलवार वाला हाथ जड़ से कटकर अलग हो गया। एक बलि मंगल पांडे की बंदूक ने लिया और दूसरी बलि उनकी तलवार ने। लेफ्टिनेंट बॉब को गिरा हुआ देखकर एक दूसरा अंग्रेज भी मंगल पांडे की ओर बढ़ गया, लेकिन भारतीय सैनिक ने बंदूक के डंडे से उस अंग्रेज की खोपड़ी खोल दी। अपने आदमियों को गिरता हुआ देखकर कर्नल व्हीलर मंगल पांडे की ओर बढ़ा, लेकिन सभी भारतीय सिंह गर्जना कर उठे, खबरदार जो कोई आगे बढ़ा आज हम अपनी पवित्र देह को स्पर्श नहीं करने देंगे। कर्नल व्हीलर जैसा था वैसा ही लौट गया। इस सारे कांड की सूचना अपने जनरल को देकर उसने अंग्रेजी सेना को बटोरा और वहां से रवाना हो गया।

वीर मंगल पांडे ने अपने कर्तव्य की पूर्ति कर दी थी। उन्होंने शत्रु के रक्त से भारत भूमि का तर्पण किया था। मातृभूमि की स्वाधीनता जैसे महान कार्य के लिए अपनी रक्तांजलि देना भी उन्होंने अपना पावन कर्तव्य समझा। उन्होंने अपनी बंदूक अपनी छाती से अड़ाकर गोली चला दी। गोली छाती में सीधी ना जाकर पसलियों में फंस गई और घायल सिंह अंग्रेजी सेना द्वारा बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों ने भरसक प्रयास किया कि वो मंगल पांडे से क्रांति योजना के विषय में उनके साथियों के नाम और पते पूछ सकें, लेकिन वो मंगल पांडे थे। मंगल होकर अपने साथियों का अमंगल कैसे करते? फौजी अदालत ने न्याय का नाटक रचा और फैसला सुनाया गया। 8 अप्रैल 1857 के सूर्य ने उदित होकर मंगल पांडे के बलिदान का समाचार संसार में प्रसारित कर दिया। वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे के पवित्र प्राण हव्य को पाकर स्वातंत्र यज्ञ की लपटें अब और भड़क उठी। क्रांति की ये लपलपाती हुई लपटें फिरंगियों को लील जाने के लिए अब चारों ओर फैलने लगी थीं। ऐसे थे वीर मंगल पांडे। ऐसे वीर क्रांतिकारी को हम शत शत नमन करते हैं।

0: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
1: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
0: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
1: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
0: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, देश का चैनल देश के लिए।
0: इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम के लिए इंतजार करें बस जरा सा।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में आगे की कहानी जानेंगे।

0: इसके पहले के एपिसोड्स में हम आपको बता रहे थे गोंड जनजाति के बारे में, रानी दुर्गावती के बारे में, और हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि बस युद्ध की तैयारियाँ हो चुकी थीं। युद्ध के मुहाने पर दोनों सेनाएं खड़ी हुई थी, रानी दुर्गावती की और मुगल सेना। इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी में हमने सुना था कि 1564 ईस्वी में गढ़ा की गोंड रानी और दिल्ली के मुगल शासक अकबर के बीच युद्ध पर आ बनी। मुगल सेनापति आसफ खां अकबर की ओर से अपनी विशाल सेना के साथ गढ़ा राज्य की सीमा पर आकर डट गया। इधर जब गोंड रानी दुर्गावती को स्थिति की जानकारी मिली तो उन्होंने भी अपनी सेना को सुगठित किया और युद्ध के लिए नरई की तरफ बढ़ गईं। बीच रास्ते में उन्होंने सेना को फिर से संगठित किया। अनेक लोग उनकी सेना में स्वेच्छा से भर्ती हो गए। रानी की सेना में 2 से 3 हजार सैनिक थे, जबकि मुगल सेना में लगभग 50 हजार सैनिक, हाथी और घोड़े थे। कई इफ्तिखार भी अपनी सेनाओं के साथ मुगल सेना में आकर जुड़ गए थे। इस तरह मुगल सेना जहां एक तरफ बहुत विशाल थी, वहीं रानी की सेना उसकी अपेक्षा में बहुत कम थी। रानी को यह भी सलाह दी गई थी कि वो संधि कर लें और युद्ध से बच जाएं। किंतु रानी दुर्गावती युद्ध से मोड़ लेने जैसा कायराना काम कर ही नहीं सकती थी। उन्होंने युद्ध क्षेत्र को ही चुना। कहते हैं कि रानी ने अपनी सेना को संबोधित किया और उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। यहां करो या मरो की स्थिति थी। रानी के ओजपूर्ण वक्तव्य ने काम किया और उनकी संपूर्ण सेना ने एक मत होकर युद्ध करने की इच्छा जाहिर की और एकजुट होकर स्वीकार किया कि जो भी परिणाम होगा उसके वो सामूहिक रूप से भागीदार होंगे, जिम्मेदार होंगे। हमारी विषय विशेषज्ञ और पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना ने हमें बताया था कि गढ़ा की प्रजा रानी का बहुत अधिक सम्मान करती थी। वो उन्हें माँ दुर्गा के समान मानती थी और इसलिए आज भी जो आख्यान गाए जाते हैं इस क्षेत्र में, उसमें इस नरई के युद्ध की घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। रानी को याद करते हुए आज भी जस गाए जाते हैं, यानी कि यश गीत गाए जाते हैं। ऐसे अनेक जस हैं जिसमें रानी को माँ दुर्गा के समान बताया गया और युद्ध के लिए रानी ने कैसे हुंकार भरी, वो कैसी दिख रही थी, पूजा जी ने बताया था। और एक बार फिर से वो सैला लोकगीत आपको जरा सा, उसकी चार पंक्तियां हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तरी नाना मो नाना रे नाना, तरी नाना मो नाना रे नाना, रानी महारानी ओ आए, माता दुर्गा जो आए, रणमा जूझे तलवारी रानी दुर्गा कहाए। पूजा जी फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए। फिर से पहले से ही अग्रिम धन्यवाद।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पूजा जी, अब आंखों देखा हाल आपसे सुनना चाहेंगे युद्ध का।
1: जैसा आपने कहा कि गढ़ा की सेना और आसफ खां की सेना दोनों लगभग सामने आमने ही थी
0: जी।
1: युद्ध होने को ही था। हालांकि इतिहास में हमने बहुत से युद्ध देखे हैं
0: जी।
1: युद्ध तो किसी के लिए भी ठीक तो नहीं होता
0: जी।
1: दोनों ओर के लोग मारे जाते हैं युद्ध में
0: जी।
1: किसी के कम मरते हैं, किसी के ज्यादा
0: जी।
1: लेकिन हानि तो होती है। फिर भी सदियों से इंसान दूसरे की भूमि हड़पने के लिए लड़ता आया है। भारतीय परंपरा में आक्रमण करके भूमि जीतने वाला राजा महान नहीं माना जाता, बल्कि प्रेम से, त्याग से, दान से, निर्माण से और सबसे अधिक बलिदान से हृदय जीतने वाला राजा महान होता है
0: जी।
1: इसलिए ये अवधारणा का अंतर हमें भारतीय परंपरा में, भारतीय युद्धों में देखने को मिलता है
0: जी।
1: यहाँ वह राजा महान होता है जो प्रजापालक हो, लोकहित में कार्य करता हो, राज्य की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे। ऐसा राजा, ऐसी रानी हमें प्रिय होती है।
0: बिल्कुल।
1: महानता इसमें नहीं है कि आप कितने साधन संपन्न थे
0: जी, हाँ।
1: आपके पास कितनी विशाल सेना थी या आप कितने बड़े राज्य के मालिक थे।
0: बिल्कुल।
1: महानता इसमें होती है कि जिस परिस्थिति में आप थे उसमें आपने क्या पराक्रम दिखाया
0: जी।
1: आप परिस्थिति का सामना करने की बजाय भाग खड़े हुए या अपनी प्रजा के सम्मान के लिए, राज्य की रक्षा के लिए आप प्राणों की आहुति देने में भी पीछे नहीं हटे
0: जी।
1: इन सभी प्रतिमानों पर हमारी लोकप्रिय गोंड रानी दुर्गावती खरी उतरती है।
0: बिल्कुल, पूरी तरह जी।
1: उनके पास जो भी साधन थे, संसाधन थे, उसके साथ ही वह विशाल मुगल सेना के आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार हो गईं। गढ़ा की सेना को सुगठित किया, अपने वक्तव्य से सैनिकों को प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में गढ़ा की सेना पूरे पराक्रम से इस युद्ध को लड़ी। गढ़ा राज्य की रक्षा के लिए रानी दुर्गावती और उनकी प्रजा सर्वस्व बलिदान करने के लिए सहर्ष तैयार थी।
0: पूजा जी, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि रानी दुर्गावती बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ी सी कुछ कूटनीति का इस्तेमाल किया और उन्होंने जो आगे बढ़ने की दिशा थी वो अपनी बदल दी थी। और उससे क्या आसफ खां की सेना चौंकी आसफ खान चौंका या नहीं, क्या हुआ?
1: जैसा कि हम जानते हैं कि जब रानी की सेना अचानक जंगलों की ओर मुड़ गई
0: जी
1: नरई आते आते, तो आसफ खान को समझ नहीं आया कि सेना गई कहां।
0: जी
1: कुछ समय बाद जब उनको यह सूचना मिली कि रानी की सेना नरई की ओर बढ़ रही है, तब उसने जल्दी से अपने दो सेनापतियों नाजिर मोहम्मद और आक मोहम्मद को सेना का एक बड़ा भाग देकर आगे आगे जाने को कहा।
0: जी हाँ।
1: वे दोनों मुगल सेना को लेकर नरई की ओर आगे बढ़ने लगे। वहीं सेनापति आसफ खां और अधिक सूचनाएं जुटाता रहा और पीछे बची हुई जितनी सेना थी उसको साथ लेकर नरई की ओर रवाना हो गया।
0: जी।
1: रानी तक भी यह समाचार पहुंचा कि मुगल सेनापति आसफ खान की ओर से नाजिर मोहम्मद और आक मोहम्मद के नेतृत्व में मुगल सेना की टुकड़ियां घाटी में प्रवेश कर रही हैं।
0: जी।
1: अब जैसी कि योजना थी, रानी दुर्गावती ने यह निश्चय किया कि जब मुगल सेना नरई घाटी में प्रवेश कर जाएगी
0: जी
1: तब उसका सामना किया जाएगा, क्योंकि चारों ओर से यह घाटी पहाड़ों से
0: घिरी हुई थी और इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से गोंड सेना जानती
1: भी थी। एक और नर्मदा नदी थी, दूसरी तरफ गौर नदी
0: जी।
1: तो इस क्षेत्र की अच्छी जानकार थी गोंड सेना। तो ये निश्चित हो गया कि जब नरई की घाटी में सेना प्रवेश कर जाएगी आसफ खां की, उसके बाद ही कोई हमला किया जाएगा
0: जी।
1: तो गोंड सेना भी अपने शस्त्रों और अस्त्रों के साथ सुसज्जित थी
0: जी।
1: गोंड सेना में हाथी थे, घोड़े थे और पैदल सैनिक भी थे
0: जी।
1: ये सभी धनुष बाण, ढाल तलवार, कृपाण, कटार, बर्छी, भाला, ये सब लेकर एकदम तैयार खड़े थे।
0: पूजा जी, युद्ध बिल्कुल लड़ा कब गया, क्या कोई तारीख नजर आती है?
1: बिल्कुल स्पष्ट आईने अकबरी में मेंशन है कि यह युद्ध 1564 ईस्वी में लड़ा गया और तारीख थी 23 जून और 24 जून।
0: अच्छा, यानी ये दो दिन की ये लड़ाई थी
1: ये लड़ाई थी। और आज से अगर हम इसको देखें तो 459 वर्ष इसको हो चुके हैं इस युद्ध को, फिर भी ये युद्ध हमारी यादों में आज भी है,
0: आज भी हमारी स्मृतियों में है और आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। रानी दुर्गावती के शौर्य की हम गाथा की बात कर रहे हैं। तो पूजा जी, हमारे श्रोता भी बहुत बेकरार आ रहे हैं, बहुत उत्सुक हैं कि आगे युद्ध में क्या हुआ, बताइए।
1: जब रानी को यह पता चला कि आसफ खां की सेना की जो अग्रिम टुकड़ियां हैं वो नरई में प्रवेश करने ही वाली हैं, तो रानी दुर्गावती ने अपनी सेना घाटी के चारों ओर ऊंचे स्थान पर इस प्रकार खड़ी की कि शत्रु सेना के आते ही उस पर धावा बोला जा सके। जैसे ही मुगल सेना ने नरई घाटी में प्रवेश किया, रानी दुर्गावती के आदेश से गढ़ा की सेना ने चारों ओर से उस पर हमला बोल दिया
0: जी।
1: दोनों ही सेना के बीच भीषण युद्ध आरम्भ हो गया। हाथी घोड़े पर सवार दोनों ही सेनाओं के सैनिक युद्ध कर रहे थे। धनुष बाण, तीर, तलवार और भालों की खनखनाहट से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा था।
0: अच्छा मैम, रानी दुर्गावती तो नेतृत्व कर ही रही थी सेना का, लेकिन जैसे कि होता है कि पैदल सेना, जैसे अश्व सेना, हाथी सेना, तो ये जो अलग अलग सेनाएं थी, ये जो अलग अलग युद्ध कौशल थे, तो और कौन कौन नेतृत्व करता थे रानी दुर्गावती की सेना में, उनके अगर यदि आप कुछ नाम हमें बता पाए।
1: हमने जैसा कि पहले बात की थी एक बार कि जब रायसेन पर आक्रमण हुआ था उस समय रानी दुर्गावती जब विजय हुई थी
0: जी,
1: तो उनकी सेना में कुछ मियाना अफगानी जो थे वो भी शामिल हो गए थे
0: जी, जी।
1: और वो ऊंचे पदों तक भी पहुंचे, उनकी सेना में वो सेनापति भी बने
0: जी।
1: तो आपको कुछ नाम याद होंगे जैसे कि शम्स खां मियाना
0: जी, जी।
1: मुबारक बिलूच
0: जी।
1: तो ये जो थे ये अब भी इस नरई की युद्ध में भी शामिल थे
0: जी।
1: और सेनापति के तौर पर शामिल थे और इन्होंने भी बड़ी वीरता पूर्वक इस युद्ध में लड़ा। इसी तरह जैसा कि हमने पिछले अंकों में बात की थी कि जो गढ़ा के राजा थे दलपत शाह
0: जी,
1: जब उनकी आकर

0: नौजवान थे,
1: जी
0: बहुत अनुभवी तो नहीं रहे होंगे, लेकिन हाँ साहसी थे। इस युद्ध में उनका भी वर्णन आता है, वो भी सेना का नेतृत्व कर रहे थे।
1: जी,
0: तो ऐसे कुछ नाम हमको गणराज्य की सेना में मिलते हैं।
1: और पूजा जी, क्या रानी दुर्गावती की सेना में एक फौजदार थे जिनका जिक्र इतिहास में आता है, अर्जुन सिंह, उनकी क्या भूमिका थी इस युद्ध में? क्योंकि ये युद्ध उनके लिए भी काफी याद किया जाता है।
0: इस युद्ध का जो सबसे प्रमुख बलिदान सर्वप्रथम दिया वो थे अर्जुन सिंह बखीला। उनको अर्जुन सिंह बैस के नाम से भी जाना जाता है और अर्जुन सिंह बघेल के नाम से भी जाना जाता है।
1: अच्छा।
0: तो ये जो अर्जुन सिंह बखीला थे, ये रानी की जो हाथी सेना थी उसका संचालन किया करते थे, फौजदार थे सेना में।
1: जी।
0: और जब युद्ध चल रहा था तो उस समय इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब आसफ खां की सेना नरई में प्रवेश कर रही थी उसी समय अर्जुन सिंह बघेला ने पूरा नेतृत्व संभाल लिया और हाथी की सेना के द्वारा उन्होंने खूब अच्छा संचालन किया। आप जानते ही हैं कि मध्य युग में हाथियों का सेना में बहुत अधिक महत्व था। हाथी की जो ऊंचाई होती है काफी ज्यादा होती है और ये काफी बलशाली पशु भी है और अपने जो प्रशिक्षक होता है उसकी बात भी बहुत अच्छे से मानता है, इसलिए सेना में हाथियों का खूब उपयोग होता था। और हाथी की सेना का जो संचालन करता था उसका भी बहुत ही महत्व था। तो इस पूरे युद्ध में अर्जुन सिंह बघेला का संचालन बहुत महत्व रखता था। तो जब आसफ खां की सेना नरई में प्रवेश कर गई तो सबसे पहला सामना अर्जुन सिंह बघेला ने ही किया और उन्होंने काफी वीरतापूर्वक युद्ध किया। लेकिन शाम होते होते अर्जुन सिंह बघेला वीरगति को प्राप्त हो गए और ये गणराज्य के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति थी।
1: निश्चित रूप से कि जिस सेना में हाथी सेना का बहुत, जिस युद्ध में बहुत ज़्यादा महत्व हो, उसके जो फौजदार हैं जो हाथी सेना का संचालन ही कर रहे थे वो बहादुरी से लड़े और वो वीरगति को प्राप्त हुए, तो ये एक बड़ा सेटबैक था, ये अपूर्णीय क्षति थी गोंड सेना के लिए। वाकई श्रोताओं, पूजा जी ने हमें एक बहुत अहम जानकारी ये भी अपने पिछले अंकों में दी है कि एक बहुत बड़ा कारण हाथी भी थे गोंड राज्य पर कब्जा करने के लिए, जो अन्य शासक थे वो क्यों ललायत रहते थे। कहते हैं कि उस समय उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में हाथी पाए जाते थे। तो ये एक बहुत अच्छी और नई जानकारी निकल करके आई है, क्योंकि हम आज के मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ बहुत सारे हाथी आज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उस समय वो वन क्षेत्र कितना सघन रहा होगा और कितनी उपजाऊ वो भूमि रही होगी कि वहाँ पर हाथी जैसे बड़े शाकाहारी जीव के लिए परिस्थितियाँ कितनी अनुकूल रही होंगी। तो पूजा जी, जब अर्जुन सिंह बैस वीरगति को प्राप्त हुए तो युद्ध उसके बाद भी जारी रहा, क्या इस पूरी बात से गढ़ा सेना का जोश कुछ कम हुआ?
0: युद्ध अपने चरम पर था, दोनों ओर की सेनाएं जोर शोर से लड़ रही थीं, खूब तीर तलवार ढाले बर्छे सब चल रहे थे, कोई कमी नहीं थी। एक योद्धा के जाने से सेना रुक नहीं जाती, वो तो अपने बराबर जिस उद्देश्य को लेकर चली है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करती है। तो गढ़ा की सेना भी अपना पूरा दल बल के साथ में लगी हुई थी। युद्ध जारी था। अब धीरे धीरे दिन ढलने लगा, सूरज की रोशनी भी अब मध्यम हो चली थी, पर गढ़ा की सेना का जोश कम नहीं हुआ था। लगातार तीर भाले तलवार की आवाजें गूंज रही थी, दोनों ओर से कई सौ सैनिक मारे जा चुके थे, फिर भी युद्ध तो अपनी गति पर था।
1: तो क्या जब शाम हो चुकी थी तो शाम के बाद भी, सूरज ढलने के बाद भी तब युद्ध होता था?
0: नहीं, जैसा कि पुराने युद्धों में नियम है कि शाम ढलने के बाद युद्ध नहीं होगा। आपने कभी ध्यान दिया हो तो भारतीय परंपरा में युद्ध जैसा कोई शब्द ही नहीं है।
1: अच्छा।
0: वास्तव में युद्ध एक अधूरा शब्द है, पूरा शब्द है युद्ध कला।
1: अच्छा।
0: युद्ध को भी एक कला के तौर पर देखा जाता है और कला में हमेशा नियम होते हैं।
1: नियम होते हैं
0: और सभी को उसका पालन करना होता है।
1: क्या बात है।
0: इसलिए युद्ध में जो नियम रख दिए जाते हैं कि जैसे कि शाम को नहीं युद्ध लड़ना है, सूरज ढलने के बाद युद्ध नहीं होगा, सूरज ढलने के बाद आपस में कोई एक दूसरे को नहीं मारेगा, या युद्ध के समय किस किस प्रकार के नियमों का पालन करना होगा, ये सब सुनिश्चित होता है। इसलिए हम बहुत सारे युद्धों में ऐसा देखते हैं कि जब भारतीय युद्ध लड़ते थे तो वो नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे और उसके कारण कई बार हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी पराजय भी हमको झेलनी पड़ी
1: जी।
0: लेकिन नियमों पर अडिग रहे और कभी भी उन्होंने नियमों को नहीं तोड़ा
1: जी।
0: तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जब शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा, तो अब युद्ध इस दिन का यानी 23 जून का
1: जी।
0: अब समाप्ति की ओर था
1: जी।
0: पर युद्ध बराबर तेजी से लड़ रहे थे, हालांकि काफी सारे सैनिक मारे जा चुके थे
1: जी।
0: गौंड सेनापति भी पूरी बहादुरी से अभी तक लड़ रहे थे
1: जी।
0: आखिर सूरज ढलने ही लगा और पहले गढ़ा की सेना ने मुगल सेना को पीछे की ओर धकेल दिया।
1: वाकई श्रोताओं, कितनी अद्भुत जानकारी है ये कि ये तो हमें पहली बार पता चला कि युद्ध कोई शब्द हमारे इतिहास में होता ही नहीं था। पूरा जो शब्द है वो है युद्ध कला। युद्ध को हम सब भारतीय कला के रूप में देखते थे और पूजा जी ने हमें कितनी अच्छी और वास्तविक जानकारी दी कि कला में हमेशा नियम होते हैं, कला नियमों में बंधी रहती है तभी वो कला कहलाती है। और भारतीयता में ये बात कही गई कि सूरज ढलने के बाद युद्ध कला जारी नहीं रहेगी, हथियार रख दिए जाएंगे और जो लोग थोड़ी देर पहले तक सूरज की किरणों में एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू होते थे वो वहाँ पर अपनी अपनी तलवारें अपने म्यान में डाल दिया करते थे। तो ये कितनी वाकई अद्भुत बात है युद्ध कला की।
0: तो इस दिन का युद्ध समाप्त होने को था, दोनों सेनाएं खूब जोर शोर से लड़ रही थी लेकिन इस तरफ देख रहे थे कि सूरज ढलने को था
1: जी।
0: और बस गढ़ा की सेना ने कमाल दिखा दिया, मुगल सेना को पीछे धकेल ही दिया।
1: वाह,
0: नरे की घाटी से आसफ खां की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया और इस तरह आक मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद बची कुची सेना लेकर घाटी से वापस भाग गए और रानी दुर्गावती की विजय हुई।
1: तो पूजा जी, क्या जो विजय थी, जो 23 जून को जो विजय हुई, ये इसके पीछे रानी की कूटनीति का ही कमाल था, क्योंकि पहले तो दूसरी तरफ से आने वाली थी, फिर रास्ता बदला और उस तरफ से आई जहाँ के उस पूरे इलाके का उनको ज्ञान था और जो ऊंची ऊंची जगह

0: जी
1: और यही विशेषता इस पल पर उनके काम आई जब उनके पास एक बहुत छोटी सेना थी,
0: जी
1: आकस्मिक आक्रमण हुआ था। तो ये सब जानकारियां उनके लिए तो जैसे सकारात्मक ही थी,
0: जी
1: और रानी ने अपने पराक्रम से, अपने संकल्प से ये कर दिखाया कि इतनी छोटी सेना होते हुए भी उन्होंने एक विशाल सेना के ऊपर विजय प्राप्त कर ली।
0: वाकई ये कमाल की बात है। और देखिए श्रोताओं, कितनी अद्भुत ये बात है कि यदि हमें अपने इलाकों के बारे में बहुत अच्छे से पता हो, खास तौर से जब हम उस दौर की बात करें, राजाओं की बात करें, तो राजा सिर्फ अपने महल में बैठकर ही राजकाज नहीं किया करते थे। जब तक कि वो रानी दुर्गावती की तरह बाहर नहीं घूमते थे, अपने इलाके में नहीं जाते थे, तब तक उन्हें ये जानकारी हो ही नहीं सकती थी कि किस तरफ नदी है, कहाँ नदी का घाट है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ घाटी है और कहाँ आने जाने का रास्ता है। और यदि ये जानकारी रानी के पास नहीं होती तो निश्चित रूप से इस युद्ध में उनकी हार हो सकती थी, क्योंकि बहुत ही कम सेना थी रानी दुर्गावती के पास। अदम्य साहस और शौर्य तो था ही, लेकिन बहुत सटीक जानकारी थी युद्ध कौशल होने के साथ साथ। फिर वहां उन्होंने कूटनीति का भी प्रयोग किया, एक ओर मां नर्मदा का उन्हें आशीर्वाद मिला, दूसरी ओर घाटी थी, और फिर बाकी काम उन सभी लोगों की वीरता ने कर दिखाया। तो मैम, जैसे कि आपने ये कहा, आईना अकबरी में भी 23 जून और 24 जून की इस लड़ाई का उल्लेख मिलता है। 23 जून को तो विजय हो ही गई थी, और क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है तो 24 जून की बात तो हम अपने अगले अंक में करेंगे। लेकिन क्या कोई और भी हमें साक्ष्य मिलता है जो इस युद्ध का उल्लेख करता हो?
1: जी हाँ, गढ़ा के गोंड राज्य के बारे में जानने के लिए एक बहुत प्रामाणिक स्रोत है। रामनगर मंडला में एक शिलालेख लगा है
0: जी
1: जिसमें गढ़ा के गोंड राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। इसी शिलालेख में रानी की विजय के बारे में भी एक श्लोक है।
0: वाह,
1: ये श्लोक संस्कृत में है और श्लोक इस प्रकार है कि अक्षय हीणनीय अमृत भूतलेन यातम रणे तेन महाभटेन बल विजित्या अपि समस्तम अस्य दुर्गावती भीम पराक्रमेण। यानी कि जिस महाभट्ट ने युद्ध में अक्षिणी सेना को अमृत की तरह भूमि पर प्रवाहित कर दिया और बल को जीतने के बाद भी उसकी दुर्गावती भीम पराक्रम से संपूर्ण शक्ति को नष्ट कर दिया, ऐसी दुर्गावती को प्रणाम।
0: वाह, तो मतलब और भी साक्ष्य मिलते हैं आईना एकबरी के अलावा भी। मध्य प्रदेश में ही मंडला में साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं, जाकर देख सकते हैं कि उस लड़ाई के बारे में ये स्पष्ट वहां पर अभिलेखित है, वहां पर उल्लेखित है कि रानी दुर्गावती ने मुगल सेना को पराजित किया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। डॉक्टर पूजा सक्सेना पुरातत्वविद हमारे साथ लगातार पिछले कुछ एपिसोड से बनी हुई हैं हमारे कार्यक्रम में, और हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं गोंड राजवंश के बारे में, रानी दुर्गावती के बारे में। आगे भी ये कहानी जारी रहेगी, आगे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कुल इस युद्ध का 2 दिन का उल्लेख मिलता है। यदि तारीख की बात करें तो आज से 459 साल पहले की बात थी, 23 और 24 जून 1564 को ये युद्ध लड़ा गया। जैसे कि डॉक्टर सक्सेना ने हमें बताया कि पहले ही दिन रानी दुर्गावती ने मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और मुगल सेना वहां से भागने को मजबूर हो गई। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, ये पूजा जी से जानेंगे हम अपने अगले अंक में। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए देश के चैनल देश के लिए, रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर।

इतिहास के पन्नों से। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

छोटी सी बात। श्रोताओं नमस्कार, छोटी सी बात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। दोस्तों इस सेगमेंट में हम कुछ छोटी छोटी सी बातों की चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत काम की बातों की चर्चा। तो चलिए आज हम बात कर लें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ गलतियों की जो अक्सर हम करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको भी लगता है कि आप तो भाई बहुत ही हेल्दी खाना खाते हैं, योगा भी करते हैं और आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी हेल्दी है, उसके बाद भी आप बहुत जल्द थक जाते हैं, नींद सी आने लगती है या कभी कमजोरी सी लगने लगती है, होता है ऐसा? अगर ऐसा होता है तो जानिए कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल शरीर में कुछ चीजों की कमी दूसरी चीजों की पर्याप्त मात्रा पर भी हावी हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आखिर हो क्या रहा है। आपको लगता है कि सारी चीजें तो ठीक हैं, हम बिल्कुल अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हर बात का ख्याल रखते हैं, लेकिन वो एक छोटी सी कमी आपके पूरे स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचाती है आप बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है ये जानना कि संतुलित भोजन का हिस्सा कौन कौन सी चीजें होती हैं। दोस्तों जो पानी है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। जी हाँ, पानी की पर्याप्त मात्रा। हम अक्सर सुनते हैं कि कम से कम एक दिन में 7-8 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए, और बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई ये तो बड़ा ही मुश्किल भरा काम है, इतना पानी हम कैसे पी सकते हैं। तो ये मुश्किल तो है, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो पानी की कमी है वो सिर्फ पानी पीने से ही पूरी नहीं की जा सकती है, उसके दूसरे भी विकल्प हैं। जी हाँ, दूसरे ऑप्शंस भी हैं, यानी सिर्फ पानी पीने की जगह आप नींबू का पानी पी सकते हैं या जिन फलों में बहुत पानी होता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, उनका सेवन आप ज्यादा कर सकते हैं, उन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, तो फिर जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाती है। इसी तरह से प्रोटीन की बात आती है। बहुत से लोग सोचते हैं जो शाकाहारी होते हैं कि उन्हें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है, लेकिन ये एक गलत फहमी है। पनीर में प्रोटीन होता है, विभिन्न प्रकार की जो दालें हैं, और सबसे बड़ी बात सोयाबीन प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, तो सोयाबीन को आप शामिल कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रोटीन है वो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है, आपका दिमाग प्रोटीन से बहुत तेज़ गति से काम करता है, इसलिए शाकाहारी अगर आप हैं तो इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। और श्रोताओं अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई खास बीमारी आपको नहीं है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फैट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम फैट को बहुत ही हानिकारक समझकर उससे दूरी बना लेते हैं, लेकिन फैट भी ज़रूरी है, हर तत्व शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर फैट की कमी हो जाए तो ये भी खतरनाक बात होती है। दरअसल फैट जो है वो पूरे दिन हमें ऊर्जा देता है, इसलिए मेवे, नट्स, बटर आदि को भी एक सीमित मात्रा में अपने डाइट में शामिल करिए। हाँ, जानवरों के फैट्स और तेल का इस्तेमाल करने से जरूर बचिए, क्योंकि वो हानिकारक होता है। और दोस्तों अब बात आई कार्बोहाइड्रेट्स की। जी हाँ, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा ना हो तो बहुत आपको सरदर्द होगा और कई बार चक्कर सा आने लगेगा, कब्ज की शिकायत हो सकती है या उल्टी जैसी परेशानियां भी लगने लगती हैं, आप ओवर ईटिंग करने लगते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो फ्रूट्स हैं वो अपनी डाइट में आप शामिल कीजिए। हाँ, केक, क्रैकर्स, ब्रेड को आप जितना हो सके अनदेखा करिए। और दोस्तों स्वास्थ्य के लिए एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता। जी हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि कम खाना खाने से वो स्वस्थ रहेंगे, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। पूरा खाना नहीं खाने से जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे आपको ज्यादा भूख लगेगी, वजन बढ़ेगा और कई तरह की बीमारियां भी होने लगती हैं। जब आपके शरीर को पूरा खाना नहीं मिलता है ना, तो स्वाभाविक रूप से आपको काफी थका हुआ सा महसूस होगा, इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन करना चाहिए, ना तो ओवर ईटिंग करनी चाहिए और ना ही डाइटिंग करनी चाहिए। अगर आप पर्याप्त मात्रा में भोजन करते हैं और आपका जो शारीरिक श्रम है वो बिल्कुल सही है, तो फिर आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिर आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता जाता है जिससे आपकी पाचन क्षमता बेहतर होती है।
और फिर शरीर को ऊर्जा मिलती है और आपकी सेहत अच्छी बनी रहती है। इसलिए पूरे दिन में 3 फल और सब्जियां जरूर खाइए। हाँ, इसके साथ ही व्यायाम करना बिल्कुल मत भूलिए। भाई, जो खाया है उसे पचाना भी जरूरी है ना। तो ये थी छोटी छोटी सी कुछ बहुत काम की बातें, जिन्हें नजरअंदाज करके हम अपनी सेहत को बहुत हानि पहुंचाते हैं। तो ख्याल रखिएगा इन छोटी छोटी सी बातों का और उठाइएगा इनके बड़े बड़े फायदे, ताकि जिंदगी मुस्कुराती रहे, तरोताजा रहे, चुस्त दुरुस्त रहे। छोटी सी बात।

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम योग संवाद। उसके पहले एक छोटा सा अंतराल।

मैं हूं पवन सिन्हा और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत को प्रणाम कीजिए, यह है तो हम हैं। हम जिन्हें पूजते हैं वो भी इसी भारत माता की संतान है। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में योग वासिष्ठ की दिव्य कथा के वैराग्य प्रकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें श्री राम के वैराग्य की गहन अनुभूति प्रवाहित है। संपूर्ण ऐश्वर्य, शक्ति और वैभव से युक्त होते हुए भी जब मन संसार से विरक्त हो जाए, जब हर सुख असार लगने लगे, जब ये जगत क्षणभंगुर और माया मात्र प्रतीत हो, तब जो स्थिति उत्पन्न होती है वही है श्री राम की वैराग्य दशा। आज के इस अंक में हम उसी भावभूमि को समझने का प्रयास करेंगे, वो विरक्ति जो पलायन नहीं बल्कि सत्य की खोज का प्रारंभ है, वो प्रश्न जो मन को विचलित नहीं बल्कि जागृत करते हैं। तो आइए उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं जहां श्री राम का वैराग्य हमें अपने ही जीवन के प्रश्नों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। योग संवाद में आज की चर्चा श्री राम की वैराग्य दशा पर, और इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: श्री राम की वैराग्य दशा पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले अंक में हमने बात भी की कि तीर्थ करके जब लौटते हैं भगवान श्री राम
1: जी,
0: तो उनकी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल परिवर्तित हो गई है, वो बहुत कमजोर और सोच में रहने लग गए हैं और इससे पिता उनके बहुत चिंतित हैं
1: जी।
0: तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि तीर्थ करने के बाद श्री राम की स्थिति कैसी है, ये आप हमारे सुनने वालों को बताएं।
1: आप इसमें देखिए, जब द्वारपाल जाता है राम जी को बुलाने के लिए
0: जी,
1: तो रामचंद्र जी के भवन में जैसे ही वो द्वारपाल पहुंचता है, देखता है कि राम जी अपने भवन में अमन होकर बैठे हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे जो भ्रमर होता है रात को कमल में बंद होकर उदास हो जाता
0: जी, जी,
1: है ना, उसकी दुनिया सिमट जाती
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: ऐसे ही रामचंद्र जी जो है, जो पूरा जगत जो कहते हैं ना, मैं जहाँ उस ब्रह्म का दर्शन करने का सामर्थ्य उनमें है, वो एक उदासीन मन के साथ अमन की स्थिति में बैठे हैं। अब कहते हैं कि यात्रा से लौट के आने के बाद उनका मन उदास हमेशा रहता है, और जो वो वैराग्य की स्थिति बता रहे हैं वो देखिए, कहते हैं कि वे बार बार खिन्न हो उठते हैं और उनके आंख आंसू से भर जाते हैं।
0: अच्छा।
1: जब जगत देखते हैं तो रो पड़ते हैं
0: जी, जी, जी।
1: जिसको कबीरदास जी भी कहते हैं, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। तो ऐसे जब कोई तत्वदर्शी ऐसा होता है तो वो जगत को देखता है, कहता है देखो आप क्या कर रहा है, आदमी क्या करने आया था क्या कर रहा है, अवलो नसानी अबना नसानी जी। तो राम जी कहते हैं कि संपत्ति से विपत्ति,
0: अच्छा
1: ये उनके वैराग्य की स्थिति है कि जितनी विपत्तियां हैं वो सब संपत्ति से आ रही हैं।
0: अच्छा।
1: और जबकि संसार ठीक उसके उल्टा सोचता है कि सारी विपत्तियों को दूर करने के लिए संपत्ति प्राप्त करना चाहता है।
0: ये एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि संसार में हर व्यक्ति जो काम कर रहा है या जिस लिए जी रहा है, उसके जीने का एक बड़ा मुख्य ध्येय है संपत्ति। और क्या कह रहे हैं श्री राम?
1: कह रहे हैं कि संपत्ति से विपत्ति, घर अथवा विभिन्न चेष्टाओं से क्या क्या होने वाला है। कहते हैं कि जितनी भी विपत्तियां हैं उस विपत्तियों का एकमात्र कारण संपत्ति है। और आप कभी देखिए तो आप एक बच्चे को कभी जब आप देखें, छोटे बच्चे को
0: जी,
1: तो वो जिस आनंद में होता है उसके पास कोई संपत्ति तो नहीं है, ठीक है, लेकिन संपत्ति नहीं है इसलिए कोई विपत्ति भी नहीं है, तो अकारण वो हंसता है, है ना,
0: बिल्कुल
1: है ना? लेकिन जब हम संपत्ति के महत्व को जैसे जानते हैं
0: वैसे वैसे दुखी होते जाते हैं
1: और विपत्तियां घेर लेती हैं। संपत्ति आती है तो फिर आप संपत्ति की रक्षा करने की बात करते हैं, इसको इसके द्वारा ही अपने जीवन में आप सुख समृद्धि ला सकते हैं, ऐसी भावना आपके अंदर आती है। जब तक संपत्ति नहीं थी तब तक ये भाव भी नहीं था। तो वो कहते हैं कि ऐसा होता है, और वो कहते हैं यहाँ जगत में सब कुछ मिथ्या है, और ये कहकर वो चुप हो जाते हैं और अकेले बैठ जाते हैं। ये उनकी स्थिति है, है
0: ना?
1: तो एकदम किसी विषय में उनका कोई आसक्ति नहीं है। कोई कुछ पूछना चाहता है तो अक्सर मौन हो जाते हैं। तो ये सब उनकी मतलब वैराग्य की स्थिति है, जो बार बार उन्हें सोचने पर विवश कर रही है कि वास्तव में है क्या ये संसार
0: जी।
1: और इसको लेकर के आपस में वो जूझ रहे हैं जी।
0: तो श्री राम की जो ये स्थिति है इस पर विश्वामित्र जी क्या कहते हैं?
1: इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं, रघुनंदन, श्री राम की जो ये स्थिति है, ये स्थिति न तो किसी मोह से उत्पन्न हुई है और न किसी आपत्ति से। मोह जब होता है तो आपको आसक्ति होती है, और आपत्ति जब आपके जीवन में दिखाई देता है तो आप उस चीज से बचना चाहते हैं, विरक्ति होती है। लेकिन तो आसक्ति और विरक्ति का मूल कारण क्या है? मोह और आपत्ति। जैसे आपको किसी विषय से आपत्ति दिखाई दे रही है या उसमें विपत्ति दिखाई दे रही है, तो उससे आप वैराग्य लेते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि इससे जीवन में कष्ट आता है। तो ये कहते हैं कि राम जी की जो स्थिति है, जो संसार के तमाम लोगों की स्थिति है, कि वो जो आपत्ति जो उन्हें होता है और जो आसक्ति होता है और इसकी वजह से उनके जीवन में वैराग्य आता है, वो राम की स्थिति नहीं है। वे विवेक और वैराग्य से संपन्न हैं, इसलिए उन्हें मोह नहीं बोध प्राप्त हुआ है।
0: अब तो क्या ये आसक्ति विपत्ति और आपत्ति की आपने जो बात की, इसको देखने से वैराग्य होता है क्या?
1: बिल्कुल, वैराग्य आपत्ति विपत्ति संपत्ति नहीं, उसके बोध से होता है। ये आपने बहुत सूक्ष्म सवाल किया। कई बार क्या होता है, जैसे हम जान भी लें, सभी को ये पता हो जाए कि ये मार्ग, जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं एक पंक्ति कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब पर हरि रघुवीर ही भजहु भजहि जे संत। तो उन्होंने लिख दिया कि ये सबसे ऊपर रघुवीर हैं। ये भरद्वाज जी भी इस बात को कहते हैं कि कैसे उन्होंने इस संकटपूर्ण जीवन को कैसे जिया, वो कथा मुझे कहिए। तो कहते हैं उसी का भजन संत करते हैं। तो भजन का अर्थ हम लोग राम नाम जपना समझ लेते हैं। राम नाम जपना नहीं, राम का नाम जिस नाते जपा जा रहा है उस कर्म को जीवन में अंगीकार करना, ये है भजन।
0: बहुत सुंदर।
1: ये भजन नहीं है कि आप उनके नाम को लें,
0: बल्कि
1: आप देखिए कितनी सुंदर बात है। कभी कभी कथा आती है, कई लोग कहते भी हैं कि रावण कहता है कि तामसी तन से राम का नाम लिया नहीं जाता।
0: ओहो,
1: जी जी। और कई बार था आती भी है, बड़ा रोचक तरीके से लोग कहते हैं कि जब मंदोदरी कहती है कि आपको तो वेश बदलना आता है, अगर सीता में इतनी ही आसक्ति आपके पास है तो क्यों नहीं राम का वेश धारण करके आप सीता के सामने जाते हैं और वो आपके साथ हो लेंगी।
0: जी, जी, जी।
1: पत्नी कह रही है।
0: हा, हा, हा।
1: तो वो कहता है कि मैंने ये प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही मैंने राम का वेश धारण किया मुझे पराई स्त्री माँ दिखती है।
0: ये प्रसंग सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाता है।
1: रोमांच हो रहा है,
0: पहले भी मैंने सुना है।
1: अब आप
0: कि रावण ऐसा कहता है,
1: कहते कहते रोमांच हो गया कि अगर ऐसी स्थिति है तो सोचिए उस आत्मी का अंतःकरण, मतलब और कैसा होगा
0: कि वो स्वरूप लेने भर से उसको पराई स्त्री
1: माँ नजर आती है।
0: तो अगर ये राम तत्व है,
1: तो ये राम तत्व है। तो इस दृष्टि के साथ जब भी कोई शरीर धारण करेगा तो वो क्या भगवत्ता उससे प्रकट नहीं होगी? कौन है जो उससे विरोध कर सकता है?
0: जी, जी,
1: है ना?
0: जी, जी,
1: तो ऐसी स्थिति है। तो जो आपने कहा कि वशिष्ठ जी यही कहते हैं कि जो ये आसक्ति आपत्ति मतलब के दर्शन नहीं, इसके बोध से आपको वैराग्य होगा।
0: जी। अच्छा, इसमें विश्वामित्र जी बीच में कहीं पर, मैं पलट रही थी इसके पन्ने, तो दिखता है कि वो सत्यता मुदिता और प्रज्ञा के विषय में भी बात करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये क्या है और वो क्या कह रहे हैं?
1: वो कह रहे हैं कि अगर हमारे उपदेश का वास्तविक बोध हो जाए तो रामचंद्र जी सत्यता की प्राप्ति करेंगे। अब देखिए सत्यता में कहते अमृत पिए हुए पुरुष की भांति। अब इसमें इशारा क्या है? अब जैसे अमृत की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कोई अमृत है।
0: मुझे लगता है कि पहले आप ये बताएं कि उनका कथन क्या था पूरा।
1: जी, उनका कथन ये था कि जो रघुनंदन ये राम हैं, हम लोगों की भांति परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे जो उपदेश मैं कर रहा हूं, अगर ये उन्होंने सुन लिया।
0: अच्छा,
1: है ना? तो हम लोगों की भांति मतलब जैसे विश्वामित्र जी परम पद में प्रतिष्ठित हैं या ये अपने वशिष्ठ जी परम पद में प्रतिष्ठित हैं, तो ऐसी राम की स्थिति होगी, क्योंकि जो उनकी ये दशा हुई है वो संसारियों की तरह नहीं हुई है, है ना, कि वो आसक्ति और आपत्ति से उत्पन्न हो गई हो, विपत्ति से उत्पन्न हो गई हो, ये तो बोध से उत्पन्न हुआ है। तो बोध से उत्पन्न होने के बाद अगर वो उपदेश सुन सकें तो वो फिर ऐसी स्थिति बनेगी। और उसमें कहते हैं कि अमृत पिए हुए पुरुष की भांति, यानी जिसका मृत्यु भय समाप्त हो गया। अमृत पीने का मतलब अमृत जैसी कोई चीज नहीं है कि जो पी के जिसके चित्त से मृत्यु का भय समाप्त हो गया, वो सत्यता को प्राप्त हुआ। मृत्यु का भय समाप्त कभी भी शरीर से तो नहीं होगा, क्योंकि शरीर ने जन्म लिया है तो मृत्यु तो रहेगी, लेकिन इस शरीर से अगर सत्यान्वेषण हो गया और सत्य का बोध हो गया तो वो सत्य जो है आपको मृत्यु भय से, जन्म और मृत्यु और पुनर्जन्म, ये जो तीन तरह की संकल्पना लेकर के हम लोग संसार में व्यवहार करते हैं, इससे पूरी तरह से मुक्त कर देगा। तो वो सत्यता, क्योंकि सत्य शरीर नहीं है, सत्य शरीर ही है जिसने शरीर को धारण कर रखा है। जैसे कहते हैं हम लोग ना कि धर्म रक्षति रक्षतः, कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। तो ऐसे में क्या है वो, इसका अर्थ कि अगर आपके जीवन की रक्षा हो पा रही है तो इसलिए हो पा रही है कि आपने धर्म की रक्षा जाने अनजाने बारे में की है। तो ठीक ऐसे ही शरीरी शरीर में है, इसलिए शरीर की सारी क्रियाएं हो रही हैं, जो इसका बढ़ना है, डेवलपमेंट है, या जो साइको मोटर एक्टिविटीज हैं, जो ये सारी चीजें हो रही हैं, ये हो किसकी वजह से रही है? शरीर की वजह से, उस निर्गुण निराकार की वजह से हो रही हैं, जिसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी दिखाई दे रहा है वो उसकी वजह से दिखाई दे रहा है, ये आत्मतत्व है। तो कहते हैं कि ये जो जान लेगा वो अमृत पिए हुए पुरुष, यानी ऐसा पुरुष जिसको मृत्यु का भय नहीं है। और देखें, इसी को हम कहते हैं अभयता। भय जितने भी हैं, उस भय के पीछे आप देखेंगे तो मृत्यु ही किसी न किसी रूप में आपको दिखाई देगी। मृत्यु मतलब शरीर की मृत्यु ही नहीं हुई, आपके विचारों की मृत्यु, जो मान सम्मान यश जो कुछ भी आपने अपने शरीर या संसार के व्यवहार या संसार की लर्निंग से आपने सीख रखा है, उन सब में कहीं ना कहीं मिटने का जो भय होता है, जैसे मृत्यु शरीर के मिटने का भय है, तो ऐसे में कोई भी चीज जो आपने अर्जित की है सुख के लिए, उसके मिटने का भय, तो एक प्रकार की मृत्यु ही है वो, कह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि क्षरण है, तो वो ऐसी स्थिति आती है उस सत्यता को जो त्रिकाल बाधित है। तो त्रिकाल बाधित कोई अगर है तो ब्रह्म रूपता है, शरीर त्रिकाल बाधित नहीं है। शरीर पर तीनों काल का असर होता है, भूत भविष्य वर्तमान का, तीनों अवस्थाओं का असर होता है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति का। लेकिन उस चैतन्य पर जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में बना हुआ है और तीनों अवस्थाओं से अलग है, उस पर, जिसको तुरिया अवस्था कहा गया मांडुक्य उपनिषद में, तो ऐसे में उस पर कोई असर नहीं होता, तो राम को वो सत्यता का बोध होगा। उसके बाद कहते हैं मुदिता, सत्य के बिना व्यक्ति मुदित नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं ना, मुदित हो गया, आनंद परमानंद स्वरूपता, तो उसका आनंद अब जाने आने वाला नहीं है, क्योंकि उसने सत्य को जान लिया, तो वो मुदित हो गया। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, महर्षि पतंजलि कहते हैं ये चित्त के प्रसन्नता या उसकी पवित्रता के ये सूत्र हैं कि आप पुण्यात्मा के प्रति मुदित हो जाएं। ऐसे जो सत्य के प्राप्त करने वाले लोग हैं उनको देख करके आपके अंदर मुदित भाव हो जाए, तो यानी परम आनंद रूपता हो। और प्रज्ञा की प्राप्ति, प्रज्ञा का मतलब होता है अपरिच्छिन्न ज्ञान रूपता। अब देखिए, हम लोगों का जो ज्ञान है वो क्या करता है, हमको अलग करता है। परिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता मतलब अलग करना, और अपरिच्छिन्नता का मतलब कि हम अलग ही नहीं है, सब मुझ में और सब में मैं हूं, ये अपरिच्छिन्नता है। तो इसको कहा गया, हमारे ऋषियों ने कहा प्रज्ञा। तो जब ये तीनों की प्राप्ति होती है, तीनों एक क्रमिक हैं, कह सकते हैं क्रमिक गति से इनकी स्थिति आपको मिलेगी। बिना सत्यानुसंधान के, बिना सत्य बोध के आप जो है मुदिता की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, और बिना मुदिता के आपको प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रज्ञा जो है वो है आपकी अपरिच्छिन्नता। जिसको फिर मैं गोस्वामी जी की पंक्ति में सहज करूं अपने श्रोताओं के लिए कि जो आदि योगी शिव हैं, क्योंकि योग ग्रंथ पर हम बात कर रहे हैं तो हम आदि योगी शिव की बात को करें, वो कहते हैं उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि संग करहि विरोध। वो फिर वही अपरिच्छिन्नता वाली बात आ गई कि निज प्रभु मैं, सी राम में सब जग जानी, करहुं प्रणाम जोरि जुगुपानी। तो वो स्थिति होती है कि राम में पूरी सृष्टि दिखाई दे, वो स्थिति आती है तब जब प्रज्ञा आपके अंदर प्रकट होता है, और प्रज्ञा आपके सत्य और मुदिता की स्थिति आने के बाद ही होता है। तो राम जी को उन्होंने कहा कि ये प्राप्त हो जाएगा, और जब ये प्राप्त हो जाएगा तो वो परम सुख को प्राप्त करेंगे, संताप शून्य हो जाएंगे, और जो शरीर इनका ये कृश दिखाई दे रहा है ये पूरी तरीके से हिष्ट पुष्ट और उत्तम कांति से युक्त हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, आजकल आप देखेंगे जो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां विकसित हो रही हैं, और बहुत सारी नई नई बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो बीमारियां हैं उसमें 75% से 80% बीमारियां आपकी साइकोसोमेटिक हैं, जो मन से आती हैं, है ना। तो मन से क्यों आती हैं, क्योंकि मन की स्थिति यही तीन की नहीं है, न मन सत्य जानता है, न मन मुदित है, न मन प्रज्ञावान है, है ना। तो अब उसमें क्या हुआ, चित्त में दोष उत्पन्न हो गया। अब उस दोष का प्रभाव ये हुआ कि प्रभाव तो शरीर पर दिखेगा, तो शरीर किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो गया। कैंसर जैसी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण माना गया है स्ट्रेस, तनाव, कि कोशिकाओं पर बार बार आप प्रहार कर रहे हैं, तो फिर अंत में वो अपना स्वरूप भूल जाती हैं, वो आपके जीवन के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आई थी, अब वो इम्यून को ही खाने लगी हुई हैं, आपको ही मिटाने पर लगे हुए हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसे कहते हैं कि शरीर हिष्ट पुष्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये स्थिति जब उनको प्राप्त होगी तो वो फिर संताप शून्य होंगे। तो आज आदमी देखे तो संताप में है। भागवत कथा में हम कहते हैं ना कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो तीन ताप जो है जिससे चित्त संताप ग्रसित है, जब तक इससे आप अपने को मुक्त नहीं करेंगे, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग ही, सत्संग मतलब वही सत्य जो सत्य का अनुसंधान, जिसमें आप त्रिकाल बाधित सत्ता को जान सकें और जान करके आप फिर हमेशा अपने आनंद स्वरूप में रह सकें, और साथ ही साथ आप अपनी अपरिच्छिन्नता यानी शिवत्व का बोध कर सकते हैं। यही है सत्यम शिवम सुंदर।
0: जी जी। तो इस कथा में हम कहाँ पहुंचे हैं कि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राम फिर से वैसे हो जाएंगे
1: जी,
0: अगर मैं जो कह रहा हूँ उसको वो सुने।
1: आप जो राम के शरीर की ये दशा देख रहे हैं, जिसको देख करके तो आप
0: पिता,
1: दुखी हो
0: पिता
1: रहे हैं।
0: की चिंता वो
1: जी, तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि राम को अब योग की जरूरत है, और ये वशिष्ठ जी योग वशिष्ठ का उन्हें जो ज्ञान देंगे उसके बाद वो इस अवस्था को प्राप्त होंगे, सत्य मुदिता और मोक्ष प्रज्ञा उनको मिलेगा। तो इससे फिर वो फिर अब उनका जो शरीर है वो हृष्ट पुष्ट हो जाएगा और उत्तम कांति से युक्त हो जाएंगे।
0: अच्छा, इसी में आगे कहीं लोकव्यापी निर्गुण और सगुण ब्रह्म की चर्चा होती है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि निर्गुण और सगुण ब्रह्म का बोध कैसे होता है, कैसे हो सकता है?
1: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, प्रकृति के तीन गुण है, चूंकि व्यवहार तो प्रकृति के साथ प्रकृति में ही होगा, है ना, तो कहते हैं उसमें जो सत्वगुण है, उस सत्वगुण का गुण प्रकाश है। आजकल के मतलब समय में बहुत प्रचलित है एनलाइटेंड, कहते हैं कि एनलाइटेंड है, एनलाइटेंड गुरु हैं। अब एनलाइटेंड गुरु का मतलब समझते हैं लोग कि कोई दिव्यता उनमें आ गई, दिव्यता ने उनके पास प्रज्ञा है, वो अपरिच्छिन्नता का बोध है, वो अपने को अलग नहीं कर पा रहे हैं, अब उनके अंदर परिच्छिन्न भाव नहीं है, है ना, वो श्री राममय की स्थिति में जगत को देख रहे हैं
0: जी।
1: तो कहते हैं कि सत्व गुण से युक्त होने पर जो लोकव्यापी, लोक में जो व्याप्त है निर्गुण सगुण, ये दो संप्रदाय बने
0: जी,
1: निर्गुणिया और सगुणी, सगुण वाले संप्रदाय, कुछ लोग सगुण उपासक हो गए, कुछ निर्गुण उपासक हो गए, लेकिन कहते हैं ये दो नहीं है। तो कहते हैं कि ये सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, ये अभेद है, लेकिन ये जानते कौन है? बुद्ध पुरुष।
0: अच्छा।
1: जी, और ये वेद कह रहा है, ये स्थिति है। तो वो कहते हैं कि जब ये तत्व चिंतन होगा तब ये भेद मिटेगा। तो जो लोक व्यापी ये सगुण निर्गुण रूप ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से संपन्न जैसे वो होंगे, वैसे जो ये भेद की स्थिति है, वो जो आज जगत को देख रहे हैं, जगत का व्यवहार देख रहे हैं, जिन कारणों से उनके चित्त में संताप हुआ है या जिस पर विचार करने लगे हैं, या जो कहते हैं ये वैराग्य उत्पन्न हुआ है, तो वो जीवन मुक्त हो सकेंगे। और जीवन मुक्त होने के बाद अभी वैराग्य उत्पन्न हुआ तो उन्होंने क्रिया से अपने आप को अलग कर लिया, तब वो बोध के साथ जो है समस्त क्रियाओं को ऐसे करेंगे जैसे कीचड़ में रहने वाला कमल कीचड़ से सर्वथा मुक्त है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये स्थिति उनकी होगी।
0: ये बता रहे हैं विश्वामित्र जी।
1: जी।
0: दुख परंपरा के उत्पादन की बात भी इसमें की गई है। मैं चाहती हूँ इस कथा को आगे बढ़ाते हुए इस बिंदु पर आप आइएगा।
1: जी।
0: तो वो भी एक जगह दिखता है कि दुख परंपरा के उत्पादन की बात दिखाई देती है। तो क्या कारण है जीवन में दुख का?
1: अब जब राम जी को ऐसी स्थिति में देखा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि महाबाहु राजकुमार, तुम बड़े शूरवीर हो, तुमने उन विषय रूपी शत्रुओं पर विजय पा ली है। अब देखिए, शूरवीर होने का मतलब किसी व्यक्ति को जीतना नहीं है, किसी स्थान को जीतना नहीं है। विषय जो बार बार उन विषयों को अपना समझ लेना या अपना बनाने की चेष्टा करना, ये है शत्रुता। आज देखें तो किसी प्रकार का जो विश्व में ये जो शत्रु भाव है, वो शत्रु भाव एक्चुअल में विषय रूपी विषयों को पाने की आकांक्षा से उत्पन्न हो रहा है
0: जी।
1: तो वो कहते हैं कि विषय रूपी शत्रुओं पर तुमने विजय प्राप्त कर ली है। राम को उनके स्वरूप की स्मृति दिला रहे हैं कि तुम ऐसी स्थिति में क्यों हो, क्योंकि अब तो तुम ऐसी स्थिति में हो कि कोई विषय तुम्हारे आकर्षण और विकर्षण का कारण ही नहीं है। सामान्यतया देखें आप तो जो राग और वैराग्य ये दो शब्द आते हैं, ये आकर्षण और विकर्षण के संदर्भ में आते हैं, या एक दूसरे के सापेक्ष इन्हें समझा जाता है कि संसार में जिनको राग है उन्हें अपने आत्मस्वरूप से वैराग्य हो गया, वो रूप के ही राग में फंसे हुए हैं, और जिनको आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया वो संसार से राग छोड़ के वैरागी हो गए। यही दो रूप दिखाई देते हैं। ये कहते हैं ये दोनों स्थिति नहीं है, लोकव्यापी ये सगुण निर्गुण का जो ब्रह्म तत्व है उसका ये वास्तविक ज्ञान नहीं है।
0: अच्छा।
1: और यही जो है दुख की परंपरा का उत्पादक है, जो बड़ी कठिनाई से नष्ट होता है। इतना आसानी से नष्ट नहीं होता। इसीलिए आप देखते होंगे कि आदमी जब कहीं किसी कर्म से उबता है तो किसी दूसरे कर्म का चुनाव करता है उससे अपने आप को बचाने के लिए। तो अंततः देखें तो कर्म से कर्म को काटने का प्रयास करता है, जबकि कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म अनासक्त भाव से करना है, जिसके लिए गीता भी योग शास्त्र का ग्रंथ है और वो भी कहती है। तो राम जी से ये कहा जा रहा है कि आप जो ये देख रहे हैं जगत को, ये जगत में अनासक्त व्यवहार करके आप जीवन मुक्त हो करके यहाँ सारे अपने दायित्वों का निर्वाह करें जिसके लिए आपका यहाँ आगमन हुआ है, और प्रकृति ने जिन जिन चीजों के लिए आपको यहाँ आने का अवसर मिला है, जिसको भगवान कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की संस्थापना है। अब धर्म की संस्थापना के लिए कई बार लोग कहते हैं कि धर्म भी एक बंधन है, कई लोग धर्म से बंध जाते हैं और कहते हैं यही धर्म है जो मैं समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप देखें कोई भी चीज अगर अपने अस्तित्व में है तो अपने धर्म के साथ है, इसलिए है ना। और अगर उसके अस्तित्व को खतरा है तो आपने अधर्म का रास्ता चुन लिया है, जो राक्षस यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ तो प्रकृति का पोषण है, शोषण नहीं है। और आज हम लोगों ने क्या किया, प्रकृति का शोषण करना शुरू कर दिया। जैसे हमारा बौद्धिक ज्ञान विकसित हुआ तो ये जो अभी हमने सत्य और मुदिता और प्रज्ञा वाली बात नहीं रही, तो परिणाम ये हुआ कि हमने समझ लिया कि अब तो प्रकृति की सारी शक्तियों के अधिपति हम हो गए और हम उसका लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा खामियाजा आने वाले समय में वो पीढ़ियां भुगतेंगी। डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन सस्टेनेबल होना चाहिए, सतत होना चाहिए। अगर आपके पूर्वजों ने प्रकृति के नियमों या प्रकृति के धर्म का पालन किया तो प्रकृति आपके जीने योग्य रही, लेकिन आप तो इतने बुद्धिमान हो गए कि आपने प्रकृति को ऐसा बना दिया कि कल आने वाली पीढ़ियां जन्म लेने के साथ ही को सांस लेने में संकट में हों। कितने मतलब बड़े मतलब राक्षस कह सकते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति तो है।
2: इन दिनों संवहनीय विकास की जो बात चल रही है
1: जी बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं विकास ऐसा होना चाहिए कि आने वाले समय में जो आए उनको भी ये धरातल वैसा मिले जैसा आपको मिला था।
2: अच्छा, इसमें भोग के साधनों पर भी चर्चा है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है?
1: अच्छा, भोग के साधनों,
2: लेकिन इसके पहले मैं चाहती हूँ इस कथा को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लें, क्योंकि वो कथा भी हमारे जो श्रोता है उन तक पहुंचती रहे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो विश्वामित्र जी ने फिर राम जी से कहा कि तुम्हारे जो नेत्रों में जो चंचलता दिखाई अभी दे रही है उसको त्याग कर बताओ कि मोहित क्यों हो रहे हो। क्योंकि राम जी को यहाँ ये दो लोग मतलब गुरु के रूप में हैं, एक वशिष्ठ जी और दूसरे विश्वामित्र। विश्वामित्र उन्हें कर्म शास्त्र का बोध कराने के लिए आए हैं, कर्म शास्त्र के लिए उत्प्रेरित करना है, क्योंकि कर्म शास्त्र छोड़ चुके हैं। लेकिन कर्म शास्त्र बिना तत्व ज्ञान के,
2: जो भूमिका गीता में श्री कृष्ण की है वो यहाँ विश्वामित्र की है, और जो स्थिति वहाँ अर्जुन की वो यहाँ श्री राम की हो गई
1: कह सकते हैं, तुलनात्मक रूप से सापेक्षता को समझाते हुए कह सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं, क्योंकि वहाँ यहाँ तो कृष्ण ही वो रूप प्रकट कर रहे हैं जो अर्जुन ने किया है वहाँ, है ना। तो खैर, तो ये कहता हूँ कि वो कहते हैं कि त्याग कर तुम मोहित क्यों हो रहे हो, तुम्हारे इस मोह और भ्रम का क्या कारण है, ये राम जी से पूछते हैं। तो राम जी बोलते हैं कि इस सांसारिक विषयक आस्था में मेरा मन बिल्कुल नहीं जाता।
2: नहीं।
1: संसार में जो आस्थामान लोग दिखाई देते हैं, जब उनको मैंने देखा और उनकी दशा देखी, तो मेरा तो उस दशा को देखने के बाद, कहते ना कुछ जो समझदार लोग होते हैं वो ठोकर से गिरते नहीं है, ठोकर देख के समझ जाते हैं, है ना। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो ठोकर खा के भी नहीं संभलते, तो राम जी उस तरह के मैं देखा, और संसार में जितने भी भोग हैं ये सब के सब अस्थिर हैं, क्षणभंगुर हैं। राम जी को इसका बोध है, हम लोग इसको कहते हैं
2: बिल्कुल,
1: और निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं उन्हीं भोगों के प्रति, नए नए भोगों के प्रति हमारे अंदर विचार चल रहे होते हैं कि अब गाड़ी थोड़ी बड़ी कर ली जाए, घर थोड़ा बड़ा बना लिया जाए। अब इसके पहले जब ये घर नहीं था तो ऐसे ही घर की कल्पना थी
2: जी।
1: और लगता था कि ये घर मिल जाता तो भगवान तेरी बड़ी कृपा होती, इसके लिए मन्नतें कर रहे थे। अब जब ये घर आ गया तो फिर ये भी छोटा पड़ने लगा, फिर और बड़े घर की कल्पना होगी। तो कहते हैं कि हम लोग भोगों की क्षणभंगुरता के बारे में बोलते हैं, क्षणभंगुरता हमको दिखती नहीं है। अगर दिखे तो बुद्ध की स्थिति, जैसे बुद्ध ने राज्य ही तो छोड़ा था,
2: बिल्कुल,
1: है ना। वो जबकि जो चीज हम पाना चाहते हैं या जिसके लिए आज दुनिया लड़ रही है वो सारी चीज छोड़ के वो चले आए।
2: बिल्कुल,
1: आप देखें अयोध्या को, तो अयोध्या में भी राम जी राज्य ही छोड़ के जा रहे हैं जंगल में, तनिक भी उनको राज्य में आकर्षण नहीं है। तो क्योंकि उनको इस तत्व का बोध हो चुका था कि ये सारे भोग अस्थिर हैं, इनका स्वभाव जो है वास्तविक इनका रूप है, इनकी क्षणभंगुरता है, और आपत्तियों के स्वामी हैं, ये सब विपत्ति में डालते हैं। अब देख कितनी उल्टी बात है, सांसारिक दृष्टि से आप देखें तो संसार का व्यक्ति इनसे अपनी विपत्ति दूर करना चाहता है भोग के साधनों से, क्योंकि वो विपत्ति में इसलिए है कि ये साधन नहीं है उसके पास।
2: और श्री राम कह रहे हैं कि आपत्तियों का साधन,
1: ये कहते हैं
2: मतलब जो सांसारिक संपदाएं हैं इनका मनुष्य पर प्रभाव अच्छा नहीं है, ये कह रहे हैं वो।
1: हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब पाप स्वरूप है, मतलब आपको पाप से पाप करवाएगा। अच्छा पाप का मतलब होता है कि पाप हम किसी दूसरे के संदर्भ में करते हैं, दूसरे के संदर्भ में तो करते ही करते हैं, अपने प्रति भी तो पाप करते हैं कि हमने अपने जीवन को एक ऐसी क्रिया में लगा दिया जिस क्रिया का कोई अर्थ नहीं है। जैसे आप देखें जीवन भर जिन चीजों को हम संकलित करते हैं एक दिन उसी को छोड़ के जाते हैं, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन फिर भी जीवन भर संकलन लगा हुआ और क्या क्या नहीं करता उस संकलन के लिए, है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार की अज्ञानता है कि नहीं। अगर आप देखें तो जो प्रकृति है, प्रकृति ने कहा भी गया है कि आवश्यकता पूरी करने का सामर्थ्य इस धरती पर जितने भी जीव हैं उन सब की आवश्यकता पूरी करने में पृथ्वी समर्थ है, लेकिन एक व्यक्ति की आकांक्षा पूरी करने में पूरा ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाएगा।
2: बिल्कुल, लालच को तो नहीं पूरा किया
1: नहीं जा सकता, इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता, और हर आदमी इच्छाओं को ही पूरा करने में लगा है जो कभी पूरी ही नहीं होती। तो ये बात कहने सुनने का नहीं है, ये बात निरंतर चिंतन का है। और राम जी ने तीर्थ यात्रा के दौरान यही चिंतन किया और देखा कि लोग बात तो वो सारे कर रहे हैं जिन बातों को हम कहते हैं वो भी कह रहे हैं, लेकिन जी रहे हैं जो व्यवहार कर रहे हैं और उस ज्ञान की बातों से बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं, तो वो उनकी स्थिति है। और कहते हैं कि मूढ़ बुद्धि लोग इस संसार के पदार्थों में सुख न होने पर भी सुख मानते हैं और उसी के लोभ से आकृष्ट होकर इधर उधर भटकते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, और ये बात क्या आज नहीं है समीचीन। आप देखें जिन जिन में आपने सुख देखा था, अगर वो सुख था कुछ समय के लिए था, क्षणिक था, तो फिर वो क्षणभंगुरता हुई ना, तो आपको आगे जिन जिन चीजों के न होने की वजह से आज आप दुखी हैं, तो उस दुख का भी शमन इस ज्ञान से करना था, पूर्व के अनुभव से करना था, लेकिन वो करने के बजाय आपके जीवन में वो चीजें नहीं है, उसके लिए आप परेशान और दुखी हो रहे हैं। तो ये भोगों का जो वास्तविक स्वरूप है वो राम जी ने बताया कि यहाँ पर लोग इधर उधर भटकते रह रहे हैं लोभ के कारण, जबकि सच ये है कि ये सारे जो भोग हैं ये पाप में डालते हैं, ये मनुष्य को विपत्ति में डालते हैं, और आपत्तियों का स्वामी कहा गया इन्हें, ये स्वामित्व है इनमें आपत्ति लाने का, और हम लोग आप विपत्ति मिटाने का स्वामी बना के बैठे हैं
2: और उसी को जुटाने में पूरा जीवन खर्च
1: लगाए हुए हैं। जी जी,
2: तो बहुत संक्षेप में एक बात आप बताएं कि चूंकि श्री राम कह रहे हैं कि जो सांसारिक संपदाएं हैं उनसे विपत्ति आती है,
1: जी जी,
2: तो संपदा को किस दृष्टि से मनुष्य देखे।
1: बिल्कुल, सांसारिक इसका अर्थ कदापि ये नहीं हुआ कि कोई ये समझ ले कि हम इसका तिरस्कार कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसके सत्य को आप जानें और अपने जीवन को जीवन मुक्त की भांति जिएं, बंधन में ना जिएं। वो कहते ना कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो देखिए, तो ये जैसे नदी है, नदी का कोई मार्ग नहीं है और न उसने कोई चुनाव किया है। जैसे हमारे एक मित्र है वो नर्मदा परिक्रमा करें तो कहीं नर्मदा जी बहुत सक्रिय है, कहीं बहुत विशाल रूप है, और सागर में मिलके तो सागर हो जाती हैं। तो कहने का आशय यह है कि ये संसार की यात्रा में आप निर्विघ्न और निश्चिंत रहें, मतलब द्वंद ना पालें, क्योंकि द्वंद पाल करके आप अपने सामर्थ्य को घटा लेंगे।
2: जी जी,
1: आपसे जो होने की संभावनाएं हैं वो भी कम हो जाएंगी, और संसार की संपदाएं सदा वंचना ही करती रहती हैं। हाँ, ये राम जी कह रहे हैं कि सदा वंचना करती हैं, क्योंकि उनके वैराग्य में ऐसा उनको दिखा है। ये मनुष्यों की मनोवृत्ति को मोह लेती हैं और उनकी सगुण राशि का नाश करती हैं। अब देखिए, संसार जो है आपके सगुण को नष्ट करता है, सद्गुण का,
2: जी जी जी,
1: और तरह तरह के दुख दिया करता है, दुखों का जाल बिछा देता है, धन वैभव की चिंताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, इसलिए मुझे ये आनंद नहीं देते।
2: जी जी, जी। तो ये एक कारण उनके वैराग्य का है, और भी उनके मन में बहुत सी बातें हैं,
1: बहुत सारी बातें हैं जी,
2: तो वो बातें हम एक एक कर आगे सुनेंगे, क्योंकि अब इस कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है, तो इसी बिंदु पर हम ठहरते हैं और अगले अंक की प्रतीक्षा करते हैं। आपने आज बहुत ही सुंदर व्याख्या की भगवान श्री राम की वैराग्य दशा की, यही चर्चा आगे हम जारी रखेंगे अगले अंक में। आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी, नमस्कार।
2: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज आपने भगवान श्री राम की वैराग्य दशा पर चर्चा सुनी। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना
0: अदिति गौड़ की थी। ध्वनियांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें इस कार्यक्रम से। नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
2: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
3: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
5: नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे आज के इस बेहद खास प्रसारण भारत विभूति में। एक ऐसी श्रृंखला जिसमें हम उन व्यक्तित्वों को याद करते हैं जिन्होंने अपने विचारों, कर्मों और साधना से भारत की आत्मा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया।
4: जी हाँ, आज की ये कड़ी समर्पित है एक ऐसे योग पुरुष को जिनकी 70 वर्षों से अधिक की साधना ने योग को केवल आश्रमों और गुरुकुलों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे घर घर, देश देश और महाद्वीप महाद्वीप तक पहुंचाया। एक ऐसी तपस्या जिसमें शरीर की सीमाएं थी पर आत्मबल असीमित था।
5: जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं योगाचार्य BKS अयंगर की। दुनिया जिन्हें उनकी कालजयी कृति लाइट ऑन योगा के माध्यम से जानती है और जिनका नाम आज योग की एक पूरी विधा का पर्याय बन चुका है।
4: उनका पूरा नाम था योगाचार्य बेल्लूर कृष्णमाचार सुंदर राज अयंगर। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने योग को व्यायाम या स्वास्थ्य का साधन नहीं माना, बल्कि उसे जीवन जीने की एक अनुशासित और सजग साधना के रूप में स्थापित किया।
5: शारीरिक दुर्बलताओं, कठिन परिस्थितियों और संघर्षों से भरे जीवन में भी अयंगर जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अनुभवों, प्रयोगों और गहन अभ्यास से ये सिद्ध किया कि योग हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह स्वस्थ हो या रोगी, युवा हो या वृद्ध, कलाकार हो या साधारण गृहस्थ।
4: उनकी साधना में कठोर अनुशासन था पर उद्देश्य करुणा से भरा हुआ। उनकी शिक्षा में सख्ती थी पर उनके पीछे जीवन को बेहतर बनाने की गहरी भावना छिपी थी। आज के इस प्रसारण में हम उनके जीवन की उसी यात्रा को फिर से जीवंत करेंगे, संघर्ष से साधना तक, साधना से सिद्धि तक और फिर सिद्धि से सेवा तक।
5: चौदह दिसंबर 1918 दक्षिण भारत के कर्नाटक का एक छोटा सा गांव बेल्लूर। आज सुबह की धुंध कच्ची धरती पर ऐसे बैठी थी जैसे समय भी ठहर गया हो। गांव की सकरी पगडंडियों पर बसे कुछ साधारण से घरों में ही एक गरीब ब्राह्मण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया जो आगे चलकर संसार को योग का एक नया मार्ग दिखाने वाला था। बेल्लूर कृष्णाचार सुंदर राज अयंगर।
4: इस बालक के जन्म लेते ही उसकी सांसें मानो जीवन से संघर्ष करने लगी। वह 13 बच्चों वाले परिवार में माता पिता की 11वीं संतान था। माँ स्वयं पहले से ही इन्फ्लुएंजा जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं और ऐसे समय में एक ऐसा बालक जन्मा जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल, दुबला और कई बीमारियों से घिरा हुआ था।
5: बालक की हालत इतनी नाजुक थी कि जब उसे बाहों में उठाया जाता तो उसके शरीर का भार नहीं बल्कि उसकी असहाय कोमलता महसूस होती, जैसे वह जीवन और मृत्यु की सीमा पर खड़ा हो। डॉक्टरों की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी और उनके शब्दों में निराशा। उन्होंने माता पिता से कह दिया कि इस बच्चे का जीवन शायद लंबा ना हो।
4: उस क्षण किसी को यह आभास भी न था कि यही दुर्बल सा बालक आगे चलकर अपने संकल्प और साधना से न केवल अपने जीवन को बदलेगा बल्कि लाखों लोगों के जीवन में स्वास्थ्य, आशा और संतुलन का प्रकाश भी फैलाएगा।
5: डॉक्टरों की ये बात सुनकर माँ की आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा। इस बालक के पिता की चुप्पी में दर्द चीख रहा था, पर इतिहास साक्षी है कि वही बच्चे जिन्हें दुनिया असहाय समझ लेती है, आगे चलकर अपनी नियति को चुनौती देते हैं और अपना भविष्य स्वयं लिखते हैं।
4: कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। कौन जानता था कि जन्म लेते ही जीवन से संघर्ष करने वाला ये बालक आने वाले समय में सांस को ही दुनिया का सबसे बड़ा उपचार बनाना सिखाएगा। वह दर्द से भरा हुआ था, पर शायद वही दर्द उसका सुनहरा भविष्य गढ़ने वाला था। कमजोरी भले ही उसके शरीर की थी, पर एक अद्भुत अदम्य शक्ति उसके भीतर से प्रकट होने को आतुर थी।
5: एक ऐसी शक्ति जो उस बालक को केवल जीवित ही नहीं रखेगी, बल्कि उसे योग की दुनिया का सूर्य बना देगी। कौन जानता था कि बेलूर की यह मिट्टी, यह साधारण सा घर, यह बीमार बालक एक दिन विश्व के करोड़ों लोगों के जीवन को छुएगा, उनके जीवन को निरोगी रहना सिखाएगा।
4: अयंगर का जीवन आरंभ में अनुकूल नहीं था। 13 बच्चों की देखभाल करने वाली उनकी अकेली माँ खुद ही अक्सर बीमार रहा करती थी। वहीं टाइफाइड, मलेरिया और तपेदिक सहित बचपन की कई बीमारियों के कारण अयंगर की स्कूली शिक्षा भी सीमित रही। उनके पिता का निधन 9 वर्ष की आयु में हो गया और लगातार खराब स्वास्थ्य, कुपोषण और गरीबी ने 14 वर्ष की आयु में उनकी जीवन प्रत्याशा को और कम कर दिया।
5: संसार में आते ही अयंगर की जीवन परीक्षा शुरू हो गई थी। जैसे जैसे ये बालक बढ़ रहा था, उसका शरीर कमजोर हो रहा था। वो कई बीमारियों से ग्रसित था। परिवार पहले ही गरीबी से जूझ रहा था। तभी उनके जीवन में प्रवेश हुआ एक ऐसे गुरु का जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। कुछ वर्षों में ही बचपन की बीमारी और संघर्षों का ये बुरा दौर गुजर गया। वो युवा अब जीवन के एक नए मोड़ पर था।
4: कुछ समय बाद अयंगर मैसूर रहने चले गए, जहां उनका जीवन एकदम बदल गया। यहां उनका मार्गदर्शन करने वाले थे पूजनीय योगाचार्य तिरुमलई कृष्णमाचार्य, उनके बहनोई, उनके गुरु और उनके योग के उस काल के महानतम विद्वान।
5: अयंगर के जीवन की शुरुआत भले ही कठिन थी, लेकिन कठोर अभ्यास, अनुशासन, गुरु की डांट और घंटों तक आसनों की साधना, मानो जैसे अयंगर जी के भीतर एक चुप सा संकल्प जाग उठा था, अगर जीवित रहना है तो योग ही जीवन बनेगा।
4: हालांकि कृष्णमाचार्य का प्रशिक्षण बिल्कुल भी सरल नहीं था। यहाँ बेहद कठिन, निर्भीक और अत्यंत अनुशासित जीवन शैली थी, अब जिसे अपनाने के अलावा अयंगर के पास कोई और विकल्प था ही नहीं। उनके मन में विचार आया कि अब यह केवल साधना नहीं है, यह उनके अस्तित्व का प्रश्न है। जीना है तो योग करना ही होगा।
5: गुरु का आदेश था अभ्यास, निरंतर अभ्यास करो और शरीर का हर दर्द आपके परिवर्तन की पहली सीढ़ी बन जाएगा। गुरु के इस आदेश से युवा अयंगर तप की अग्नि में उतर गए। दिन हो या रात, कठोर आसन, कठिन अभ्यास और शरीर को योग की अंतिम सीमा तक ले जाना, यही उनकी दिनचर्या बन गई।
4: अयंगर की शरीर को साधने की यात्रा शुरू हो चुकी थी। मन को संतुलित करना और आत्मा को ऊंचा उठाना, अब यही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। दिन में 10 से 12 घंटे अभ्यास, कभी कठिन, कभी वेदनादायक, पर हर दिन आगे बढ़ना है, यही एक ही संकल्प। उनकी साधना का भी बस एक यही सूत्र था, अभ्यास, अभ्यास और केवल अभ्यास।
5: उन्होंने अपने शरीर को एक प्रयोगशाला बना लिया। कौन सा आसन किस रेखा पर टिकेगा, किस सांस पर उसे स्थिरता मिलेगी, इन सब का वो वैज्ञानिक परीक्षण किया करते और अपनी इसी तपस्या के फलस्वरूप आगे चलकर उनके जीवन को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और कई उपलब्धियां उनके नाम लिख दी गईं।
4: वर्ष 1937,

0: पलायन नहीं किया। उन्होंने यह निर्णय स्पष्ट रूप से लिया कि वे गृहस्थ जीवन अपनाएंगे, विवाह करेंगे, परिवार बसाएंगे और समाज के बीच रहकर ही योग का अभ्यास और प्रचार करेंगे।
1: अयंगर के लिए योग किसी गुफा या आश्रम तक सीमित साधना नहीं था। उनके लिए योग रोजमर्रा के जीवन का ही हिस्सा था, जैसे सांस लेना, चलना, काम करना और रिश्तों को निभाना। वे मानते थे कि सच्चा योग वही है जो सामान्य मनुष्य अपने घर, अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों के बीच में जी कर सके।
0: यही कारण था कि उन्होंने योग को साधारण जनमानस की भाषा में उतारा। उन्होंने दिखाया कि योग केवल तपस्वियों का नहीं, योगियों के लिए नहीं, बल्कि गृहस्थों, विद्यार्थियों, महिलाओं, वृद्धों और रोगियों सबके लिए है। उनके योग में जीवन से पलायन नहीं, जीवन से संवाद था।
1: धीरे धीरे अयंगर का जीवन इस बात का पुख्ता प्रमाण बन गया कि योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और संतुलन के साथ जीवन जीने की कला है। उन्होंने योग को ऊंचे आसनों से उठाकर आम आदमी की जमीन पर रखा और वहीं से उसे विश्व भर में फैलाया।
0: इस योगाभ्यासी का गृहस्थ जीवन भी शुरुआत में कठिन रहा। कभी कभी 10-10 घंटे अभ्यास और बदले में नाम मात्र की कमाई, कभी भूखे सोना, कभी बिना विश्राम अभ्यास करना, लेकिन उनके भीतर आगे बढ़ने की एक जिद थी। योग को समझना, योग को जीना और योग को पूर्णता तक पहुंचाना उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था।
1: कहते हैं परिवार के साथ साथ जीवन में मित्रों का होना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि जो संबल, विश्वास और प्रेरणा एक सच्चा मित्र देता है, वह शायद किसी और रिश्ते से नहीं मिल पाता। और जब जीवन में ऐसी मित्रता प्रवेश करती है तो वह कृष्ण सुदामा जैसी अमर मिसाल बन जाती है।
0: अयंगर जी के जीवन में भी ऐसा ही एक अद्भुत क्षण आया जब नियति ने उनका परिचय विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन से करवाया। यह मुलाकात केवल दो व्यक्तियों की भेंट नहीं थी, बल्कि योग और संगीत, दो साधनाओं के मिलन की शुरुआत थी, जिसने आगे चलकर अयंगर जी के जीवन और योग की दिशा को वैश्विक पहचान दिलाई।
1: जी हाँ, साल 1952 की बात है। मेनुहिन अपने वायलिन वादन के एक मुश्किल विषय से जूझ रहे थे। शरीर की थकान, सांस की पकड़ और मन की बेचैनी उनका प्रदर्शन प्रभावित कर रही थी। तभी किसी परिचित ने उन्हें अयंगर से मिलने की सलाह दी। मेनुहिन ने अयंगर के पास आकर योग का अभ्यास शुरू किया, जो केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, सांस और मन के बीच का संतुलन खोजने की एक विधि थी।
0: जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ा, मेनुहिन ने अपने वादन में चमत्कारिक सुधार महसूस किया। उनकी पकड़ मजबूत हुई, सांसों का नियंत्रण बेहतर हुआ और मन अधिक केंद्रित हुआ। इस अनुभव ने दोनों के बीच गुरु शिष्य का बंधन गहरा कर दिया, जो एक सच्ची मित्रता में भी बदल गया। मेनुहिन ने अयंगर को पश्चिम बुलाया, उनसे कहा, आइए हम अपने यहाँ लोगों को भी ये सिखाएं।
1: अयंगर ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और यही वो मोड़ बना जिसने भारत के बाहर अयंगर योग की मान्यता को जन्म दिया। 1960 के दशक में लंदन से एक आग्रह आया। शैक्षिक प्राधिकरण ने अयंगर से कहा कि वे विद्यालयों और कॉलेजों में योग पढ़ाएं। यह कार्यक्रम न केवल शिक्षकों और छात्रों के बीच लोकप्रिय हुआ, बल्कि ब्रिटेन में अयंगर योग के लिए पहला ठोस आधार बना।
0: उन यात्राओं में अयंगर ने सिर्फ योग के आसन नहीं सिखाए, उन्होंने यह दिखाया कि योग कैसे कलाकारों, संगीतकारों और साधारण लोगों के जीवन में शारीरिक और मानसिक सुधार ला सकता है। मेनुहिन ने बाद में कहा कि अयंगर मुझे मेरे सबसे महान वायलिन शिक्षक की तरह मार्गदर्शित करते रहे। यह तारीफ किसी पुरस्कार से कम नहीं थी। उनकी मित्रता ने पश्चिम में योग के प्रति विश्वास और रुचि जगाई।
1: अयंगर और मेनुहिन की यह साझेदारी एक सांस्कृतिक सेतु बनकर उभरी, संगीत और योग के बीच का संवाद। इस मित्रता से यह संदेश गया कि ज्ञान, स्वास्थ्य और कला सीमाओं से परे साझा किए जा सकते हैं। आज भी जिन स्थानों पर अयंगर ने

0: आया वहां उनके प्रभाव के निशान दिखाई देते हैं, जैसे स्वास्थ्य सुधार, बेहतर प्रदर्शन और जीवन के लिए नए दृष्टिकोण।
1: मेनुहिन को अयंगर की साधना में जो दिव्यता दिखाई दी थी, उसमें दुनिया को बदलने की ताकत थी। इस अटूट मित्रता में एक ओर था संगीत का तपस्वी और दूसरी ओर था योग का साधक। मेनुहिन के पश्चिम आने का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद अयंगर कभी नहीं रुके। यही था एक छोटी सी मुलाकात का एक बड़ा असर। जब एक महान संगीतकार और एक समर्पित योगाचार्य मिलते हैं तो वह सिर्फ व्यक्तिगत लाभ नहीं रहता, बल्कि एक पूरी सभ्यता को एक नया मार्ग भी दिखा देता है।
0: इस योग साधक की इस ऐतिहासिक यात्रा ने उन्हें और भारतीय योग को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। लंदन, पेरिस, जिनेवा, अमेरिका, जहां भी अयंगर जाते, लोग उनके सटीक और अनुशासित योग ज्ञान से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। उनका योग अब केवल अभ्यास नहीं, एक वैज्ञानिक पद्धति, एक सुरक्षित प्रणाली और दुनिया भर के लोगों के लिए आशा बन चुका था।
1: समय बीता, योग की उनकी साधना गहराती चली गई। 1973 में उनकी पत्नी इस दुनिया से चली गई। उनकी स्मृति को योग की पवित्र भूमि में अमर रखना अयंगर जी के लिए एक आध्यात्मिक कर्तव्य बन गया। अयंगर ने अपनी जीवन संगिनी राममणि के सम्मान में एक ऐसा संस्थान स्थापित किया जिसने योग की दुनिया की दिशा ही बदल दी। पुणे में स्थित राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान, यह संस्थान सिर्फ एक भवन नहीं था, यह था प्रेम, स्मृति और समर्पण का प्रतीक।
0: यहीं से योग को मिला एक व्यवस्थित ढांचा, एक वैज्ञानिक पद्धति और एक ऐसी दृष्टि जो पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन गई। अयंगर अक्सर कहा करते थे, मेरी पत्नी का बलिदान मेरा आधार है, इसीलिए यह संस्थान सिर्फ भवन नहीं, हमारी साधना का घर है।
1: उनकी बेटी गीता अयंगर और पुत्र प्रकाश अयंगर दोनों ने उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाया और इस तरह अयंगर योग एक वैश्विक आंदोलन में बदल गया। अयंगर परिवार यह कोई सामान्य परिवार नहीं, यह तो योग की एक परंपरा है जो आज एक वैश्विक आंदोलन का स्वरूप ले चुकी है।
0: अयंगर ने एक कठोर लेकिन सुंदर शिक्षण पद्धति बनाई। अयंगर योग सिखाना हो तो सालों का अभ्यास, अनुशासन और परीक्षा अनिवार्य थी। आज 40 देशों में 1800 से अधिक संस्थान अयंगर योग का प्रसार कर रहे हैं। अयंगर का शिक्षण गहरा, सटीक और अत्यंत अनुशासित रहा है। वे कहा करते थे, योग मेरी जीवन शैली है। उनके 3 सिद्धांत, संतुलन, सटीकता और स्थिरता, योग की दुनिया में विख्यात हैं।
1: वे योग को लेकर इतने व्यवस्थित थे कि कभी कभी हास्य शैली में बताते थे कि लोग अक्सर उनके नाम BKS को बीट, कीक और शाउट समझ लेते हैं, क्योंकि वे गलत आसन को तुरंत सुधारते थे। उन्होंने छोटे समूहों से लेकर 1000 लोगों की कक्षाओं में योग सिखाया। 86 वर्ष की उम्र में कोलोराडो, 92 की उम्र में मॉस्को और बीजिंग में उन्होंने योग की कक्षाएं ली। दुनिया उनके सामने नतमस्तक थी।
0: चीन ने तो उनके सम्मान में डाक टिकट तक जारी किया। 1966 में उन्होंने दुनिया को एक कालजयी रचना योग पर प्रकाश, लाइट ऑन योगा, समर्पित की, जिसमें 600 से अधिक आसन और तकनीकें हैं। आज भी इसे योग की बाइबिल कहा जाता है। अब तक कुल 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है।
1: अयंगर ने 1993 में यहूदी मेनुहिन की प्रस्तावना के साथ लाइट ऑन द योगा, सूत्र ऑफ पतंजलि और 2012 में दलाई लामा की प्रस्तावना के साथ कोर ऑफ द योगा, सूत्र द डेफिनेटिव गाइड टू द फिलोसफी ऑफ योगा प्रकाशित की।
0: अयंगर के भारत के प्रति उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें 1991 में पद्मश्री पुरस्कार, वर्ष 2002 में पद्मभूषण और 2012 में प्रतिष्ठित IMC जुरान क्वालिटी मेडल से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तित्वों को दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में जागरूकता और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने में आदर्श भूमिका निभाई है।
1: अयंगर इस पुरस्कार को लेने वाले केवल 2 गैर उद्योगपतियों में से एक हैं। 2012 में उन्हें देश में गांधी जी के बाद 50 महानतम भारतीयों में से एक चुना गया था। अप्रैल 2014 में ही वे भारत गणराज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण को ग्रहण करने के लिए दिल्ली गए थे।
0: समारोह के बाद दिए एक इंटरव्यू में अयंगर ने अपनी जग प्रसिद्ध सादगी के साथ कहा, जीवन में हमारी बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। यह त्याग के लिए नहीं बना है। हम इस समाज में रहते हैं और समाज को कुछ वापस देना हमारा कर्तव्य है। त्याग का विचार मुझे 96 वर्ष की आयु में आएगा। त्याग का अर्थ है सांसारिक सुखों का आनंद छोड़ देना, लेकिन मैं आंतरिक सुख से परिपूर्ण हूँ।
1: उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 20 ग्रंथों का लेखन किया। ये अविश्वसनीय नहीं लगता कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 14 साल में स्कूल छोड़ दिया, वही आगे चलकर योग का सबसे बड़ा दार्शनिक लेखक बन गया।
0: जब किसी में योग्यता होती है तो ईश्वर स्वयं उसमें सामर्थ्य भी भर देते हैं। जीवन के अभावों में पले बढ़े अयंगर सिर्फ योग के साधक ही नहीं थे, बल्कि वे लोक कल्याण के मार्ग पर चलने वाले तपस्वी भी थे। समाज की पीड़ा उन्हें भीतर तक छूती थी, इसीलिए उन्होंने अनेक सामाजिक कार्यों के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में अपना अहम योगदान दिया।
1: योग से मिले धन से अयंगर जी ने बेलूर ट्रस्ट की स्थापना की और उसी बेलूर ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने अपने पैतृक गाँव को पानी, बिजली, अस्पताल, विद्यालय, कॉलेज और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र की सौगात दी। उनकी यही सेवा भावना योग की तरह ही लोगों के जीवन में रोशनी बनकर पहुंची।
0: उन्होंने ऋषि पतंजलि का पहला मंदिर भी पुणे में बनवाया। पश्चिम में योग को विज्ञान और कला की तरह स्थापित करने का सबसे बड़ा श्रेय अयंगर को जाता है। अगर कोई आसन कठिन लगता तो वे कहते, प्रयास करो, जरूरत हो तो रस्सी, ईंट, कुर्सी का सहारा लो, तुम जरूर कर पाओगे।
1: और इसी कारण उन्हें फर्नीचर योगी भी कहा गया। आज जो हम योग के प्रॉप्स जानते हैं, उसकी शुरुआत अयंगर ने ही की थी। योग में प्रॉप्स का उपयोग, ये एकदम नया आविष्कार था जिसमें बेल्ट्स, ब्लॉक्स और बोल्स्टर शामिल थे।
0: बोल्स्टर को कुशन, एक तकिया या एक सहारे के रूप में भी जाना जाता है, ताकि हर व्यक्ति, चाहे वो कमजोर हो या वरिष्ठ हो, अपनी क्षमता के अनुसार सुरक्षित योग कर सके। उनकी योग पद्धति ने लाखों साधकों के जीवन को नया रूप दिया, जिससे कई चमत्कारी परिवर्तन योग साधकों ने महसूस किए। शरीर बदला, स्वास्थ्य सुधरा और मन स्थिर हुआ।
1: अयंगर की मुलाकात जब भी किसी साधक, चिंतक या योगी से होती थी, वे उनसे प्रभावित होते थे, उनके जीवन से प्रेरणा लेते, उनकी बातों से जीवन में संतोष का अनुभव करते। दलाई लामा से अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं जीवन भर योग का विद्यार्थी रहा हूँ। योग किसी जाति, धर्म या देश का नहीं, बल्कि यह पूरी मानवता का है। जीवन में हमारी कई जिम्मेदारियां हैं और समाज को कुछ लौटाना ही जीवन का उद्देश्य है।
0: अयंगर ने अपने योग जीवन में ये अनुभव किए कि स्वस्थ रहते हुए योग करने से हम कई बीमारियों से लड़ सकते हैं। यदि बीमार है तब भी योग से बीमारी कम की जा सकती है या उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने राममणि अयंगर मेमोरियल योगा इंस्टीट्यूट संस्थान में और बाहर भी पश्चिमी डॉक्टरों के साथ मिलकर ऐसे तरीके खोजे जिनमें मरीज अपनी बीमारी के इलाज में सक्रिय रूप से शामिल हो।
1: अयंगर कहते थे, मेरी करुणा कठोर है, मैं बीमारी से लड़ता हूँ, व्यक्ति से नहीं, इसलिए मेरी दया भी कठोर है। आज पश्चिमी चिकित्सा भी उनके इस काम को गंभीरता से देख रही है। उनके इलाज और शोध के कई परिणाम प्रकाशित हो चुके हैं और वैज्ञानिक अध्ययनों के बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं।
0: उनके योग अभ्यास पर एक फिल्म बनाई गई थी। कैमरे में दिखाया गया कि कैसे वे आसनों के बीच बादलों की तरह तेजी से, सहजता से एक से दूसरे आसन में बहते चले जाते थे। यह देखना अद्भुत था, पर साथ ही खतरनाक भी।
1: धीरे धीरे अयंगर जी को यह समझ आया कि तेज गति वाला अभ्यास केवल युवा और अत्यंत स्वस्थ लोगों के लिए ही उपयुक्त है और इसमें गलतियों की संभावना भी बहुत अधिक रहती है। इसलिए उन्होंने अपने अभ्यास की चाल को धीमा किया, हर आसन के कोण, हर स्थिति, हर आंदोलन और हर श्वास का गहन अध्ययन शुरू किया।
0: यही वह पल था जब उनके भीतर शोध का एक नया संसार खुला और यही शोध बाद में योग की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। जब दुनिया में योग की क्रांति आई तब योग आसनों को पेटेंट कराने की होड़ होने लगी, जिसका उन्होंने वर्ष 2011 में खुलेआम विरोध किया। वो कहते थे, योग का अनुभव हर व्यक्ति का अधिकार है, यह बहस का विषय नहीं, अभ्यास का मार्ग है।
1: 1950 के दशक में अयंगर के मित्र के आह्वान पर शुरू हुई भारत के योग की विश्व यात्रा सतत चलती रही। उन्होंने पश्चिम को यह दिखाया कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवन यात्रा है। उनकी पुस्तक लाइट ऑन योगा ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। आज भी उनकी ये किताब योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, जहां जहां वे पहुंचे वहां योग के मानो बीज फूट पड़े।
0: टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया। ये सम्मान केवल किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत की योग परंपरा का था। अयंगर योग की कई विशेषताएं हैं। अयंगर योग का मूल मंत्र है संतुलन, सटीकता और स्थिरता। वो हर आसन को बारीकी से करने में विश्वास रखते ताकि रोम रोम तक योग को महसूस किया जा सके।
1: हाँ, हम कह सकते हैं कि अयंगर शिक्षक से ज्यादा मूर्तिकार थे। वे अपने हर विद्यार्थी को ध्यान से देखते और उनकी गलती तुरंत सुधारते। वे तब तक सुधार करवाते जब तक योग आसन अपनी पूर्णता को न छूले। उनके शिष्यों से उन्हें सिर्फ एक अपेक्षा थी, निष्ठा, नैतिकता और ईमानदार अभ्यास। वे कहते, लोकप्रियता योग के सच्चे लाभों को ढक दे, यह मैं कभी नहीं चाहता।
0: घर में वे अत्यंत सरल थे, शांत, नम्र और नियमों के पक्के व्यक्तित्व। सफलता के अभिमान ने उन्हें कभी छुआ ही नहीं। वे हमेशा कहते, मैं सिर्फ योग का एक विद्यार्थी हूँ। उनकी विनम्रता ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। उनका मानना था कि उदाहरण ही सब कुछ है और जब उदाहरण सत्य को व्यक्त करता है तो उसमें दूसरों को बदलने की शक्ति होती है।
1: उनके ये शब्द आज भी प्रेरणा है। आपका शरीर आपका मंदिर है, इसे शुद्ध और स्वच्छ रखें ताकि इसमें आत्मा का वास हो सके। उनका यही संदेश था। उनका मानना था कि योग केवल नजर नहीं बदलता बल्कि जीवन जीने का नजरिया बदल देता है।
0: वर्ष 2001 में एक तारे का नाम उनके नाम पर रखा गया तो वे हमेशा की तरह हंसते हुए बोले, योग की यात्रा अब धरती पर नहीं रही, आकाश तक पहुंच गई है।
1: और आज दुनिया भर में अयंगर योग संस्थान के लाखों शिक्षक इन संस्थानों में कई लोगों को योग की शिक्षा दे रहे हैं। ये करोड़ों साधक उनकी इस योग साधना की विरासत को जीवित बनाए हुए हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया। पर उनका सबसे बड़ा पुरस्कार वो लाखों मुस्कानें थीं जो योग से जीवन पाती रहीं।
0: 20 अगस्त 2014 का दिन, 96 वर्ष की आयु में वो अपनी योग की दुनिया से विदा हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसा प्रकाश जो दुनिया को आने वाली सदियों तक योग का मार्ग दिखाता रहेगा। BKS अयंगर, साधक, शोधकर्ता, शिक्षक, दार्शनिक और मानवता के लिए योग का अमूल्य उपहार थे। श्रोताओं, जब तक ये संसार रहेगा तब तक इस विभूति का नाम भी अमर रहेगा।
1: उनकी बुद्धि ऊंची थी पर पैर हमेशा धरती पर टिके रहे। वे असाधारण भी थे और आश्चर्यजनक रूप से साधारण भी। यही संतुलन, यही स्थिरता उन्हें योग जगत का सूर्य बनाती है।
0: आज का यह विशेष कार्यक्रम योगाचार्य BKS अयंगर को समर्पित था। उनकी 70 वर्षों की योग साधना हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। यहाँ हम कह सकते हैं कि वे केवल शरीर से विदा हुए पर योग के हर श्वास, हर आसन, हर क्षण में वे आज भी जीवित हैं। भारत की इस विभूति को हमारा शत शत नमन।
1: मन को दृढ़ बनाओ, योग तुम्हें पुनर्जन्म देगा। हम अयंगर के इस मंत्र के साथ आज के विशेष कार्यक्रम भारत विभूति को यहीं विराम देते हैं।
0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन हमें मिला संतोष कुमार वर्मा से। परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। समन्वय सहयोग था सतीश बाथम का। लेखन स्वाति गिरी का। और आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना।
1: और मैं विजयकांत नायक।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। देश का चैनल देश के लिए।
2: भारत विभूति। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर। देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। लीजिए प्रस्तुत है नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। परिक्रमा के आज के सफर पर चलिए मेरे साथ।

श्रोताओं, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सिनेमा अध्ययन व विज्ञापन एवं जनसंपर्क विभाग के स्टूडेंट्स ने अनोखा वरदान नामक नाटक खेला। विश्वविद्यालय परिसर के मुक्ताकाश मंच पर निर्माण नाट्य समूह की ये प्रस्तुति थी। इस अवसर पर अतिथि के रूप में उपस्थित थे भारत भवन के प्रेम शंकर शुक्ल। अभिनय, विषय वस्तु, प्रकाश और संगीत का सफल संयोजन प्रस्तुति में दिखा। विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने कहा कि ये रचनात्मक अभ्यास हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। नाटक में समाज की गरीबी अमीरी को रेखांकित किया गया था। भगवान गणेश एक लालची अमीर सेठ का कान मंदिर से चिपका देते हैं क्योंकि उसने भविष्यवाणी सुन ली है कि एक सप्ताह में भीख मांगने वाली गरीब महिला अमीर हो जाएगी। तो इस तरह का ये नाटक था जो खूब सराहा गया।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में आयोजित 5 दिवसीय डिजाइन शिविर 4.0 का समापन शुक्रवार को हुआ। अंतिम दिन की शुरुआत कैलीग्राफी सत्र से हुई। इसमें स्टूडेंट्स ने अक्षरों को केवल लेखन नहीं बल्कि एक दृश्य कला के रूप में समझा। उन्होंने पारंपरिक और आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया। उन्होंने अलग अलग फॉन्ट स्टाइल, स्ट्रोक्स और लेआउट्स का अभ्यास किया।

द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से शनिवार को महिलाओं और यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सुबह 9:30 बजे आयोजित हुआ है। सेमिनार में चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़े जो लोग हैं वो अनेक विषयों पर चर्चा सुनेंगे। कार्यक्रम की खास बात ये होगी कि इसमें देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी और पूर्व राज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी भी शामिल होंगे।

श्रोताओं, मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति इसके द्वारा महीने के तीसरे शनिवार को हिंदी भवन में वरिष्ठ विमर्श का आयोजन किया जाता है। विमर्श में हर बार किसी समसामयिक विषय पर विमर्श होता है। इस बार नवाचार करते हुए व्यंग्य पाठ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम 16 मई यानी आज शाम 4 बजे हिंदी भवन में होगा। विमर्श के संयोजक महेश सक्सेना ने बताया कि विमर्श में शामिल लोग समसामयिक विषयों पर व्यंग्य पाठ कर सकते हैं। हर व्यंग्य पाठ के लिए 3 से 4 मिनट का समय नियत किया गया है।

राजभवन में 22 से 24 मई तक 3 दिवसीय संतवाणी समारोह आयोजित किया गया है। इस आयोजन में संत कवियों के पदों और भक्ति रचनाओं का गायन देश की ख्याति प्राप्त गायिकाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। समारोह का आयोजन अनहद भारत भवन द्वारा किया जा रहा है। समारोह के पहले दिन 22 मई को शाम 7 बजे पूर्वी सप्रे भक्ति पदों की प्रस्तुति देंगी। इसके बाद 7:45 पर कलापिनी कोमकली भक्ति गायन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगी। 23 मई को शाम 7 बजे माधवी मधुकर झा तथा शाम 7:45 पर मंजुषा पाटिल अपनी प्रस्तुतियां देंगी।

मध्य प्रदेश लेखक संघ के तत्वावधान में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अशोक व्यास की दो कृतियां कहानी संग्रह उम्र की सीमा होती है और निबंध संग्रह स्वप्न भंग का अनवरत सिलसिला का लोकार्पण कल दुष्यंत संग्रहालय शिवाजीनगर में हुआ। लेखक डॉक्टर अशोक व्यास ने अपनी पुस्तकों पर बोलते हुए कहा कि मैं मूलतः व्यंग्यकार हूं, परंतु सभी बातें व्यंग्य में नहीं कही जा सकती हैं। कुछ बातें सीधे तौर पर भी कही जाती हैं। इसी का परिणाम है ये दो पुस्तकें जो कहानियों और निबंध के रूप में सामने आई हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी दोनों पुस्तकों से एक एक रचना भी सुनाई। मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम के वरिष्ठ कथाकार मुकेश वर्मा ने कहा कि लेखक ने अच्छे विषयों का चयन किया है और अच्छा लिखा है। सारस्वत अतिथि डॉक्टर विकास दवे ने पुस्तकों पर अपने विचार रखे।

श्रोताओ, मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन के दौर में भी बच्चों के बीच कॉमिक्स का आकर्षण कम नहीं हुआ है। चाचा चौधरी, चंपक, अमर चित्रकथा, पोकेमोन, सुपर हीरोज और कार्टून कैरेक्टर्स आज भी बच्चों की पसंदीदा दुनिया बने हुए हैं। यही कारण है कि अब शहर के कई कैफे और फैमिली जोन में कॉमिक्स कॉर्नर, बोर्ड गेम्स और रीडिंग स्पेस तैयार किए जा रहे हैं, जहां बच्चे तो कॉमिक्स का आनंद लेते ही हैं, वहीं माता पिता भी अपनी बचपन की यादों में खो जाते हैं। अब ऑनलाइन स्टोर्स पर कॉमिक्स आसानी से उपलब्ध होने के कारण अभिभावक बच्चों के लिए अपनी पसंदीदा कॉमिक्स ऑर्डर कर रहे हैं, बच्चों के साथ वो भी इसे पढ़ रहे हैं।

श्रोताओं, देश में एक बार फिर से स्वच्छता सर्वे शुरू हो रहा है। भोपाल देश की सबसे स्वच्छ राजधानी तो है, लेकिन अब तक देश का सबसे स्वच्छ शहर इसे बनना है। अगर ऐसा करना है तो सोच में बदलाव लाना जरूरी है। मन्नत सोशल वेलफेयर सोसाइटी नामक संस्था का संचालन करने वाली अंजिता और उनके पति अमित इस सोच को बदलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्होंने कचरा कैफे की शुरुआत की है। ये कैसे काम करता है? इस कैफे का पूरा सिस्टम डिजिटल है और इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। वर्तमान में इस ऐप पर 4,000 लोग रजिस्टर हो चुके हैं। भोपाल में इस समय कचरा कैफे संचालित हो रहे हैं, उनकी संख्या 3 है, जहां औसतन रोज़ाना लगभग 120 लोग अपना कबाड़ लेकर आते हैं। उनको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, कूपन मिलते हैं, जिनके बदले वो मनचाहा भोजन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस शुरुआत से महिलाओं को भी रोज़गार मिला है। इस पहल का सबसे गहरा असर बच्चों और बुज़ुर्गों पर दिखा है। घर में जो कचरा पहले माताएं समेटती थीं, अब बच्चे खुद उसे अलग करते हैं ताकि वे कचरा कैफ़े में जाकर अपने पॉइंट से पिज़्ज़ा या कोल्ड कॉफ़ी ले सकें। इसके अलावा कैफ़े में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ा गया है। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। इसके साथ ही परिक्रमा का आज का अंक अब यहीं संपन्न होता है। अनुमति दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। आइए अब सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कुछ देशभक्ति रचनाएं। हमारी इस प्रसारण सभा में अभी बहुत कुछ खास है आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर देश का चैनल, देश के लिए। जी हाँ, रेडियो आजाद हिंद।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आजाद हिंद।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने। आजाद हिंद।
1: नमस्कार मित्रों, आजाद हिंद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन। आप तो मुझे पहचानते हैं ना, मैं हूं इतिहास।
2: और मैं हूं तारीख। मेरा भी नमस्कार आप सभी आजाद हिंद के श्रोताओं को। इतिहास
1: जी,
2: मेरी तो एक ही जिज्ञासा रहती है, एक ही सवाल होता है
1: कि आज कौन सी शौर्य गाथा है।
2: जी बिल्कुल, बताइए ना।
1: जी, आज फिर बारी है बंगाल के क्रांतिकारियों की गौरव गाथा की। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में बंगाल और बंगाल के क्रांतिकारियों का कितना बड़ा योगदान है, ये तो आप और हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, पुलिन बिहारी दास और मास्टरदा, ऐसे कितने और भी नाम हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने योगदान से देश को आजादी दिलाई।
2: इतिहास
1: जी,
2: अभी भी आपने नहीं बताया कि वो कौन से क्रांतिवीर हैं जो हमारी आज की गौरव गाथा के नायक हैं।
1: जी, आपके साथ हमारे श्रोता भी जानना चाह रहे होंगे।
2: बिल्कुल,
1: तो आज हम बात करते हैं एक नहीं दो क्रांतिकारियों की, और वो हैं मृगेंद्र कुमार दत्त और रामकृष्ण रॉय।
2: जी हाँ,
1: 1930 का साल, पूरे देश में क्रांति की आग फैली हुई थी। हमारे राजनेता देशभक्त अपने अपने मोर्चों पर लगे हुए थे और हर एक क्रांतिकारी, हर देशभक्त और हर भारतवासी की एक ही अभिलाषा थी, और वो थी भारत की आजादी।
2: आजादी पाने की इसी अभिलाषा ने बंगाल के क्रांतिकारियों में भी जोश भर दिया। बंगाल के बाकी हिस्सों की तरह मिदनापुर भी क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र था।
1: जी,
2: देश के बाकी हिस्सों की तरह मिदनापुर भी ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों का शिकार था।
1: मिदनापुर में उन दिनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे। भारतीय चाहते थे कि अपने देश का ही नागरिक वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने। मिदनापुर के क्रांतिकारियों ने प्रण किया कि हम मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तब तक मारते जाएंगे जब तक उस पद पर कोई भारतीय नियुक्त नहीं किया जाता। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इनकी बातों पर जरा भी गौर नहीं किया।

0: 7 अप्रैल 1931 को प्रदर्शनी का उद्घाटन करने शाम 7:30 बजे श्री जेम्स वहां आए। विद्यालय के कई कमरों में प्रदर्शनी लगाई गई थी।
1: विद्यालय के पहले कमरे में जेम्स पेड्डी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद प्रदर्शनी के बाकी हिस्सों को देखने के लिए वो दूसरे कमरे में पहुंचे। वे जैसे ही कमरे में घुसे, एक नौजवान ने रिवॉल्वर निकाली और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही वो वहां से भागे, एक दूसरे क्रांतिकारी ने उनका पीछा किया और उन पर लगातार गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज से पूरे विद्यालय में भगदड़ मच गई। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन के लिए कलकत्ता से खास डॉक्टर भी बुलवाए गए। डॉक्टर आए और ऑपरेशन से जेम्स पेड्डी के शरीर से एक गोली निकाली।
0: अगली सुबह एक ऑपरेशन और किया गया और उनके शरीर से एक और गोली निकाली गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हालत इसके बाद भी लगातार बिगड़ती गई और 8 अप्रैल 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। मिदनापुर के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों को मारने का जो प्रण किया था, उसकी पहली कड़ी में वे सफल रहे।
1: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेम्स पेड्डी की मौत से अंग्रेज सरकार बौखला गई, लेकिन क्रांतिकारियों के आगे वो झुके नहीं। जेम्स पेड्डी की जगह एक और अंग्रेज को इस पद पर नियुक्त किया गया और उनका नाम था रॉबर्ट डगलस।
0: रॉबर्ट डगलस ने मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम संभाल तो लिया, लेकिन वे शुरू से डरे हुए थे
1: जी।
0: उन्होंने अपने भाई और कुछ मित्रों को पत्र भी लिखे जिसमें उन्होंने इस डर का भी जिक्र किया। सरकार ने उनकी सुरक्षा के इंतजाम भी किए, लेकिन क्रांतिकारियों के इन धमकियों से सरकारी कामकाज रोका तो नहीं जा सकता था। 30 अप्रैल 1932 को मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग चल रही थी। श्री डगलस इस बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। मीटिंग में कई सदस्य हिस्सा ले रहे थे। मजिस्ट्रेट डगलस फाइल के कागजातों पर हस्ताक्षर भी करते जा रहे थे। इतने में दो नौजवान डगलस के कमरे में घुसे। दोनों ने एक साथ डगलस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक के बाद एक 8 गोलियां डगलस के शरीर में समा गई।
1: गोलियां चलाकर दोनों नौजवान भागे। पुलिस ने पीछा किया। उनमें से एक पुलिस की गोली से घायल होकर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारी का नाम था प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य। उसकी तलाशी ली गई और जेब से एक पर्चा निकला जिसमें लिखा था, हिजली जेल में कैदियों पर किए गए अमानवीय अत्याचारों का ये हल्का प्रतिरोध है। हमारे बलिदानों से अंग्रेज सरकार को ये सबक लेना चाहिए और भारतीयों को भी इन बलिदानों से जाग जाना चाहिए।
0: हिजली जेल में कैदियों पर 16 सितंबर 1931 की रात जेल के सिपाहियों ने मिलकर लाठियों से प्रहार किया और गोलियां चलाई, जिसमें संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर दत्त नाम के दो क्रांतिकारी मारे गए। इसी घटना के बारे में प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य ने पत्र में लिखा था जो उनकी जेब से बरामद किया गया था।
1: घायल डगलस को अस्पताल ले जाया गया। खड़गपुर से ऑपरेशन के लिए डॉक्टर भी बुलवाए गए, लेकिन डगलस को बचाए नहीं जा सका। प्रद्योत भट्टाचार्य को पुलिस ने बड़ी यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे साथी का नाम नहीं बताया।
0: प्रद्योत भट्टाचार्य पर विशेष अदालत में मुकदमा चला। उन्हें फांसी की सजा दी गई। 12 जनवरी 1933 की सुबह प्रद्योत भट्टाचार्य को फांसी दे दी गई।
1: रॉबर्ट डगलस की मृत्यु के बाद पीईजी बर्क को मिदनापुर का नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया। पिछले दो अधिकारियों की हत्या से नए अधिकारी बर्क घबराए हुए थे और उन्होंने अपनी हिफाजत के और भी कड़े इंतजाम किए थे।
0: 2 सितंबर 1933 को मिस्टर बर्ग की टीम टाउन क्लब और मोहम्मडन स्पोर्ट्स क्लब के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ। श्री बर्ग निर्धारित समय पर मैदान पहुंचे। उनके अंगरक्षक भी उनके साथ थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बर्ग मैदान में उतरे और खेलने लगे। जिस खिलाड़ी से गेंद छीनने के लिए वे आगे बढ़े, उस खिलाड़ी ने रिवॉल्वर निकालकर उन पर गोलियां चला दी। उन पर गोली चलाने वाले क्रांतिकारी का नाम था मृगेंद्र कुमार दत्त। उसके साथ खड़े दूसरे खिलाड़ी ने भी बर्ग पर गोली चला दी। गोली चलाने वाले इस दूसरे क्रांतिकारी का नाम था अनाथ बंधु पांजा। 6 गोलियां खाकर मजिस्ट्रेट बर्ग जमीन पर गिर पड़े और कुछ ही क्षणों में उनकी मौत हो गई।
1: पास में खड़े पुलिस अधिकारी ने मृगेंद्र को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और बर्ग के अंगरक्षकों ने उस पर गोली चला दी। क्रांतिकारी मृगेंद्र नीचे गिर पड़े और गिरफ्तार कर लिए गए।
0: दूसरे क्रांतिकारी अनाथ बंधु पांजा को रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर ने गोली मार दी और मैदान में ही उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन मृगेंद्रनाथ दत्त की मौत अस्पताल में हो गई।
1: इसी बीच खेल के मैदान को पुलिस ने घेर लिया। खेल को रोककर सभी दर्शकों की तलाशी ली गई। तलाशी के बाद 3 और क्रांतिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन क्रांतिकारियों में निर्मल जीवन घोष, ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण रॉय थे।
0: इन 3 पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण रॉय को 25 अक्टूबर और निर्मल जीवन घोष को 26 अक्टूबर 1934 को मिदनापुर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई।
1: अपने 3 अधिकारियों की मौत के बाद अंग्रेज सरकार को मिदनापुर के क्रांतिकारियों से आखिरकार हार माननी पड़ी और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर एक और भारतीय को ही चुना गया।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: श्रोताओं, हमारी आजाद जमी, आजाद आसमां की दास्तां, हमारे तन और हमारे मन की स्वतंत्रता की कहानी अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद में।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सुर सागर।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सुर सागर।

0: कलाकार हैं राम भावसार और उनके साथी। ये प्रस्तुति हुई मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित श्रृंखला संभावना के तहत।
1: अब लेते हैं आनंद भक्ति गायन का। यह प्रस्तुति शाजापुर के राम भावसार एवं साथियों द्वारा दी जा रही है।
2: नमस्कार, मेरा नाम राम भावसार है और उज्जैन संभाग शाजापुर जिला पुलाई कला ग्राम का मैं निवासी हूँ और ये मेरी पूरी टीम है। क्योंकि मालवा की संस्कृति में अनेक परंपराएं चलती है, मध्य प्रदेश में चार परंपराएं जो हमारे फोक के अनुसार होती हैं, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, मालवा और निमाड़ी। तो मालवा क्षेत्र की जो लोकगीत की परंपरा है, इसमें अनेक परंपराएं हैं गायन की, किंतु वर्तमान में हम जिसकी प्रस्तुति देने जा रहे हैं ये काफ़ी पुरानी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जन जन तक इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आशीर्वाद चाहते हैं, धन्यवाद। और इस परंपरा का नाम है अम्बे माता का गरबा, जो कि गर्वो शब्द से इसका उच्चारण किया जाता है, जो ज्वाला देवी के लिए उपयोग होता है। तो आइए गणेश वंदना से हम प्रारंभ करते हैं।

इसी परंपरा में अंबा माता का आह्वान किया जाता है, और आह्वान में अंबा माता का मतलब ये होता है कि आदि शक्ति जगदम्बा स्वरूपा दुर्गा माँ, उनका आह्वान किया जाता है और मटकी पे उनको विराजमान किया जाता है ज्वाला देवी के रूप में। तो परंपरा में अगला गीत है

जल जमनारो पानी मैं गई ने सुन सावरिया। गोपियां कृष्ण भगवान को कह रही है, रासलीला में प्रवेश कर रहे हैं, जो मालवा की रासलीला

हमारी जो देवास की जो हमारे मालवा क्षेत्र की जो पहचान है बाबा महाकाल और देवास की टेकरी की माता जी हमारी जगदम्बा माई, उनके लिए मालवा का एक प्रसिद्ध भजन है।

गुजरिया बरसाने की। ये सब मालवा के फोक में कृष्ण की लीलाओं का भी बहुत सारी जगह वर्णन है। तो कृष्ण भगवान के ऊपर भी मालवा में बहुत अच्छे अच्छे गुणी कलाकारों ने बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखी है, उनको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।

और अब गोपी गोपी कृष्ण भगवान को कह रही है, क्योंकि गोपियों की बाट छेड़ते हैं कृष्ण भगवान, रास्ते में रोकते हैं, तो गोपियां कह रही हैं,

कार्यक्रम सुरसागर में आप सुन रहे थे भक्ति गायन। कलाकार थे राम भावसार और उनके साथी। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

सुर सागर। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: पिछली कड़ी में आपने जाना कि इंग्लैंड में रहते समय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मैक्स मूलर महोदय से स्वामी जी की भेंट हुई थी। वे विश्व विख्यात विद्वान थे और विराट प्राच्य विद्या विशारद एवं भारत प्रेमी भी थे। इस मुलाकात को सभी ने एक ऐतिहासिक घटना माना है।
1: इंग्लैंड प्रवास के दिनों में सेवियर दंपत्ति और कुमारी मूलर ने स्वामी जी को लेकर यूरोप भ्रमण, खासकर स्विट्जरलैंड भ्रमण करने का निश्चय किया। स्वामी जी खुशी खुशी गए। कई महीनों के कठिन परिश्रम के बाद उन्हें विश्राम करने की जरूरत महसूस हुई।
0: जुलाई माह के अंतिम भाग में शिष्य व मित्रों के साथ लंदन से यात्रा कर स्वामी जी जेनेवा शहर पहुंचे। उस समय जेनेवा में एक शिल्प प्रदर्शनी हो रही थी। स्वामी जी ने सब कुछ घूम घूम कर देखा। अंत में उन्हें एक बड़ा सा बैलून दिखा। उन्होंने पूछा,
2: ये बैलून जैसी चीज क्या है?
3: स्वामी जी, ये बैलून ही है। इसमें इतनी गैस भरी जाती है कि ये दो चार लोगों को टोकरी में बिठाकर उड़ा ले जा सकता है।
2: अच्छा, तो मैं भी उसमें बैठूंगा, देखूं तो जरा ऊपर से दुनिया कैसी दिखती है।
3: आप? अरे नहीं, ये बहुत सुरक्षित नहीं है।
2: सुरक्षित नहीं तो इतने लोग इसमें सवारी करने के लिए कतार में क्यों लगे हैं?
3: नहीं स्वामी जी, आप ना जाइए।
2: अरे मुझे कुछ नहीं होगा। कब उड़े गए गुब्बारा?
3: सूर्यास्त के समय आकाश का नजारा बहुत बढ़िया दिखता है।
2: ठीक है।
0: स्वामी जी अधीर होकर सूर्यास्त का इंतजार करने लगे। उनकी बच्चों जैसी अधीरता देख सब मन ही मन मुस्कुराते रहे। अंत में स्वामी जी की बारी आई। वे खुशी खुशी गुब्बारे में सवार होकर उड़ने लगे। आकाश साफ था। सूर्यास्त के समय आसमान को देखकर स्वामी जी बहुत ही प्रसन्न हुए। नीचे आकर उन्होंने कहा,
2: आहा, क्या स्वर्गीय नजारा था, क्या रंग थे, आकाश का एक नया रूप देखा, और तुम लोग मुझे स्वर्गीय दृश्य को देखने से रोक रहे थे।

0: जेनेवा से साथियों के साथ कैसल ऑफ चिलो गए। स्वामी जी ने वहाँ से मॉन्ट ब्लैंक की ओर यात्रा की। मनोरम पर्वतों पर से गुजरते समय उन्हें हिमालय की याद हो आई। अपने परिव्राजक जीवन को याद करते हुए उन्होंने कहा,
1: मैं चाहता हूँ हिमालय में एक मठ स्थापित कर शेष जीवन ध्यान व तपस्या में बिता दूं। इस मठ में मेरे भारतीय व पाश्चात्य शिष्यगण रहेंगे। मैं उन्हें प्रचार कर्मी के रूप में तैयार कर दूंगा। पहले दल के शिष्यगण पाश्चात्य देशों में वेदांत के प्रचार कार्य में संलग्न होंगे और दूसरा दल भारत की उन्नति के लिए आत्मोत्सर्ग करेगा।
2: स्वामी जी के शिष्यगण उनका संकल्प जानकर उत्साह से बोले, अवश्य स्वामी जी, भविष्य के कार्य के लिए हमें इस प्रकार का एक मठ अवश्य चाहिए। एल्प्स पर्वत के शिखर पर बैठे स्वामी जी ने शिष्यों के साथ जो चर्चा की थी वो बाद में ईश्वर की कृपा से कार्य रूप में परिणित हुई।
0: शिष्यों के साथ आश्रम की चर्चा करने के बाद स्वामी जी ने भारत में लाला बद्री शाह को पत्र लिखा।
1: क्या आप अल्मोड़ा के समीप कोई ऐसा उपयुक्त स्थान जानते हैं जहां उद्यान आदि के साथ मैं अपना मठ बना सकूं? उद्यान का होना अत्यंत आवश्यक है। एक छोटी सी पहाड़ी मिल जाए तो ठीक हमारे मन माफिक होगा।
2: स्वामी जी की इच्छा अनुसार ऐसा ही एक सुंदर आश्रम पिथौरागढ़ जिले के मायावती नामक स्थान पर सेविया दंपत्ति द्वारा प्रतिष्ठित किया गया। वस्तुतः स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक दृश्य पग पग पर उन्हें हिमालय की याद दिला रहे थे और उनके साथ ही उनके मन में ध्यान, तपस्या, आश्रम आदि की अभिलाषा जाग रही थी। वहां के किसानों का व्यवहार देखकर उनके मन में हिमालय की पहाड़ी जातियों की स्मृति उदय हो रही थी। उन्होंने अपने साथियों से कहा,
1: इनके रीति रिवाज तथा वेशभूषा देखता हूं, बिल्कुल हिमालय की पहाड़ी जातियों के समान ही ये लोग, जो अपनी पीठ पर लंबी टोकरी लटकाए चलते हैं, वो भी हमारे देश के पहाड़ी अंचल में व्याप्त टोकरियों के समान ही हैं।
0: स्विट्जरलैंड में एक पहाड़ी पर चढ़ते समय स्वामी जी ने जिद करके एक हिमनद पे पार किया था। उस हिमनद का नाम था

0: एवं निस्तब्धता का साम्राज्य है। संसार की गंदगी का नामो निशान न था। ऐसे अनुकूल परिवेश में स्वामी जी अक्सर ध्यान मग्न रहते थे। पहाड़ों पर वे अकेले ही घूमने निकल जाया करते थे।
1: एक दिन पहाड़ों पर उन्हें एक छोटा मंदिर दिखा। वो मैरी माता का मंदिर था। स्वामी जी पहाड़ से कुछ फूल चुनकर लाए और श्रीमती सेवियर से बोले,
2: मेरी भक्ति और कृतज्ञता के प्रतीक स्वरूप आप इन फूलों को वर्जिन मैरी के चरणों में अर्पित कर दीजिए, क्योंकि वे भी तो माँ ही हैं।
1: इस प्रकार स्विट्जरलैंड में कई सप्ताह बिताने के बाद स्वामी जी ने स्वयं को काफी स्वस्थ महसूस किया। उन्होंने 8 अगस्त के पत्र में गुडविन को सूचित किया,
2: अब मैं काफी ताजगी महसूस करता हूँ। खिड़की से बाहर दृष्टि डालते ही सामने विराट हिमनद देख पाता हूँ और ऐसा अनुभव होता है मानो मैं हिमालय में हूँ। मेरी रगों में स्वाभाविक शक्ति पुनः लौट आई है और जिस प्रकार की परेशानियों की बात तुमने लिखी है वे मुझे स्पर्श तक नहीं करती। ये बच्चों का खेल भला मुझे कैसे उद्विग्न कर सकता है? सारा संसार बच्चों का खेल मात्र है, प्रचार करना, शिक्षा देना आदि सब। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो न द्वेष करते हैं और न कामना, उन्हीं को सन्यासी समझो। कुछ दिनों पूर्व अचानक ही कृपानंद को पत्र लिखने की तीव्र इच्छा हुई। संभव है वो दुखी होकर मेरी याद कर रहा हो, अतः मैंने उसे एक स्नेहपूर्ण पत्र लिखा था। कुमारी वाल्डो से कहना कि अपना आंतरिक स्नेह प्रदर्शित करते हुए उसे कुछ धन भेज दे। प्रेम का कभी नाश नहीं होता। संतान चाहे जैसी हो या चाहे जो करे, पर पिता का प्रेम अमर है। वो मेरे पुत्र के समान है। इस समय दुख में होने के कारण मेरे स्नेह एवं सहानुभूति पर उसका अधिकार वैसा ही है या शायद उससे भी अधिक।
1: उन्होंने कृपानंद को लिखा था,
2: कल मैं मोंटेरोजा के हिमनद के किनारे गया था और वहां चिर तुषार के प्रायः बीच में उत्पन्न कुछ सदाबहार फूल तोड़ लाया। उनमें से एक इस पत्र में रखकर तुम्हारे लिए भेज रहा हूं। आशा है तुम भी इस पार्थिव जीवन के समस्त बाधा विघ्न रूपी हिम तथा तुषार राशि के बीच उसी प्रकार की आध्यात्मिक दृढ़ता प्राप्त करोगे। सत्य की ही विजय होती है, मिथ्या की नहीं। सत्य के होकर ही देवयान का मार्ग अग्रसर होता है। यहां पर कोई आश्रम नहीं है। एक रहने से कितना अच्छा होता, मैं उससे अतीव आनंदित होता और इस देश का भी कितना भला होता।
0: स्विट्जरलैंड के ग्रैंड होटल सासफी वेले से लिखित स्वामी जी के 8 अगस्त के पत्र से ज्ञात होता है कि वे कील निवासी जर्मन दार्शनिक पॉल डायसन के आमंत्रण पर 10 सितंबर को सेवियर दंपत्ति के साथ प्राध्यापक के घर पहुंचने वाले हैं, परंतु कुमारी मूलर उसके पहले ही इंग्लैंड लौट जाएंगी। प्राच्य विद्या के महान पंडित डायसन स्वामी जी के बारे में जानते थे तथा उनके व्याख्यानों का पाठ करते थे। उन्होंने स्वामी जी से मिलने की उत्सुकता व्यक्त करते हुए पत्र लिखा था जो लंदन से घूमकर उस सुदूरवर्ती गांव में आकर उन्हें प्राप्त हुआ। प्राध्यापक की इच्छानुसार स्वामी जी ने भ्रमण योजना में किंचित परिवर्तन कर जर्मनी होते हुए इंग्लैंड लौटने का निश्चय किया, परंतु तब भी पूरा एक महीना हाथ में था। अतः ऐसी योजना बनी कि वे लोग कुछ दिन और स्विट्जरलैंड में ही बिताएंगे और तदुपरांत कुमारी मूलर के अतिरिक्त बाकी लोग जर्मनी के 2-1 स्थानों का दर्शन करते हुए कीव पहुंचेंगे। मूलर स्विट्जरलैंड से ही वापस लौट जाएगी।
1: पूर्वोक्त ग्राम त्याग कर पूरी टोली संभवतः 22 अगस्त को स्विट्जरलैंड के ही लुसर्न नगर में जा पहुंची। लुसर्न में देखने योग्य काफी कुछ था और उन्होंने एक एक कर सब देखा। कप्तान सेवियर के अतिरिक्त अन्य सभी लोगों ने वहां पर पहाड़ी ट्रेन पर सवार होकर माउंट रिगी के शिखर तक आरोहण किया। इस भ्रमण में भी एक तरह की नवीनता थी और पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर जगत के एक अतुलनीय हिम दृश्यावली ने उनके नयन मन को मुग्ध कर लिया। लुसन में उन लोगों ने अन्य स्थानों के अतिरिक्त स्विस गार्डों का कब्रिस्तान और उसके ऊपर के पर्वत पर खुदी हुई निद्रित सिंह की एक सुंदर मूर्ति का अवलोकन किया। यहाँ से उन्होंने रीड्स नदी के ऊपर स्थित चित्रों से शोभित दो सेतुओं को पार किया। इनमें से एक पर मृत्यु का तांडव नृत्य अंकित था और दूसरा सेतु स्विट्जरलैंड के इतिहास की घटनाओं से अलंकृत काष्ठ फलकों द्वारा सुशोभित था।
0: उसके बाद उन्होंने लुसर्न का अजायब घर तथा इतिहास में विख्यात धर्म मंदिर का सुप्रसिद्ध वाइस यूमेना मानव कंठ नामक ऑर्गन देखा। इस वाद्य यंत्र से ठीक मानवीय कंठ के समान ध्वनि निकलते देखकर स्वामी जी बड़े आनंदित हुए। इसके बाद सबने स्टीमर पर चढ़कर लुसर्न झील की सैर की। लुसर्न में विलियम टेल के नाम पर बने एक छोटे से मंदिर को देखकर उस देश प्रेमी के जीवन की कितनी ही घटनाएं स्वामी जी के मन से होकर गुजर गईं। झील के किनारे एक दिन मिर्ची बिकते देख स्वामी जी ने उनमें से कुछ खरीद कर एक मुंह में डाल लिया। दुकानदार इस पर अवाक हो गया।
2: क्या तुम्हारे पास इससे अधिक तीखा मिर्च नहीं है? वाह, मजा आ गया। अरे तुम लोग ताक क्यों रहे हो, खाकर देखो ना, मजा आएगा।
1: इसके बाद वे लोग राइन नदी का जलप्रपात देखने शफ हसैन गए।
0: वहां से वे लोग जर्मनी के एक वृहद विश्वविद्यालय हाइडेलबर्ग पहुंचे और वहां दो दिन निवास किया। विश्वविद्यालय का परिदर्शन कर और जर्मन लोगों में विद्यादान का विपुल आयोजन और विद्यार्थियों में अदम्य उत्साह देखकर स्वामी जी विस्मित हो गए। नगर के किनारे एक ऊंचे स्थान पर स्थित किला भी उन लोगों ने देखा। वहां से वे लोग कोबलेंज गए और वहां एक रात बिताने के बाद स्टीमर पर सवार हुए। स्टीमर 60 मील दूर कोलोन नगर पहुंचा। उक्त शहर में 2-3 दिन रहकर इन लोगों ने वहां का वृहद प्रार्थना गृह, वहां का कोषागार तथा सन्यासियों द्वारा हस्त निर्मित खूबसूरत जड़ाऊ सलीब एवं अन्य दर्शनीय वस्तुओं को देखा। एक दिन स्वामी जी प्रार्थना गृह में प्रार्थना के समय भी उपस्थित हुए। सेवियर दंपत्ति ने सोचा था कि कोलोन से वे सीधे कील जाएंगे, परंतु स्वामी जी की बर्लिन देखने की इच्छा है जानकर वे लोग उस ओर अग्रसर हुए।
1: स्वामी जी जर्मनी में जाकर जितना ही वहाँ की संस्कृति, कर्मोद्यम, समृद्धि तथा आधुनिक रीतियों से नगर निर्माण का परीक्षण करने लगे, उतने ही विस्मित होकर वे जर्मन लोगों की प्रशंसा करने लगे। आखिरकार वे बर्लिन पहुँचे। उस महानगर की चौड़ी सड़कों, मनोहर उद्यानों तथा सुंदर भवनों ने उन्हें पेरिस की याद दिला दी और उनका चिंतनशील मन फ्रांसीसी और जर्मन सभ्यताओं के तुलनात्मक चिंतन में लग गया। वे समझ गए कि दोनों देशों का अपना अपना वैशिष्ट्य है। जर्मन वीरों की जाति है और लौकिक तथा बौद्धिक प्रगति के मार्ग की समस्त बाधाओं को पार करने के लिए कटिबद्ध है। जर्मनी की सुप्रशिक्षित सेना को देखकर उन्होंने कहा था, क्या ही सुंदर वीरता की प्रतिमूर्ति है। इसके बाद सेवियर ने जब उन्हें ड्रेसडेन ले जाना चाहा, तो स्वामी जी बोले,
2: प्रोफेसर डायसन हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए।
0: अतः वे लोग वहां से सीधे बाल्टिक सागर के तट पर स्थित कील नगर की ओर चल पड़े और 8 सितंबर को वहां पहुंचकर एक होटल में आश्रय लिया। प्राध्यापक के साथ स्वामी जी के मिलने के विषय में श्रीमती सेवियर की स्मृति कथा से जो बातें ज्ञात होती हैं, वे इस प्रकार हैं।
3: बाल्टिक सागर तट के मनोरम पृष्ठभूमि में स्थित मनोरम कील नगर की ओर तथा वहां के विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर पॉल डायसन के सानिध्य में मेरा जो एक आनंदमय दिन बीता था, उसकी स्मृति के साथ अनेक मधुर घटनाओं के जुड़े होने की वजह से वो मेरे मानस पटल पर अत्यंत स्पष्ट रूप से अंकित है। यूरोपीय संस्कृतविद पंडितों में डायसन का स्थान सर्वोपरि है और उनकी दर्शन पर पकड़ भी अनुपम है। स्वामी जी के होटल में पहुंचने की सूचना पाते ही प्राध्यापक ने एक पत्र लिखकर उन्हें अगले दिन अपने साथ जलपान के लिए आमंत्रित किया और इसके साथ ही सौजन्यतापूर्वक मुझे तथा मेरे पति को भी आमंत्रित किया। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे हम उनके घर जा पहुंचे और हमें उनके पुस्तकालय में ले जाया गया। वहां पर अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर डायसन हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने सादर हमारा स्वागत किया। डायसन स्वयं जिन अनुवाद कार्यों में लगे थे, स्वामी जी ने उनमें रुचि ली तथा उनके बीच अनेक मुश्किल शब्दों के अर्थ एवं तात्पर्य के बारे में चर्चा होने लगी। स्वामी जी ने कहा कि परिभाषा की स्पष्टता ही मुख्य चीज है और भाषा का माधुर्य गौण है। स्वामी जी जिस प्रकार दृढ़ विश्वास के साथ शब्दों के तात्पर्य समझाने लगे और सूक्ष्म तत्वों का परिचय देने लगे, उसके फलस्वरूप जर्मन विद्वान को आखिरकार उन्हीं के मत को मानना पड़ा। भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा चल रही थी कि इसी बीच प्रोफेसर महोदय किसी दूसरे काम से उठकर चले गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने लौटकर देखा कि स्वामी जी कविता की एक पुस्तक के पन्ने पलट रहे हैं। इस कार्य में वे इतने तन्मय थे कि प्रोफेसर के आने की आवाज तक उनके कानों में न पहुंची। पुस्तक समाप्त कर स्वामी जी अध्यापक की ओर देखते ही समझ गए कि वे काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा,
2: पुस्तक पढ़ रहा था, शायद आप बहुत देर से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्षमा कीजिएगा।
4: इतने कम समय में आपने पूरी किताब पढ़ ली?
2: जी हाँ, और याद भी कर लिया है।
0: स्वामी जी ने उस पुस्तक का कुछ अंश और कविताएं ज्यों की त्यों सुना दी। विस्मय से अभिभूत होकर प्रोफेसर बोले,
4: इससे पहले आपने अवश्य इस पुस्तक को पढ़ा होगा, वरना केवल एक सरसरी निगाह से ही 400 पृष्ठ की किसी पुस्तक को आधे घंटे में याद कर लेना दुसाध्य क्या असंभव है?
2: संयत मना योगी के लिए ये असंभव नहीं है। मेरा यह विश्वास है, ये शक्ति सभी प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं मैं काम कांचन त्यागी सन्यासी हूं, आजन्म अखंड ब्रह्मचर्य के परिणाम में ये शक्ति स्वयं ही मुझ में आ गई है। पाश्चात्य देश में अनेक लोग इस पर विश्वास नहीं भी कर सकते हैं, परंतु भारत में ब्रह्मचर्य के बल पर इस प्रकार की स्मृति शक्ति के अधिकारी आज कम होने पर भी खत्म नहीं हुए हैं।
1: प्रोफेसर साहब निरुत्तर हो गए और उसी दिन से वे स्वामी जी के

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप ये धारावाहिक सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, समय हो रहा है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन उसके पहले आज दिन में और शाम को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको परिचित करवा दें। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी के। उसके बाद सुनिएगा कार्यक्रम भारत भारती। 2 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक। 2:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम अतुल्य भारत। सांधिकालीन प्रसारण सभा में सबसे पहले आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि, उसके बाद भक्ति संगीत का प्रसारण होगा। शाम 6 बजे वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा होगी मंगल पांडे की, इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में शाम 6:30 आप सुनेंगे रानी दुर्गावती के युद्ध की विजय गाथा। योग संवाद कार्यक्रम में शाम 7 बजे हम बात करेंगे श्री राम की वैराग्य दशा पर। भारत विभूति कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा शाम 7:30। आज इसमें चर्चा होगी योगाचार्य BKS अयंगर की। रात 8:30 आजाद हिंद कार्यक्रम होगा। सुरसागर कार्यक्रम में भक्ति गायन सुनिएगा रात 9 बजे कलाकार राम भावसार। और रात 9:30 सुनिएगा धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद की 47वीं कड़ी। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज दिन भर के कार्यक्रमों का। अब आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा से अनुमति दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। तराने आजादी के ये कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आइए शुरू करें सिलसिला देशभक्ति गीतों का।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने आजादी के। इस प्रसारण सभा में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता सिंह। अगली प्रस्तुति के साथ हाजिर होती हूँ, बस एक छोटा सा अंतराल। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: देवे। नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज ससुराल गेंदा फूल और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम भारत भारती।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती

अपनी आपने जो सुना वो भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी ने पूरा महाराष्ट्र भर वो प्रचलित किया हुआ ये गाना है। अभी मैं गाऊंगा अकार उकार मकार, ये जो मेरा ही कंपोजिशन है, मैंने कुछ कंपोजिशन बनाने के लिए प्रयत्न किया है, मैं ये गाऊंगा।

ये लक्ष्मी बारम्मा जो गाना है ये वास्तव में लक्ष्मी का वर्णन है, और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजन हम सब करते हैं और शुक्रवार लक्ष्मी के दिन माना जाता है। तो वो कैसे आती है घर, मतलब घर लक्ष्मी को अगर स्थापन करने के लिए उनको कैसे बुलाना है, ये सब उस कन्नड़ में वर्णित है, और इसको गाए हुए है पंडित भीमसेन जोशी जी ने। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा।

0: श्रोताओं, भारत भारती कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जयतीर्थ मेवुंडी का अभंग गायन। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। भारत भारती के किसी अगले अंक में संगीत का कोई नया रंग लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिएगा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती।

आप, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को नाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम संस्कृति संवाद के अंतर्गत भारत के दर्शनीय स्थल। श्रोताओं, इस बार भारत के दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर हम आपको उस शहर में ले चलते हैं जो 1912 तक भारत की राजधानी हुआ करता था।
2: हाँ श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कौन सा होगा वो शहर।
1: चलिए एक और क्लू आपको देते हैं। इस शहर में विवेकानंद जी के गुरु रहा करते थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे।
2: अरे क्यों नहीं समझेंगे भाई, इतना आसान क्लू जो आपने दे दिया है।
1: जी हाँ, अंग्रेजों का कलकत्ता और आज का कोलकाता है ये शहर।
2: हाँ श्रोताओं, एक कहावत कलकत्ता के नाम से मैं आपको सुनाता हूँ। किसी ने पूछा कि अगर किसी कलकत्तियन के पास ढेर सारा फालतू वक्त हो तो वो क्या करता है, तो उसे जवाब मिला, भाई कहीं उसे आने जाने के लिए बस या ट्राम पकड़ लेना चाहिए। अब सवाल करने वाले को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उसने फिर पूछा, चलो अगर मान लो उसके पास वक्त बहुत कम है, उसे बहुत जल्दी पहुंचना है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए, तो फिर उसे जवाब मिला, फिर तो उसे पैदल ही निकल जाना चाहिए।
1: श्रोताओं, कलकत्ता वालों ने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ये जोक खुद ही गढ़ा है।
2: जी हाँ,
1: क्योंकि उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रफ्तार इतनी धीमी है कि अगर किसी को कहीं जल्दी पहुंचना हो तो वे पैदल ही जाना पसंद करते हैं।
2: हाँ, कोलकाता की बात चली है तो सबसे पहला सवाल जहन में यह उठता है कि आखिर यह नाम पड़ा तो पड़ा कैसे। श्रोताओं, इतना तो आप जानते हैं कि यह शहर अंग्रेजों का बसाया हुआ था और इसे कलकत्ता कहा करते थे वे लोग। वजह यह थी कि उन्होंने जिन तीन गांवों को मिलाकर के शहर बनाया था उनमें से एक नाम था कलकत्ता, बाकी के दो गांव थे सुतानाटी और गोविंदपुर।
1: लेकिन ये कलकत्ता नाम भी असली नहीं है। असली नाम है कालिक्षेत्र, जिसका मतलब है देवी काली का क्षेत्र। साल 1698 की बात है। उस समय ये तीनों गांव मुगल साम्राज्य में हुआ करते थे और इनकी जागीरदारी एक चौधरी परिवार के पास हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत में अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई थी और उसे बंगाल में किसी स्थायी ठिकाने की तलाश थी। तो किसी तरह हाथ पांव मारकर उसने इन गांवों की जागीरदारी अपने नाम ट्रांसफर करवा ली।
2: बिल्कुल ठीक, और कंपनी को यह जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने भी सोच समझ करके इसको बसाया और यह काम किया था एक समझदार अफसर जॉब चारनाक ने। उसने देखा कि इन तीनों गांवों के पश्चिम में हुगली नदी है, उत्तर में एक सकरी खाड़ी है और पूर्व में नमकीन झीलें हैं। हुगली नदी इस इलाके को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, तो यह जगह उनके लिए बहुत ही महफूज थी।
1: इस तरह यहाँ अपनी बस्ती बसाने का फायदा ये था कि ये कुदरती तौर पर महफूज थी। इसके अलावा कोई आफत आने पर एक तो हुगली नदी बाढ़ का काम करती, दूसरे इस नदी के जरिए समुद्र की ओर भागा जा सकता था जहाँ अंग्रेजी नेवी की अजेय ताकत इनकी रक्षा करती। चारनाक हालांकि 1693 में ही गुजर चुका था, लेकिन उसकी सलाह को कंपनी ने गांठ बांध लिया था और कोशिश करके 1698 में इस जगह की जागीरदारी प्राप्त कर ही ली।
2: बिल्कुल ठीक, और जैसा कि अंग्रेज हर जगह करते थे उन्होंने यहाँ भी वही किया। उन्होंने फौरन इस जगह की किलेबंदी शुरू कर दी और 1712 में यहाँ फोर्ट विलियम नामक एक मजबूत किला तैयार कर लिया और 1772 में कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी की राजधानी बना और इसके बाद पूरे भारत के ब्रिटिश एम्पायर की राजधानी। लेकिन 1912 में यह जगह दिल्ली को मिल गई और तब से दिल्ली ही भारत की राजधानी हो गई।
1: अब कोलकाता के संबंध में कुछ दिलचस्प तथ्य और हम आपको बताते हैं।
2: बताइए।
1: अंग्रेजों के जमाने में कलकत्ता इतना महत्वपूर्ण हुआ करता था कि वे इसे लंदन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा शहर कहा करते थे। आसान शब्दों में कहें तो उनकी नजर में ब्रिटिश एम्पायर के लिए लंदन के बाद सबसे अहम शहर कलकत्ता ही था।
2: श्रोताओं, आप में से बहुत से लोग ये भी जानते होंगे कि कलकत्ता को सिटी ऑफ पैलेस भी कहा जाता है, मगर लाख टके का सवाल तो यह है कि क्यों। वह यूं कि जब अंग्रेज लोग कलकत्ता में बसना शुरू किए तो यहाँ इमारतों के निर्माण के लिए गॉथिक, ब्रॉक, रोमन, इस्लामिक और ओरिएंटल डिजाइनों के एक ही तरह के पैटर्न का इस्तेमाल हुआ।
1: अंग्रेज अफसर खास करके पश्चिमी डिजाइनों के बड़े बड़े महलनुमा बंगले बनवाया करते थे। यहाँ तक कि यहाँ के बंगाली बाबू भी इस मामले में पीछे न रहे। जब बंगाल में जमींदारी प्रणाली आई तो जमींदारों के पास अनाप शनाप पैसा आया। इस पैसे से उन्होंने कोलकाता में शानदार हवेलियां बनवाई जिनमें हर तरह के आराम और शान और शौकत की चीजें होती थी।
2: श्रोताओं, प्रसंग बस आपको यह भी बता दें कि आज इनमें से ज्यादातर हवेलियां खंडहरों में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से कुछ का संरक्षण किया जा रहा है और कुछ को हेरिटेज स्ट्रक्चर घोषित कर दिया गया है।
1: और इस तरह अंग्रेज जेंटलमैन और बंगाली भद्र पुरुषों के बल पर देखते ही देखते कोलकाता अनगिनत महलनुमा हवेलियों से भर गया और ये शहर सिटी ऑफ पैलेसेस कहलाने लगा।
2: फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लेपियर ने कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय कहा है। कोलकाता सही मायने में जानते थे कि जिंदगी का मजा कैसे उठाया जाए, चाहे दुर्गा पूजा हो, न्यू ईयर हो या अन्य कोई त्योहार हो। कोलकातियन इसे पूरे जोश और खरोश के साथ मनाते थे। पैसे की चाहे कितनी कमी हो, लेकिन जीवन का आनंद उठाने में कोलकाता वाले कभी भी पीछे नहीं रहते थे।
1: एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इडन गार्डन कोलकाता में ही स्थित है। इसमें 100,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। ये भारत का ऐसा पहला स्टेडियम है जिसमें फ्लड लाइट्स लगाई गई और डे एंड नाइट मैचेस देखने की फैसिलिटी उत्पन्न की गई।
2: श्रोताओं, ईडन गार्डन की तरह ही कलकत्ता का साल्ट लेक स्टेडियम भी पूरी दुनिया में मशहूर है। बंगाली में इसे युवा भारती क्रीड़ा आंगन कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। यह मल्टीपर्पज स्टेडियम आज फुटबॉल मैचों व एथलेटिक इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। श्रोताओं, हम आपको एक बात और बता दें कि इसमें एक साथ 120,000 से भी ज्यादा दर्शकों के बैठने की क्षमता है। सोचिए जरा,
1: भारत की पहली मेट्रो ट्रेन दिल्ली या मुंबई में नहीं बल्कि 1984 में कोलकाता में ही शुरू हुई और ये भारत की पहली अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस भी थी। कोलकाता शहर की 3 निशानियां और भी हैं, विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज और ट्राम।
2: हाँ श्रोता, कोलकाता इस मायने में भी भारत के सभी शहरों से अलग है कि यह देश का पहला एकमात्र शहर है जहां सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह समंदर पर नहीं है बल्कि किसी नदी पर स्थित है। जी हाँ, कलकत्ता सी पोर्ट हुगली नदी पर स्थित है। इस पोर्ट की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही की गई थी।
1: और हैंड पुल्ड रिक्शा, जी हाँ, इसे भी शायद सबसे पहले कोलकाता में ही इस्तेमाल किया गया। रिक्शा शब्द जापानी भाषा के जिन रिक्शा शब्द से आया है जिसका मतलब होता है इंसान के द्वारा खींचा जाने वाला रिक्शा। दुनिया को रिक्शे का चलन इसी देश ने दिया है। जब 1868 में मेइजी काल के जापान में ये शुरू हुआ तो इसे उस जमाने की तेज सवारी माना गया क्योंकि इसने पालकियों की जगह ले ली थी।
2: खैर, रिक्शे तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, पुल रिक्शा। इनमें से पुल रिक्शा ही जापानी जिंग रिक्शा है। इसे आप रिक्शा न कहकर के एक टांगा कह सकते हैं जिसमें घोड़े की जगह इंसान जुटता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि टांगे में घोड़े को हाँकने के लिए एक कोचवान होता है जबकि पुल रिक्शा में इंसान ही घोड़ा और इंसान ही कोचवान होता है।
1: आज से 200 साल पहले चीन के जरिए कलकत्ता आए इस पुल रिक्शे ने हर वक्त कलकत्ता को ऑन व्हील्स ही रखा, चाहे बरसात की वजह से गलियों में पानी भरा हो, चाहे भारत बंद हो या चाहे जाम लगा हो। दौड़ती हुई ये पालकियां अपने लिए रास्ता निकाल ही लेती हैं। इसीलिए कलकत्ता में कहते हैं कि मरीज को अगर अस्पताल ले जाना हो तो इससे भरोसेमंद कोई साधन नहीं।
2: फिल्म निर्माता भी अपनी फिल्म में अगर कलकत्ता दिखाना चाहते हैं तो वे इंसानी घोड़े वाला यह तांगा दिखाना नहीं भूलते, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिकल फिल्म हो, चाहे 2 बीघा जमीन हो या नए जमाने की परिणीता हो। यह साबित करने के लिए कि यह सीन असली कलकत्ते में फिल्माई गई है, पुल रिक्शा को कैनवास पर उभारना ही पड़ता है।
1: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं कोलकाता शहर की एक और निशानी यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल की। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का एक बहुत ही खास टूरिस्ट स्पॉट है।
2: जी हाँ,
1: जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया है। ये साल 1902 की बात है जब क्वीन विक्टोरिया का निधन हुआ। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय हुआ करते थे और कलकत्ता भारत की राजधानी। उन्होंने ही सुझाव रखा कि महारानी की याद में कोलकाता में एक म्यूजियम बनाया जाए, इसलिए इसे लॉर्ड कर्जन का ब्रेन चाइल्ड भी कहा जाता है।
2: श्रोता, विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने में मुगलिया व ब्रिटिश आर्किटेक्चर का मिला जुला इस्तेमाल किया गया है। इसके भीतर के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में सफेद मकराना संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। दरअसल इसे बनाने के लिए इसके आर्किटेक्ट विलियम इमर्सन ने ताजमहल का मॉडल सामने रखा था। 1921 में इसका उद्घाटन हुआ और उस जमाने में इसके निर्माण की लागत आई थी 1,05,00,000 रुपए।
1: मित्रों, आपको बता दें कि इस इमारत को बनाने में अंग्रेज सरकार ने फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। सारा का सारा पैसा या तो भारत के देशी राजाओं ने दिया या कुछ अमीर लोगों ने, जो इसी बहाने अंग्रेज सरकार का फेवर पाना चाहते थे।
2: विक्टोरिया मेमोरियल में आप ब्रिटिश राज घराने के ढेरों यादगार पेंटिंग्स व मुगल स्टाइल के पेंटिंग्स देख सकते हैं। बंगाल के नवाब का सिंहासन भी इसका एक खास आकर्षण है। इसके खूबसूरत बगीचे में हर शाम लेजर शो, ऑडियो विजुअल शो का आयोजन होता है, जो यहाँ आने वालों के लिए एक यादगार इवेंट होता है। अगर आप विक्टोरिया में जाएं, तो इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत, जिसमें आज हम आपको सैर करा रहे हैं कोलकाता शहर की। तो चलिए अब चलते हैं कोलकाता शहर के न्यू मार्केट में। भोपाल के न्यू मार्केट की ही तरह कोलकाता में भी एक न्यू मार्केट है। लेकिन बस इसका नाम ही केवल न्यू है, वैसे ये काफी पुराना है। 1874 में शुरू हुआ ये मार्केट उस समय हॉग मार्केट कहलाता था। ये नाम उस वक्त के कलकत्ता कमिश्नर स्टुअर्ट हॉग के नाम पर था। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर न्यू मार्केट रख दिया गया।
2: इस मार्केट के बारे में कहा जाता है कि यह कोलकाता का शॉपिंग इंस्टीट्यूशन है और जिस किसी चीज के बारे में भी आप सोच सकते हैं वह आपको यहाँ मिल जाएगी। कीमतें कम होती हैं और क्वालिटी हाई, लेकिन शर्त यह है कि आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। श्रोताओं, अगर आप नए हैं तो आप नहीं जानते कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, तो फिक्र न कीजिए, न्यू मार्केट घूमने के लिए गाइड भी उपलब्ध है।
1: श्रोताओं, कोलकाता शहर काली मंदिर के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। देवी काली शक्ति के 108 रूपों में से एक है, जो अपने भक्तों को हर तरह की आपदा से बचाती हैं। आपको तो याद होगा कि कोलकाता का नाम वस्तुतः कालीकता से आया है और कारण यह है कि ये क्षेत्र माँ काली का एक खास स्थान है और यहाँ आज भी आपको ढेरों काली मंदिर मिलेंगे जैसे कि अयोध्या में ढेरों राम मंदिर मिलते हैं।
2: लेकिन इनमें से हम आपको दो खास मंदिरों की जानकारी देना चाहेंगे, और वो है दक्षिणेश्वर का काली मंदिर और काली घाट का काली मंदिर। लोग भ्रमवश कभी कभी इन दोनों मंदिरों को एक ही समझ बैठते हैं, दोनों की ही भारी मान्यता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि दक्षिणेश्वर का काली मंदिर जहां कलकत्ता के उत्तर में स्थित है, वहीं काली घाट का काली मंदिर दक्षिण में स्थित है।
1: श्रोताओं, माँ काली का एक रूप है भवतरिणी। इस रूप में वे कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर में विराजमान है। उल्लेख मिलता है कि 1847 के आसपास कोलकाता में एक रानी रोशमोई हुआ करती थी, जो माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी।
2: हाँ, उन्होंने निश्चय किया कि माँ काली के दर्शन करने के लिए वे वाराणसी जाएंगी। लेकिन उसी रात माँ काली उनके स्वप्न में आई और उन्होंने कहा कि मेरे दर्शन के लिए वाराणसी जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम गंगा के तट पर एक मंदिर बनवा करके उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित कर दो, मैं स्वयं उस मंदिर में विराजमान हो जाऊंगी।
1: इस पर रानी ने एक अंग्रेज जॉन हेस्ट से 20 एकड़ का शाहबान बगीचा खरीदा और उस पर यह मंदिर बनवाया। ये बगीचा एक कछुए के आकार का था। कहा जाता है कि इस आकार की भूमि शक्ति पूजा के लिए बहुत ठीक थी। उस जमाने में 9 लाख रुपए खर्च करके रानी रोशमोई ने मंदिर बनवाया। 1855 में इसका निर्माण पूरा होने के बाद इसमें माँ काली की प्रतिमा स्थापित की गई।
2: श्रोताओं, इसके आगे की कहानी तो और भी दिलचस्प है। मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम जिस पुरोहित ने संपन्न कराया था, उसका नाम था राम कुमार चट्टोपाध्याय। जल्द ही इस मंदिर में उनके छोटे भाई, जिनका नाम गदाई था, आकर के शिफ्ट हो गए। आपको बता दें कि गदाई और कोई नहीं रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्हें विवेकानंद जैसे महान पुरुष ने उन्हें अपना गुरु बनाया था।
1: रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कहा जाता था कि माँ काली उन्हें साक्षात दर्शन देती थी, और देती भी क्यों ना, वे माँ में इतने तन्मय रहते थे कि वे अपनी पत्नी शारदा को भी माँ कहते थे और माँ के रूप में ही उनकी पूजा करते थे।
2: आखिरी समय में रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, जिससे उन्हें अपार कष्ट होता था। कई लोगों ने उनसे कहा कि आप तो माँ काली के भक्त हैं, अगर आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो यह बीमारी ठीक हो जाएगी। जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, नहीं, यह कर्म फल है, इसे तो भोगना ही अच्छा है। अगर बिना भोगे दुनिया से चले गए तो इसे भोगने के लिए मुझे फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा।
1: और अब चर्चा काली घाट के काली मंदिर की। ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। श्रोताओं, आपको याद दिला दे कि शक्तिपीठ वे स्थल हैं जहां देवी सती का कोई ना कोई अंग गिरा था। तो जिस जगह पर ये मंदिर स्थित है, वहां पर देवी के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था।
2: श्रोता, सुनने में आता है कि सैकड़ों साल पहले इस जगह पर जंगल हुआ करते थे। एक बार किसी भक्त ने यहाँ पर रोशनी की एक किरण देखी। जब उसने इसका स्रोत ढूंढने की कोशिश की तो पाया कि यह रोशनी पत्थर के अंगूठे से आ रही है। इस अंगूठे के पास ही एक स्वयंभू शिवलिंग भी था। इस पर भक्त ने उस स्थान पर उपासना आरंभ कर दी।
1: श्रोताओं, जहां दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के निर्माण काल के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है, वहीं काली घाट के मंदिर की प्राचीनता का सही अनुमान हम नहीं लगा सकते। यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मुद्राएं तक मिली हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना हो सकता है।
2: हाँ, कहते हैं कि ओरिजिनल काली मंदिर एक छोटी सी झोपड़ी मात्र थी, जिस पर आज से 500 साल पहले किसी राजा मानसिंह ने पक्का मंदिर बनवाया। लेकिन जिस रूप में यह मंदिर आज हमें मिलता है, उसका निर्माण तो सन 1809 में बरिशा के चौधरी परिवार ने करवाया था।
1: श्रोताओं, कोलकाता की दुर्गा पूजा तो आपने सुनी ही है कि कितनी भव्य और कितनी विशेष होती है। पूर्वी भारत में शक्ति की आराधना का चलन बहुत पुराना है, और दुर्गा जी तो शक्ति के 108 रूपों में से सबसे प्रबल है। वे एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सिंह की सवारी करती हैं, जिनकी आराधना करके राम जी ने रावण को मारा, जिनका स्मरण करके कृष्ण जी ने कंस का संहार किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिसकी स्तुति करते हैं। उनकी शान में बंगाली लोग अपना सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं।
2: बंगाली जन दुर्गा पूजा को अकाल बोधन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है शक्ति का असमय जागरण। कोलकाता में तो यह त्योहार इतने बड़े पैमाने पर इतने जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है कि देश विदेश के सैलानी भी इसे देखने के लिए यहाँ डेरा डाल देते हैं।
1: 10, 20, 50, 100 नहीं, कई हजार पंडाल यहाँ बनते हैं और भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि वो बेकाबू हो जाती है। ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाती है। कई बार तो पैदल चले बिना पंडाल तक पहुँचना संभव ही नहीं रहता।
2: श्रोताओं, वैसे तो दुर्गा पूजा की परंपरा राम ने शुरू की थी, परंतु आज जिस तड़क भड़क के साथ ये त्योहार मनाया जाता है ना, उसका आरंभ सन 1606 में तहरेपुर व नादिया के राजाओं ने शारदीय दुर्गोत्सव के नाम से शुरू किया था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है संस्कृति संवाद, जिसके अंतर्गत आज हम भारत के दर्शनीय स्थलों में आपको सैर करा रहे हैं कलकत्ता शहर की। और चलिए अब बात करते हैं कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज की। श्रोताओं, रुडयार्ड किपलिंग नाम तो आपने सुना ही होगा, वही जिन्होंने जंगल बुक लिखी थी, जिसमें मोगली नाम का एक मशहूर करैक्टर है, जिस पर किसी जमाने में एक हिंदी सीरियल बना और जिसका एक गाना बच्चे गुनगुनाया करते हैं कि जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है।
1: किपलिंग एक जगह लिखते हैं, अरे ये लंदन यहाँ कैसे, इसे देखने के लिए तो भारत आना बनता है।
2: किपलिंग ने ये लाइनें हावड़ा ब्रिज को देखकर ही लिखी थी। कोलकाता की यह पहचान है कि जिस तरह भोपाल का नाम आते ही भोपाल की झील आंखों में तैरने लगती है, उसी तरह कोलकाता का नाम आते ही हावड़ा ब्रिज भी आंखों के सामने तैरने लगता है। वैसे ये कोलकाता का मोनोग्राम भी है।
1: कोई कोलकाता जाए और ये ब्रिज न देखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बल्कि हम तो यही कहेंगे कि वो कोलकाता गया ही नहीं। यमलोक में जिस तरह यमराज होते हैं और क्षीर सागर में विष्णु, उसी तरह कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है। इस शहर के शरीर में धड़कते हुए दिल की तरह, किसी ने तो यहाँ तक लिखा है कि बाकी दुनिया को कोलकाता की पहचान बताने का काम ये ब्रिज ही करता है।
2: हाँ श्रोताओं, हावड़ा ब्रिज एक सस्पेंशन टाइप कैंटिलीवर ब्रिज है, जो हुगली नदी के दोनों किनारों पर जुड़वा नगरों कलकत्ता और हावड़ा को आपस में जोड़ता है। इसे बनाने का श्रेय अंग्रेजों को है। उन्होंने इंजीनियरिंग की बेहतरीन कारीगरी दिखाते हुए इसे 6 सालों की कठिन मेहनत के बाद 1942 में तैयार किया और 1943 में ट्रैफिक के लिए इसे खोल दिया गया।
1: उस वक्त ये न्यू हावड़ा ब्रिज कहलाता था, लेकिन आजादी के बाद 1965 में इसका नाम रविंद्र सेतु रख दिया गया। मगर हकीकत तो यह है कि जनता आज भी इस नामकरण को शायद नहीं मानती, वो तो आज भी इसे हावड़ा ब्रिज ही कहती है।
2: श्रोताओं, बाय द वे, सस्पेंशन ब्रिज उसे कहते हैं जिसमें ब्रिज का डेक सस्पेंशन केबल के नीचे लटका रहता है। ब्रिज के दोनों सिरों पर सस्पेंशन टावर होते हैं जिनमें स्टील केबल बंधी हुई होती है, और इस तरह के ब्रिज ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में दो ऊंची पहाड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, और सबसे पहले ये तिब्बत व भूटान में बनाए गए थे आज से लगभग पूरे 500 साल पहले।
1: दूसरी ओर कैंटिलीवर ब्रिज उसे कहते हैं जो कैंटिलीवर्स के सहारे हवा में लटकता रहता है बिना किसी नट बोल्ट के। मतलब ये हुआ कि हावड़ा ब्रिज लोहे की मजबूत रस्सियों के सहारे एक छोर से दूसरे छोर तक हवा में लटका हुआ है, न कोई नट बोल्ट और ना ही ब्रिज को टेक देने के लिए कोई पिलर वगैरह।
2: देखा जाए तो पैदल चलने वालों के लिए छोटे छोटे और हल्के फुल्के कैंटिलीवर ब्रिज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर हावड़ा ब्रिज हुगली नदी के दोनों किनारों को जोड़ती हुई 8 लेन वाली 705 मीटर लंबी संरचना, चौड़ाई 71 फीट और ऊंचाई 269 फीट, जिसे बनाने में 26,500 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ, जिस पर से रोज 1.5 लाख गाड़ियां, 4 लाख पैदल लोग गुजरते हैं। वास्तव में कैंटिलीवर नाम का यह एक अजूबा ही है।
1: ये दुनिया का सबसे बिजी कैंटिलीवर ब्रिज है और पूरी दुनिया में 10 सबसे लंबे कैंटिलीवर ब्रिजों में 6वें नंबर पर है। ये केवल हावड़ा और कोलकाता को ही नहीं जोड़ता, बल्कि पुराने कलकत्ता और नए कोलकाता को भी जोड़ता है। तभी तो शायद एक व्यक्ति ने अपनी डायरी में लिखा, सालों बाद कलकत्ता आना हुआ, सब कुछ बदल चुका था सिवाय हावड़ा ब्रिज के।
2: श्रोताओं, कलकत्ता की हम बात करें और वहां की ट्राम सर्विस की बात ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। श्रोताओं, ट्राम सर्विस भी कलकत्ता की एक अनोखी पहचान है। हालांकि किसी जमाने में यह मुंबई, दिल्ली, कानपुर जैसे कई शहरों में हुआ करती थी, लेकिन आज आप इसे और कहीं नहीं देख पा सकते। इसके अंतर्गत पटरियों पर दौड़ती हुई ट्रामें, कारें लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती हैं।
1: कोलकाता की ट्राम सर्विस को अगर आप ट्रेन जैसी दिखने वाली बस सर्विस कहें तो ज्यादा ठीक होगा। सड़कों पर ही बिछी लोहे की पटरियों पर ट्रामें दौड़ती रहती हैं। न कोई रेलवे फाटक और न ही कोई बाड़बंदी। आती हुई ट्राम के सामने से लोग आराम से ही निकलते रहते हैं।
2: श्रोताओं, ये बात है साल 1873 की, जब सियालदह और आर्मेनियन घाट स्ट्रीट के बीच लोहे की पटरियों पर घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली ट्राम सेवा की शुरुआत हुई थी। लेकिन पर्याप्त सवारियां ना मिलने की वजह से 8-10 महीने में ही यह सेवा बंद हो गई।
1: लेकिन सन 1900 में एक ब्रिटिश कंपनी ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड ने इसकी फिर से शुरुआत की। इस बार ट्राम को घोड़ों से नहीं खींचा जाता था, बल्कि ये बिजली से चलती थी। देखते ही देखते ये नई ट्राम सेवा कोलकाता की पहचान बन गई और आज इसे इस शहर की एक जिंदा विरासत माना जाता है।
2: श्रोताओं, कोलकाता को इस आधे घंटे के प्रोग्राम में समेटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए कोलकाता से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां, जैसे वहां का वस्त्र उद्योग, वहां का पहनावा, वहां का रहन सहन, वहां का खान पान और वहां का रसगोला, इन सब की चर्चा हम करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
1: और कंचन राजानी के।
2: श्रोताओं, अब हमें आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, देश का चैनल देश के लिए।
0: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।

0: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद प्रस्तुत करता है प्राचीन भारत में वैज्ञानिक चिंतन की गौरवशाली परंपरा की वानगी देने वाला अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।
2: इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे भारतीय ऋषि वैज्ञानिक से जिनकी सृष्टि और जीवन के किसी विशिष्ट अंग से जुड़ी अवधारणा ने एक महती वैज्ञानिक परिकल्पना को जन्म दिया।
1: वो परिकल्पना और सिद्धांत जिसका विकास पश्चिमी जगत 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद ही कर पाया। उदाहरणार्थ ज्यामिति का 29वां प्रमेय, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, वस्तुतः ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस का नहीं है। इसकी खोज शताब्दियों पूर्व ऋषि बोधायन कर चुके थे। ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा हमें बताएगी वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था, चाहे वो सृष्टि की उत्पत्ति या सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि नक्षत्रों की गतियों का सटीक हिसाब हो या सूर्य चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणियों का अथवा कैलेंडर का निर्माण, पदार्थों की संरचना की बात हो अथवा पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की चर्चा।
2: दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ग्रहों नक्षत्रों ज्योतिष गणित से लेकर वनस्पति चिकित्सा शल्य औषधि रसायन आदि विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान की सुव्यवस्थित और सुदृढ़ प्रणाली को जन्म दिया।
1: ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा देश की नई पीढ़ी को रूबरू कराएगी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में वेदकालीन भारत की अद्वितीय और गौरवशाली उपलब्धियों से, ताकि हमारे युवा साथी हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित हो सकें, उस पर गर्व कर सकें और प्राचीन भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की खोज के लिए प्रेरित हो सके।
3: हाय, गुड मॉर्निंग।
4: गुड मॉर्निंग।
3: बढ़िया, तुम कैसी हो?
5: बढ़िया बढ़िया।
3: अरे, वो कल वाला असाइनमेंट हो गया तुम्हारा?
6: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूरा कंप्लीट है मेरा तो। तुम्हारा
3: तो मुझे अभी दे देना थोड़ी देर के लिए, मैं कंप्लीट कर
4: लूंगी। लेकिन फोटोकॉपी करा के लौटा देना। हाँ, लिखने मत बैठ जाना, सारा लिखने बैठ जाती हो बस फिर कॉपी लौटाने का नाम नहीं लेती।
3: सर आके पूछेंगे तो मुझे देना नहीं पड़ेगा?
5: कुछ बहाना बना
3: लेंगे। जैसे तुम हमेशा बहाने बनाती हो।
4: बहाना नहीं मिले तो मुझसे पूछ लेना। सर आ गए,
3: सर आ गए।
4: गुड मॉर्निंग सर।
6: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठ जाएं अपनी अपनी जगह।
3: मैं आज आगे वाली सीट पर बैठूंगी, तुम पीछे जाके बैठो।
4: रोज रोज
3: चलो, ठीक है,
4: आज हमारी बारी है।
3: नहीं,
6: आज शांति बना रखें।
3: अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ बैठो।
5: जी सर, जी सर, जी सर।
6: और आज एब्सेंट कौन है?
4: सर मुरली एब्सेंट है सर आज।
6: अच्छा, मुरली, वो मुरलीधर शर्मा
4: जी,
6: उसे क्या हुआ?
5: सर उसे तेज बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने मलेरिया बताया है।
6: हाँ बच्चों, आजकल मलेरिया काफी फैल रहा है, बचाव के लिए एहतियात बरतना काफी जरूरी है। एक बात बच्चों ध्यान रखना चाहिए।
3: वो क्या सर?
6: बच्चों, जब आप लोग रात को सोते हो तो मच्छरदानी लगाकर सोएं।
5: हाँ सर।
4: लेकिन सर हवा नहीं लगती मच्छरदानी लगाने
5: से? बहुत गर्मी लगती है।
6: भाई पंखा चलाएं, कूलर चलाएं और एक बात और ध्यान रखें।
7: वो क्या सर?
6: घर में आसपास गड्ढों में पानी इकट्ठा ना होने दें।
3: हाँ सर, पता है ये बात तो मेरी मम्मी भी बोलती है।
6: जी मानिए मम्मी की बात, और DDT का छिड़काव भी करवाएं।
3: DDT?
6: हाँ बच्चों, एक दवाई होती है जो जमा पानी में मच्छर और इनके जो लार्वा होते हैं उनको पनपने नहीं देती है।
7: ओके सर, ओके।
6: और एक बात और ध्यान रखिए, जब तेज बुखार आए तो सीधे डॉक्टर को दिखाएं, खून की जांच करवाएं।
3: देखा सर ने कितना सही बोला।
5: सर उसकी चाचा ने उसे गोली दे दी कुनैन की।
6: देखो बच्चों, कुनैन की गोली हो या कोई और दवा, बिना डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं लेना चाहिए। अच्छा बच्चों, क्या तुम्हें पता है
5: क्या सर?
6: कि महर्षि चरक सबसे पहले आयुर्वेदी चिकित्सक थे।
3: तुम्हें पता है क्या?
7: नहीं,
4: चिकित्सक यानी डॉक्टर। हाँ, सबसे पहले डॉक्टर।
6: हाँ,
4: नहीं पता हम लोग।
6: और बच्चों, सबसे पहले भारत में ही प्रकृति पर आधारित चिक्सा विज्ञान का विकास हुआ।
3: क्या बात है।
6: और सुनो बच्चों, आज संसार में प्रचलित सभी चिकित्सा पद्धतियां आयुर्वेद की ही विभिन्न शाखाएं मानी जा सकती हैं।
7: तो क्या सर आयुर्वेद चार वेदों में से एक है?
6: नहीं नहीं, हाँ इसे ऋग्वेद का उपवेद माना जा सकता है।
7: जी सर।
6: जबकि भाव प्रकाश के अनुसार आयुर्वेद अथर्व वेद का उपवेद बताया गया है।
5: अच्छा।
6: बच्चों एक बात और, क्या तुम जानते हो कि आयुर्वेद को रचने वाले धन्वंतरी माने गए हैं?
4: हाँ, धन्वंतरी वही ना जिनकी धनतेरस पर पूजा होती है सर।
6: हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड सुनीता, वेरी गुड। पर उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में महर्षि चरक प्रमुख थे। बच्चों आयुर्वेदी चिकित्सा पद्धति पर उनका ग्रंथ चरक संहिता एक मानक ग्रंथ है जो आज भी चिकित्सकों का मार्गदर्शन करता है।
4: सर विश्व के पहले चिकित्सक माने जाने वाले महर्षि चरक के बारे में कुछ और भी बताइए ना।
3: हाँ सर, हमें भी सुनना है।
7: हाँ सर, कुछ बताइए ना सर। हाँ, सर
6: भाई तुम शांत तो हो जाओ, सब चुपचाप बैठेंगे।
4: जी, और जी, बिल्कुल
6: ठीक है, बैठो। अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना और जो इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट कर लेना।
4: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
6: तो सुनो बच्चों, आज से 20 शताब्दी पूर्व जन्मे महर्षि चरक को आचार्य भाव मिश्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ भाव प्रकाश में शेषनाग का अवतार बताया। कहते हैं उन्होंने एक ऋषि के घर पर जन्म लिया और निरंतर घूमते रहे। निरंतर घूमते रहकर वे लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण करते, जीव और सृष्टि का अध्ययन करते और औषधि का परीक्षण करके दुखी और रोगी व्यक्तियों की चिकित्सा करते। चलो बच्चों, तुम्हें 20 शताब्दी पहले महर्षि चरक की दुनिया में ले चलें।

0: आचार्य श्री, हम जो लगातार भ्रमण कर रहे हैं उससे एक लाभ तो ये है ही कि हम स्थान विशेष के संबंध में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
1: वत्स परापर, देशाटन के अनेक लाभ हैं, और सबसे बड़ा लाभ जो एक चिकित्सक को मिलता है वो ये कि किस स्थान पर कौन से रोग प्रमुख हैं, उनका कारण क्या है, स्थान विशेष पर उपलब्ध जल, वायु, वनस्पति के औषधीय गुण क्या है आदि।
0: जलवायु तो ठीक, पर आचार्य श्री, उनके औषधीय गुण?
1: वत्, इसे तुम इस तरह समझ सकते हो कि किस स्थान के जल से अमुक रोग का नाश होता है, कहाँ की मृतिका रोग हरती है, कहाँ की वायु रोग हारक है, कहाँ किस ऋतु में सूर्य का तेज कौन कौन सा रोग नष्ट करता है आदि आदि। फिर हमारे भ्रमण से स्थान स्थान पर रोगियों को उपचार मिल जाता है। आखिर एक चिकित्सक का धर्म क्या है?
0: क्या धर्म है आचार्य श्री?
1: जन कल्याण एवं पीड़ित मानवता की सेवा करना। एक चिकित्सक को समस्त आतुर व्याधि पीड़ितों को अपने पुत्र समान मानते हुए रोग मुक्त करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। गांठ बांध लो, मैत्री कारुण्य मार्तेषु शक्य प्रीति रूपेक्षणम प्रकृति स्थेषु भूतेषु वैद्य वृत्तिश चतुर्विधा। अर्थात पीड़ित मनुष्य के साथ मैत्री का भाव, साध्य व्याधि वालों के प्रति प्रीति का भाव, दयनीय मनुष्य के प्रति दया का भाव एवं असाध्य रोगों में उपेक्षा का भाव रखना चाहिए।
0: और चिकित्सकों की आजीविका आचार्य श्री?
1: आयुर्वेद का उपयोग धन संग्रह कभी नहीं है। चिकित्सा कोई व्यवसाय नहीं है, इसका उद्देश्य है सेवा द्वारा चतुर्वर्ग की, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति। तुम्हें स्मरण होगा जब समुद्र मंथन हुआ था तब हलाहल, गौ, ऐरावत, उच्च श्रेवा, अश्व, अप्सराएं, कौस्तुभ मणि, वारुणी, महाशंख, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी जी और कदली वृक्ष प्रकट हुए, और अंत में हाथ में अमृत पूर्ण स्वर्ण कलश लिए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए।
0: जी हाँ, हमें स्मरण है, धन्वंतरी को देव वैद्य का पद दिया गया और अमरावती उनका निवास बन गई। कालांतर में पृथ्वी पर मनुष्यों को रोग कातर देखकर महर्षियों ने देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि भूमंडल में रोग पीड़ित मानव की रक्षा और सेवा के लिए उन्हें अष्टांग आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान करें।
1: बिल्कुल ठीक, तो तुम चिकित्सक के सेवा हेतु को समझ ही गए होगे। फिर चिकित्सा कार्य में कहीं से धन, कहीं से मित्रता, कहीं से धर्म, कहीं से यश कीर्ति, कुछ ना कुछ चिकित्सक को प्राप्त होता ही है। अतः चिकित्सक को इन वृत्तियों का कठोरता से पालन करना चाहिए। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां मनुष्य निवास न करते हों और उन्हें रोग न होता हो। अतः चिकित्सक के जीवन निर्वाह की व्यवस्था सर्वत्र सुलभ हो जाती है। अब तक हमारी व्यवस्था हुई ही है ना? रोगी के लिए सर्वाधिक विश्वास पात्र चिकित्सक ही होता है।
0: हम समझ गए आचार्य श्री, सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक वो ही है जो अपने स्वार्थ की परवाह न करते हुए केवल मानव कल्याण की भावना से चिकित्सा कार्य करते हैं, जैसे कि आचार्य श्री आप।
1: अब ब्याज स्तुति छोड़िए और रात्रि विश्राम के उपयुक्त स्थान चिन्हित करें। संध्या हो चली है, फिर समीप के गांव जाकर अपने आगमन की सूचना भी देनी है।
0: जैसे आज्ञा आचार्य श्री। रात्रि विश्राम के लिए तो नदी किनारे का यह वट वृक्ष उपयुक्त रहेगा। यहाँ हवन पूजा के लिए सभी वस्तुएं भी सुगमता से उपलब्ध हो जाएंगी।
1: हाँ, यही स्थान उत्तम है। हम यहाँ विश्राम की तैयारी करते हैं, तुम गांव हो आओ। सुबह भोर में हम चिन्हित वृक्षों और लतिकाओं से औषधियां एकत्रित करने चलेंगे।
0: ठीक, हम गांव होकर आते हैं।

0: प्रिय अपरार्पण, ये तीन प्रार्थनाएं जो हम नित्य प्रति करते हैं उनका अपना विशिष्ट महत्व है
1: जी।
0: पहले शांति पाठ में पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना है, भाव ये है हमारे लिए आकाश

0: कि सब जीव मेरी ओर मित्रता से देखें, मैं सबकी ओर मित्रता से देखूं, सब एक दूसरे की ओर मित्रता से देखें, एक दूसरे का ध्यान रखें।
1: आचार्य श्री, यह इसलिए ना कि सारी सृष्टि की रचना वायु, तेज यानी अग्नि, जल और पृथ्वी पंच तत्वों से हुई है, सभी में उसी परमेश्वर का अंश है।
0: हाँ, इसीलिए इन पंच तत्वों को शुद्ध रखने का आग्रह है, क्योंकि हमारी औषधियां भी तो इन्हीं से बनी है। तीसरी प्रार्थना पृथ्वी की है, जो मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिस पर समुद्र, नदी, सरोवर, झरने हैं, भरपूर अनाज उत्पन्न होता है, जिसकी प्राण पोषक उपज पर सभी प्राणियों का समान अधिकार है। मानव जाति को पोषित करने वाली धरती मां को प्रणाम कर जीवन दायिनी औषधि और हमारे जीवन के लिए उपयुक्त पर्यावरण देने की प्रार्थना की गई है।
1: आचार्य श्री, हम वृक्षों और वनस्पतियों से कंद मूल, फल, पत्तियां आदि औषधियां लेने से पूर्व जो प्रार्थना करते हैं वो
0: वत्स, जब हम अपनी श्रद्धा और आदरांजलि समर्पित करते हुए वृक्ष और वनस्पति की प्रार्थना करते हैं तो उनमें दिव्य शक्तियों का अनुभव होता है, जो हमारी अंतश चेतना को प्रभावित करता है। किसी भी तत्व में दिव्यत्व का अनुभव हमारी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करता है। फिर पेड़ पौधों में तो देवी देवताओं का वास है ही।
1: जी,
0: भगवान धन्वंतरी ने कहा है, ये हमारी प्रज्ञा जगाने में सहायक होता है, जिसमें सत्य का साक्षात्कार होने लगता है। जैसे वृक्ष वनस्पति स्वयं प्रकट होकर अपने औषधीय गुणों के बारे में बता रहे हूं, ऐसा अनुभव मैंने स्वयं किया है।
1: कई दिनों से मन में घुमड़ रही जिज्ञासा के समाधान से निश्चिंत हुआ गुरुवर, अब आज्ञा दें क्या करना है।
0: अब हमें चिन्हित वृक्षों और लतिकाओं से औषधियों का संचय करना है। इससे पूर्व की दिन निकले हमें अपना कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए।
1: हम आवश्यक उपकरण और संग्रहण पात्र लिए लेते हैं और तत्काल निकल पड़ते हैं।
0: चलिए।
2: आचार्य श्री को मुनि भारद्वाज का प्रणाम।
0: अरे मुनि भारद्वाज, आप आ गए।
2: जी,
0: आयुष्मान यशस्वी हूं। लगता है चरक संहिता के संपादन का कार्य पूर्ण हो गया है।
2: उसमें मेरे करने जैसा कुछ था ही नहीं, केवल चीजों को यथास्थान व्यवस्थित कर दिया बस।
0: यही तो महत्वपूर्ण है। आप आ गए हैं तो अब हम लोगों ने जो औषधियां एकत्रित की हैं उनका संस्कार विधिवत पूर्ण हो जाएगा।
1: संस्कार? आखिर क्यों?
0: वत्स, जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में संस्कारों की उपयोगिता है, वैसे ही औषधियों के निर्माण में भी संस्कारों का महत्व है। संस्कारों ही गुणांतराधान मुच्यते, अर्थात जिस प्रक्रिया विशेष के द्वारा औषध द्रव्यों अथवा भेषज द्रव्यों का रूपांतरण, गुणों की वृद्धि तथा अन्य कतिपय विशिष्ट गुणों का उसमें समावेश किया जाता है, संस्कार कहलाती है।
2: प्रियवर, इनमें क्वाथ बनाना, पाक बनाना, अर्क निकालना, फुटपाक के द्वारा औषध को फूंकना, जारण करना, शोधन करना, अवलेह बनाना आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। आचार्य श्री ने अपनी संहिता में इन्हें 5 भागों में विभक्त किया है, जिसे उन्होंने पंचविद कषाय कल्पना कहा है।
0: आप लोग चर्चा करें, मैं तब तक लोगों से मिल लूं। लगता है इस क्षेत्र में काफी लोग व्याधियों से ग्रसित हैं।
2: जैसी आचार्य श्री की इच्छा। हाँ, तो किसी भी औद्भिद जांगम या पार्थिव द्रव्यों का अथवा उसके मूल, पत्र, पुष्प, फल, त्वक, दुग्ध आदि को उसी रूप में प्रयोग ना करके स्वरस, कल्क, चटनी, क्वाथ, हिम या फांट आदि कल्पना रूप में उसे सेवन योग बनाया जाता है।
1: यानी आयुर्वेद में संस्कार न कहकर कल्पना कहा जाता है।
2: जी हाँ।
1: मुनिश्री, आपने तो चरक संहिता का संपादन किया है, कृपया इसके बारे में हमें कुछ बताइए ना।
2: चरक संहिता आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण मानक ग्रंथ है। आयुर्वेद का अर्थ है आयु को बढ़ाने वाला ज्ञान या विद्या, अर्थात मनुष्य को स्वस्थ और निरोग रखने वाला विज्ञान। महर्षि चरक ने कहा है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल मुत्तमम, अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष तभी संभव है जब तक आरोग्य है,
1: यानी स्वस्थ शरीर से ही चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं।
2: बिल्कुल ठीक, स्वास्थ्य का रक्षण और रोग का निवारण ही आयुर्वेद का प्रयोजन है। आयुर्वेदी चिकित्सकों में चरक संहिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कहा गया है, निदाने माधवः श्रेष्ठः सूत्र स्थाने तु भागभटः, शारीरे सुश्रुतः श्रेष्ठ चरकस्तु चिकित्सते। अर्थात निदान में माधवाचार्य, नुस्खे में वाग्भट, शरीर रचना में सुश्रुत और चिकित्सा में चरक श्रेष्ठ हैं।
1: यह श्लोक तो आयुर्वेदाचार्यों के सम्मेलन में कहा गया था ना?
2: हाँ, तुम भी तो थे उस सम्मेलन में। महर्षि चरक ने चिकित्सा पद्धति को 8 भागों में बांटा है। काय चिकित्सा यानी शारीरिक उपचार, शल यानी शरीर की चीड़फाड़, शलाख यानी आँख नाक कान की चिकित्सा, भूत विद्या यानी अति इंद्रिय चिकित्सा, कौमार्य भृत्य यानी प्रसव तथा शिशु चिकित्सा, अगद अर्थात विष चिकित्सा, रसायन यानी जरा चिकित्सा तथा वाजीकरण यानी काम चिकित्सा।
1: कहते हैं अग्निवेश के सूत्रों को लेकर ही महर्षि चरक ने अपना अनुसंधान और प्रयोग यात्रा प्रारंभ की।
2: सच तो ये है, चरक आस्तिकवादी अर्थात सत्कार्यवादी हैं। उनका सिद्धांत कपिल मुनि के सांख्यवाद पर आधारित है। उनके सिद्धांत को ही विज्ञान का रूप देकर महर्षि चरक ने अपनी प्रयोगशाला में सिद्ध किया। इसीलिए चरक परम विज्ञानी चिकित्सा गुरु माने गए हैं।
1: मुनिश्री, चरक संहिता में संग्रहित प्रमुख विषयों की रूपरेखा क्या है?
2: चरक संहिता में चिकित्सा से संबंधित विविध विषय समेटे गए हैं। इनमें प्राणियों का वर्गीकरण, भ्रूण विकास और निर्माण, मानव शरीर की रचना, उसमें होने वाले विकार, हेतु विज्ञान, भोजन का महत्व, रोग अनुमान, औषधियाँ, उनका वर्गीकरण, संस्कार और उपयोग आदि आदि शामिल हैं।
1: आपने प्राणियों के वर्गीकरण की बात कही, आचार्य सुश्रुत ने भी तो सुश्रुत संहिता में प्राणियों का वर्गीकरण दिया है।
2: हाँ, ये सही है, पर महर्षि सुश्रुत ने वर्गीकरण का आधार उत्पत्ति विधि को बनाया, जबकि महर्षि चरक ने प्राणियों का वर्गीकरण उनके आवास के आधार पर किया है। उन्होंने इन्हें 8 वर्गों में बांटा। ये हैं, पहला प्रसह वर्ग यानी झपट कर छीन कर खाने वाले पशु पक्षी, जैसे शाकाहारी गाय गधा वानर आदि, तथा मांसाहारी चीता बाघ सिंह भालू सियार बिल्ली कौआ गिद्ध आदि। दूसरा है भूषय वर्ग यानी भूमि या बिलों में रहने वाले प्राणी, जैसे काकुली मृग सर्प मेंढक गोह नेवला आदि। तीसरा आनूप वर्ग यानी जल के पास रहने वाले प्राणी, जैसे जंगली सुअर गैंडा हाथी हिरण आदि। चौथा जलज वर्ग यानी जल में रहने वाले प्राणी, जैसे कछुआ मछली केकड़ा मगर व्हेल सांप शंख आदि। पांचवा जलचर वर्ग यानी पानी के समीप या पानी पर चलने वाले प्राणी, जैसे हंस बगुला कारंडव आदि। छठवा है जंगल वर्ग यानी वन में रहने वाले प्राणी, जैसे हिरण खरगोश बारहसिंगा आदि। सातवा विष्किर वर्ग यानी दाने चुगने वाले प्राणी, जैसे तीतर बटेर लावा आदि। आठवा और अंतिम वर्ग प्रतुद वर्ग यानी चोंच और पंजों से चोट मारकर भोजन करने वाले प्राणी।
1: जी, परंतु मुनिश्री, मानव की शरीर रचना के संबंध में चरक संहिता में क्या बताया गया है?
2: महर्षि चरक ने शरीर को पंच महाभूत क्षिति अर्थात भूमि जल पावक अग्नि गगन अर्थात आकाश और समीर अर्थात वायु से बना हुआ माना है। ये शरीर में रस, रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा व वीर के रूप में रहते हैं। उन्होंने शरीर में दांतों समेत हड्डियों की संख्या 360 बताई है। उनका मानना था हृदय शरीर का नियंत्रण केंद्र है। हृदय शरीर से 13 मुख्य धमनियों द्वारा जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों छोटी बड़ी धमनियां हैं जो सारे उत्तकों को भोजन का रस पहुंचाती हैं। यदि किसी मुख्य नली में अवरोध हो तो व्यक्ति बीमार या उसके किसी अंग में विकार आ जाता है।
1: मुनिश्री, महर्षि चरक अक्सर भोजन और औषधि को एक ही पर्याय में लेकर रोगियों को पथ्य का निर्देश देते हैं, सो क्यों?
2: प्रिय मुनि, मानव जीवन के लिए गर्भ प्रवेश के साथ ही भोजन और औषधि की आवश्यकता होती है। दोनों ही पंच महाभूत से बने हैं, अतः भोजन और औषधि दोनों एक ही पर्याय में लिए जाते हैं। मानव शरीर के लिए जो भोज्य पदार्थ है वही औषधि है, और जो औषधि है वही भोज्य है। अन्न प्राणी समूह के लिए प्राण स्वरूप है। वर्ण, सुस्वरता, जीवन, प्रतिभा, सुख, तुष्टि, पुष्टि, बल और मेधा सभी भोज्य वस्तु के आश्रित हैं। महर्षि चरक ने स्वल्पाहारी सजीवति कहकर स्वल्पाहार को दीर्घ जीवन का उपाय बताया है। उनका कहना था मिताहार से ही प्रकृति ठीक रहती है, पथ्य द्वारा ही रोग दूर किया जा सकता है।
1: और भोजन का कार्य, इस बारे में महर्षि क्या कहते हैं?
2: भोजन का काम शरीर में रस, रक्त, मांस, वसा, अस्थि मज्जा व वीर को बल प्रदान करना और पाचन क्रिया को ठीक रखना है। भोजन पहले रस में बदलता है और बाद में रक्त, मांस आदि में। पाचन क्रिया के दौरान जब भोजन आधा पच जाता है और आंत में पहुंचता है तो पेट में पित्त उत्पन्न होता है। अंत में जब भोजन शुष्क पदार्थ में जाता है तो वायु उत्पन्न होती है, और वायु पांच प्रकार से कार्य करती है। श्वास लेना और छोड़ना, बोलना, मल और मूत्र का निकास आदि।
1: और मुनिश्री, अस्वस्थता का आचार्य श्री क्या कारण बताते हैं?
2: प्रिय अपरापर, महर्षि चरक पहले चिकित्सक हैं जिसने पाचन, चयापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी है। उनके अनुसार शरीर के कार्यों से उसमें तीन दोष होते हैं, जैसे पित्त, कफ और वायु। ये दोष तब उत्पन्न होते हैं जब रक्त, मांस और मज्जा धातुएं खाए हुए भोजन से प्रतिक्रिया करती हैं। परंतु एक ही परिमाण में खाया गया भोजन अलग अलग जातियों में भिन्न प्रकार के दोष पैदा करता है। रोग तब उत्पन्न होता है जब मानव शरीर में उपस्थित तीनों दोष असंतुलित हो जाते हैं। इनमें फिर से संतुलन बनाने के लिए औषधि का प्रयोग करना पड़ता है।
1: जी मुनिश्री, चरक संहिता में शरीर में होने वाले विकारों, उनके कारण और उनसे उत्पन्न रोगों के निदान और चिकित्सा की भी तो जानकारी दी गई है।
2: जैसा कि हमने बताया, वायु, पित्त, कफ के बीच असंतुलन ही रोग का मुख्य कारण है। पित्त पाचन में सहायक होता है, शरीर को ऊर्जा देता है, दृष्टि पैनी करता है, रंग रूप सुधारता है, प्रसन्नता बढ़ाता है और बुद्धि का विकास करता है। इसी तरह कफ शरीर को तैलीयता प्रदान करता है, सामान्य भार, काम शक्ति, कार्य क्षमता, बल, सहिष्णुता आदि में वृद्धि करता है। इनका शरीर में असंतुलन ही रोग को जन्म देता है। इनका संतुलन पुनः प्राप्त करने के लिए वानस्पतिक औषधियां उपयोग में लाई जाती हैं।
1: हम जानते हैं महर्षि चरक की चिकित्सा पद्धति में वानस्पतिक औषधियों का ही उपयोग होता है।
2: महर्षि चरक ने शरीर में क्रिया के आधार पर विभिन्न औषधियों को 50 समूहों में बांटा है। ये औषधियां उपयुक्त संस्कार के बाद चूर्ण, गोलियों, काढ़ा, भुने हुए, आस्वित, छाने हुए या कश आदि के रूप में रोगी को दी जाती हैं। औषधि का उद्देश्य धातुओं और दोषों को सामान्य स्तर पर लाना रहता है।
1: और कोई विशेष बात?
2: एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि महर्षि चरक को आनुवांशिकी के मूल सिद्धांत का भी ज्ञान है, उन्हें उन कारणों का भी ज्ञान है जिससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है। वे कहते हैं बच्चों में आनुवांशिक दोष जैसे लंगड़ापन या अंधापन माँ या पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण उत्पन्न नहीं होते, त्रुटि उनके डिम्बाणु या शुक्राणु में होती है। इसी प्रकार चरक संहिता में चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, रोगियों की देखभाल तथा चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी भी दी गई है।
0: अरे आप लोगों की चर्चा अभी तक चल रही है, आज काफी रोगी आए, कुछ विशेष औषधि मिश्रण तैयार करने होंगे, पहले भोजन की व्यवस्था हो जाए फिर औषधि कार्य करेंगे।
2: जैसे आचार्य श्री की आज्ञा।

0: तो समझे बच्चों?
1: जी सर।
0: तो ये थी महर्षि चरक के व्यक्तित्व और कृतित्व की एक झलक। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 20 शताब्दी पहले रची गई चरक संहिता में अनेक ऐसी टिप्पणियां हैं जिन्हें आज भी चिकित्सक सम्मान देते हैं।
2: सर, ये कौन कौन सी टिप्पणियां हैं?
0: ये टिप्पणियां हैं शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र और भ्रूण विज्ञान से संबंधित।
2: जी सर।
0: हाँ बच्चों, इसी तरह भारत से ये चिकित्सा पद्धति विश्व भर के अनेक देशों में गई है। और जानते हो, यहाँ तक कि अमेरिका, लंदन और जापान में भी।
1: ये तो गौरवान्वित करने वाली बात हुई ना हमारे लिए।
0: हाँ बच्चों, अमेरिका में तो 10 विश्वविद्यालयों में इसका प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। लंदन में आयुर्वेदी चिकित्सालय काम कर रहा है और जापान में चरक संहिता का जापानी भाषा में अनुवाद हो चुका है।
1: अरे वाह, पता है आज की क्लास में आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जो हम कभी जान ही नहीं सकते थे।
3: जी सर, बिल्कुल।
0: तो बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो सबसे शुरू में बात बताई गई थी।
1: हाँ, मुझे याद है, आपने कहा था मलेरिया से अगर बचना है तो घर में मच्छरदानी लगानी चाहिए।
0: वेरी गुड।
4: और घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए
2: और डीटीटी का छिड़काव करना चाहिए।
0: अरे वाह, अरे बच्चों, तुम तो इतने समझदार हो, तुम में से तो कोई बीमार पड़ ही नहीं सकता। अब देखो, समय हो गया है, घंटी बज गई है। ठीक है, कल फिर हमारी मुलाकात होगी अगले विषय के साथ।
1: जी सर, बिल्कुल।
4: नमस्ते सर।
0: अच्छा, नमस्ते नमस्ते। ठीक है बच्चों।

0: साथियों, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी किसी और ऋषि वैज्ञानिक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें,
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: छेड़ देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। तराने आजादी के ये कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आइए शुरू करें सिलसिला देशभक्ति गीतों का।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने आजादी के। इस प्रसारण सभा में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता सिंह। अगली प्रस्तुति के साथ हाजिर होती हूँ, बस एक छोटा सा अंतराल। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम भारत भारती।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती

दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत भारती कार्यक्रम में हम संगीत की विभिन्न शैलियों को शामिल करते हैं, तो आज इस कार्यक्रम में हमने बिखेरे हैं रंग महाराष्ट्र की माटी के। जी हाँ, महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा में गाया जाने वाला अभंग लेकर हम उपस्थित हैं। अभंग विठल या विठोबा की स्तुति में गाए जाने वाले छंदों को कहते हैं। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संतों ने 13वीं सदी के दौरान समाज में अलख जगाने के लिए जो छंद क्षेत्रीय भाषा में गाए, वही अभंग कहलाए। तो आज भक्ति की उसी परंपरा का रसास्वादन कीजिए। भारत भारती कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है जयतीर्थ मेवुंडी का अभंग गायन।

अपनी आपने जो सुना वो भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी ने पूरा महाराष्ट्र भर वो प्रचलित किया हुआ ये गाना है। अभी मैं गाऊंगा अकार उकार मकार, ये जो मेरा ही कंपोजिशन है, मैंने कुछ कंपोजिशन बनाने के लिए प्रयत्न किया है, मैं ये गाऊंगा।

ये लक्ष्मी बारम्मा जो गाना है ये वास्तव में लक्ष्मी का वर्णन है, और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजन हम सब करते हैं और शुक्रवार लक्ष्मी के दिन माना जाता है। तो वो कैसे आती है घर, मतलब घर लक्ष्मी को अगर स्थापन करने के लिए उनको कैसे बुलाना है, ये सब उस कन्नड़ में वर्णित है। और इसको गाए हुए है पंडित भीमसेन जोशी जी ने, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा।

0: श्रोताओं, भारत भारती कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जयतीर्थ मेवुंडी का अभंग गायन। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। भारत भारती के किसी अगले अंक में संगीत का कोई नया रंग लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिएगा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूं कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया,
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा लेकर मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहेगा अब हमारा साथ ज्ञात, अल्पज्ञात और गुमनाम नायकों की गाथाएं और उनकी किस्से कहानियां जरूर सुनिए रेडियो आजाद हिंद में। आप हमारा प्रसारण ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट भी सुन सकते हैं मिक्सलर ऐप पर, रेडियो गार्डन पर, स्पॉटिफाई पर, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट, अमेजॉन पॉडकास्ट, यूट्यूब पॉडकास्ट, अमेजॉन पॉडकास्ट और यूट्यूब पॉडकास्ट पर भी आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें। बस कुछ ही देर में सुनिए कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसमें आप सुनेंगे मंडल एक के सूक्त 113 का वाचन। 5:10 पर कार्यक्रम भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा। वतन का राग कार्यक्रम पेश किया जाएगा शाम 6 बजे, जो आधारित है मंगल पांडे पर। इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम सुनिए 6:30 पर रानी दुर्गावती के युद्ध की विजय गाथा, डॉक्टर पूजा सक्सेना से संदीप शर्मा की चर्चा। योग संवाद कार्यक्रम शाम 7 बजे श्री राम की वैराग्य दशा पर आधारित भाग 70 आप सुनेंगे। भारत विभूति कार्यक्रम आधारित होगा योगाचार्य BKS अयंगर पर, जो 7:30 पर प्रसारित किया जाएगा। और 8 बजे परिक्रमा होगा, जिसमें रचना पाठ आप सुनेंगे कहानी का। आजाद हिंद कार्यक्रम 8:30 पर पेश किया जाएगा, मृगेंद्र कुमार दत्त और रामकृष्ण राय पर आधारित होगा। सुरसागर का प्रसारण किया जाएगा रात 9 बजे, भक्ति गायन राम भवसार का। और 9:30 पर युग प्रवर्तक विवेकानंद का प्रसारण सुनिएगा भाग 47 का। तो ये थी आज की सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। वेद, पुराण, ऋचाएं हमारी भारतीय संस्कृति की अक्षुण्य धरोहर हैं। वैदिक ऋचाओं पर आधारित हमारा कार्यक्रम सुनिए अक्षय निधि। पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 112 से वाचन। ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं द्वावा, पृथ्वी, अग्नि और अश्विनी कुमार। छंद है जगति और त्रिष्टुप।
1: ईडे द्यावा पृथ्वी पूर्व चित्तये अग्निम घर्मम सुरुचम यामनिष्टये याभिर्भरे कारमंशाय जिन्वथस्ताभिरु शु उति भिरश्विनागतम द्युलोक भूलोक तथा भली प्रकार प्रज्वलित तापयुक्त अग्नि की हम सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं। हे अश्विनी देवो, जिनसे कर्मशील पुरुषार्थी व्यक्ति को समर क्षेत्र में अपना भाग ग्रहण करने के लिए आपका मार्गदर्शन मिलता है, उन संरक्षण साधनों के साथ आप दोनों हमारे यहाँ पधारें। युवोर्दानाय सुभरा असश्चतो रथमा तस्थुर्वचसं न मन्तवे याभिर्धृष्यो वधः कर्मन्निष्टये ताभिरु शु उति भिरश्विनागतम। हे अश्विनी देवो, भरण पोषण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति जिस प्रकार इधर उधर न भटक कर ज्ञानी जनों के पास जाते हैं, उसी प्रकार आपके रथ के समीप दान ग्रहण करने के लिए साधक स्थित रहते हैं। जिन संरक्षण शक्तियों से आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनकी बुद्धियों और कर्मों को प्रेरित करते हैं, उन्हीं शक्तियों के साथ आप दोनों भली प्रकार यहां पधारें। युवं तासाम दिव्यस्य प्रशासने विषाम क्षयथो अमृतस्य मज्मना याभिर्धेनुमस्वं पिन्वथो नरा ताभिरु शु उतिभिरश्विनागतम। हे नेतृत्व गुण युक्त अश्विनी कुमारो, आप दोनों दिव्य लोक में उत्पन्न हुए, सोमरस के पीने से अमर और बलशाली बने तथा उसी बल से इन सभी प्रजाजनों पर शासन करते हैं। आपने जिन चिकित्सा प्रणालियों से बंध्या अर्थात प्रजनन क्षमता से रहित गौओं को प्रजनन योग्य हृष्ट पुष्ट और दुधारू बनाया, उन संरक्षण साधनों सहित आप निश्चित ही हमारे यहाँ पधारें। याभिः परिज्मा तनयस्य मज्मना द्विमाता तूर्षु तरणिर विभूषति याभिस्त्रिमंतुर भवद्विच क्षणस्ताभिरु शु ऊति भिरश्विना गतम। सर्वत्र विचरणशील वायुदेव और अग्निदेव जिस बल से दो माताओं अरणियों से उत्पन्न होकर अति गतिशील होकर विशेष शोभायमान होते हैं तथा कक्षीवान ऋषि जिन तीन साधन रूपी यज्ञों से विशिष्ट ज्ञानवान बने हैं, हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों उन संरक्षण साधनों के साथ हमारे यहाँ पधारें। याभी रेभम निवृतम सितमद्भय उद्वंद मैरयतम स्वर्दृशे याभि कर्णवम प्र सिशा संतमावतम ताभिरु शु ऊति भिरश्विना गतम। हे अश्विनी कुमारो, जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने जल में संपूर्ण स्थिति में डूबे और बंधन युक्त रेभ तथा वंदन को बाहर निकालकर प्रकाश के दर्शन योग्य बनाया, जिस प्रकार साधनारत कर्णव को संरक्षण साधनों द्वारा उचित रीति से समर्थ बनाया, उन्हीं संरक्षण युक्त साधनों के साथ आप हमारे यहां पधारें। याभिरंतकम जसमान मारणे भुज्युम याभिरव्यथि भिर जिजन्वथुः याभिः करकंधुम वैयम च जिन्वथस्ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम। हे अश्विनी देवो, जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने कूप गर्त में पड़े और कष्ट पीड़ित राजर्षि अंतक को बाहर निकाला, जिस कड़ी मेहनत से तुग्र पुत्र भुज्यु को सुरक्षित किया और करकेंदु तथा वैय्य की जिन संरक्षण साधनों से युक्त होकर रक्षा की, उन संरक्षण साधनों से युक्त होकर आप हमारे यहां पधारें। याभि शुचंतिम धनसाम सुषम सदम तप्तम घर्म मोम्या वंतमत्रये। याभि प्रिष्णगुम पुरुकुत्समावतम ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम। हे अश्विनी कुमारो, जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने धन वितरण करता शुचंती को श्रेष्ठ निवास योग्य स्थान दिया, अत्रि ऋषि के लिए तप्त बंदी गृह को शांत किया तथा प्रिष्णिगु तथा पुरुकुत्स को सुरक्षित किया, उन संरक्षण सामर्थ्यों से युक्त होकर आप हमारे यहां पधारें। याभि शचीभिर्वृषणा परावृजम प्रांधम श्रोणम चक्षस एतवे कृथः। याभिर्वर्तिकाम ग्रसिता ममुंचतम ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम। हे अश्विनी कुमारो, जिस सामर्थ्य से आपने पंगु परावृक ऋषि को, नेत्रहीन रिज्राश्व को और पैरों से लंगड़े श्रोण को दृष्टि युक्त करके पांवों से चलने फिरने योग्य बनाया, भेड़ियों द्वारा मुख में पकड़ी हुई दांतों से घायल चिड़िया को अपनी सामर्थ्य से मुक्त करके आरोग्य प्रदान किया, उन आरोग्य प्रद चिकित्सा साधनों के साथ आप हमारे यहां पधारें। याभि सिंधुम मधुमंत मशश्चतम वसिष्ठम याभि रजरा वजिन्वतम याभि कुत्सम श्रुतरियम नर्यमावतम ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम। हे चिर युवा अश्विनी कुमारो, आप दोनों ने जिस सामर्थ्य से मधुर जल रूप रस वाली नदियों को प्रवाहित किया, जिससे वशिष्ठ कुत्स श्रुतर्य और नर्य को शत्रुओं से सुरक्षित किया, उन्हीं संरक्षण साधनों के साथ आप हमारे यहां उपस्थित हों। याभिर विश्पलाम धनसामथर्व्यम सहस्रमीडः आजावजिन्वतम् याभिर्वशमश्वयम् प्रेणिमावतम् ताभिरु शु उतिभिरश्विना गतम्। हे अश्विनी कुमारो, जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने हजारों योद्धाओं द्वारा लड़े जा रहे समर क्षेत्र में अथर्व वंश में उत्पन्न धनदात्री विषपला का सहयोग किया तथा प्रेरणा प्रद अश्वराज के पुत्र वश ऋषि को संरक्षित किया, उन्हीं संरक्षण सामर्थ्यों के साथ आप हमारे यहां अवश्य पधारें। या भी सुदानु औषिजाय वणिजे दीर्घ श्रवसे मधुकोशो अक्षरत कक्षीवंतम स्तोतारम याभिरावतम ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम्। हे श्रेष्ठ दानदाता अश्विनी कुमारो, जिस सामर्थ्य से आपने उषिक पुत्र दीर्घश्रवा नामक व्यापारी के लिए मधु के भंडार प्रदान किए तथा स्तोत्रकर्ता कक्षीवान को सुरक्षित किया, उन्हीं संरक्षण शक्तियों के साथ आप दोनों हमारे यहां अवश्य पधारें। याभी रसाम क्षोदसोदनः पिपिन वथुरनश्वम याभी रथमावतम जिशे याभिस्त्रिशोक उस्रिया उदाजत ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम्। हे अश्विनी कुमारो, जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने नदी के तटों को जलों से भरपूर किया, जिससे अश्वों से रहित रथ को तेज गति से चलाकर शत्रु को पराजित करके विजय उपलब्ध की तथा कर्ण व पुत्र त्रिशोक के लिए दुधारू गौओं को प्रदान किया, उन्हीं संरक्षण सामर्थ्यों के साथ आप हमारे यहां पदार्पण करें। याभि सूर्यम परियाथः परावती मंधातारम क्षौत्रपत्येष्वावतम याभिर्विप्रम प्र भरद्वाजमावतम ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम्। हे अश्विनी कुमारो, जिस सामर्थ्य से आप दोनों दूर स्थित सूर्य देव के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, आप दोनों ने जिस प्रकार मांधाता को क्षेत्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करने की सामर्थ्य प्रदान की तथा ज्ञान संपन्न भरद्वाज को जिन श्रेष्ठ सुरक्षा साधनों द्वारा बचाया, उन्हीं सामर्थ्य युक्त साधनों के साथ हमारे यहां पधारें। याभिर महामति थिग्वम कशोजुवम दिवो दासम शंबरहत्य आवतम याभिः पूर्भिद्ये त्रसदस्युमावतम ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम्। हे अश्विनी कुमारो, जिन सामर्थ्यों से शंबर का वध करने वाले संग्राम में अतिथिग्व कुशोजुव और महान दिवोदास को आप दोनों ने संरक्षण प्रदान किया था, शत्रु नगरों को ध्वस्त करने वाले संग्राम में त्रसदस्यु दस्युओं को संत्रस्त करने वाले राजा को संरक्षित किया था, उन्हीं संरक्षण सामर्थ्यों के साथ आप हमारे यहां उपस्थित हों। याभिर्वर्मम् विपिपानमुपस्तुतम् कलिम् याभिर्वित्तजानिम् दुवस्यथः याभिर्व्यश्वमुत पृथिमावतम् ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम्। हे अश्विनी कुमारो, जिन सामर्थ्यों से सोमरस पान करने वाले निकटस्थ लोगों द्वारा प्रशंसनीय वर्म ऋषि को आप दोनों ने संरक्षित किया, जिनसे धर्म पत्नी सहित कलि ऋषि को संरक्षित किया तथा अश्वरहित पृथ्वी को संरक्षित किया था, उन सभी सुरक्षा साधनों से आप यहां आए। याभिर नरा शयवे याभिरत्रये याभि पुरा मनवे गातु मी शथुः याभि शारी राजतम स्यूम रश्मये ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम्। नेतृत्व क्षमता संपन्न हे अश्विनी कुमारो, जिन सामर्थ्यों से शयु का सहयोग देने के लिए जिनसे अत्रि ऋषि को कारागृह से मुक्त करने के लिए जिनसे मनु को पुरातन समय में दुख से निवृत्त होने का रास्ता आप दोनों ने बताया था तथा शत्रु सेना पर बाणों का प्रहार करके स्यूम रश्मि की रक्षा की, उन्हीं समस्त संरक्षण सामर्थ्यों से युक्त आप हमारे यहां पधारें। या भी पठर्वा जठरस्य मज्मनाग्निर् नादीदे चित इद्धो अज्मन्ना याभि शरिया यतमवथो महाधने ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम्। हे अश्विनी कुमारो, आपकी जिन सामर्थ्यों का सहयोग पाकर समिधाओं से प्रदीप्त तेजस्विता युक्त अग्नि के समान ही पठर्वा राजा युद्ध में अपनी शारीरिक शक्ति से अति तेजस्वी बना था, विशाल संपदा अर्जित करने वाले संग्राम में आप दोनों ने शर्यात को जिनसे संरक्षित किया था, उन्हीं संरक्षण सामर्थ्यों के साथ आप यहां पधारें। याभिरंगिरो मनसा निरण्यथोग्रम गच्छथो विवरे गो अर्णसः याभिर्मनुम शूरमिषा समावतम ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम्। हे अश्विनी कुमारो, आंगी रसों द्वारा श्रद्धा पूर्वक आप दोनों की स्तुति किए जाने पर जिस सामर्थ्य से आपने उन्हें संतुष्ट किया, चुराए गए गौ समूह को प्राप्त करने के लिए गुफा के दरवाजे में आप दोनों ही आगे जाते हैं तथा जिस सामर्थ्य से शूरवीर मनु को संग्राम में चतुर अन्न सामग्री द्वारा सुरक्षित किया, उन्हीं संपूर्ण सामर्थ्यों के साथ आप दोनों हमारे यहां आए। या भी पत्नीर विमदाय न्यूह थुरा घवा या भी ररुणी रशिक्षतम या भी सुदास ऊहथु सुदेव्यम ताभिरु शु ऊतिभिरश्विना गतम्। हे अश्विनी कुमारों, जिन सामर्थ्यों से आप दोनों ने विमद की धर्म पत्नियों को उनके निवास स्थान पर पहुंचाया, लाल वर्ण की घोड़ियों को भली प्रकार प्रशिक्षित किया अथवा लाल रंग की उषाकालीन किरणों को मनुष्यों के लिए प्रेरित किया तथा पिजवन पुत्र सुदास को दिव्य संपदा प्रदान की। उन्हीं प्रेरणा प्रद शक्तियों के साथ हमारे यहाँ पधारें। याभिः शन्ताति भवथो ददाशुषे भुज्युम याभिः रवथो याभिः रघ्रिगुम ओम्यावतीं सुभरामृतस्तुभं ताभिरु शु ऊतिभिरश्विनागतम्। हे अश्विनी देवो, जिन सामर्थ्यों से आप दानी मनुष्यों के लिए सुखद बने, भुज्यु और अधिगु को आपने संरक्षित किया तथा ऋतस्तुभ को श्रेष्ठ पौष्टिक और आनंदप्रद अन्न सामग्री प्रदान की। उन्हीं सुखदायक सामर्थ्यों के साथ आप दोनों हमारे यहाँ पदार्पण करें। याभिः कृशानुमसने दुवस्यथो जवे याभिर्यूनो अर्वन्तमावतम् मधुप्रियं भरथो यत्सरंभ्यस्ताभिरुषु ऊतिभिरश्विनागतम्। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने जिन सामर्थ्यों से कृशानु का संग्राम में सहयोग किया, नवयुवा पुरुकुत्स के गतिशील अश्व को संरक्षित किया तथा मधुमक्खियों के लिए मधुर शहद उत्पन्न किया, उन्हीं संरक्षण साधनों के द्वारा आप हमारे यहाँ आए। याभिर नरम गोशु युधम नृषाह्ये क्षेत्रस्य साता तनयस्य जिन्वथः याभिरथाम अवथो याभिरवर्तस्ताभिरुषु ऊतिभिरश्विनागतम्। हे अश्विनी कुमारो, जिन सामर्थ्यों से आप गौओं के संरक्षणार्थ संघर्षशील योद्धाओं को और कृषि उत्पादनों की वितरण वेला में कृषकों को पारस्परिक कलह से संरक्षित करते हैं तथा वीरों के रथों और अश्वों की सुरक्षा करते हैं, उन्हीं सामर्थ्यों सहित आप दोनों उत्तम रीति से यहाँ आए। याभि कुत्समार्जुनेयम् शतक्रतु प्रतुर्वीतिम् प्रच दभीतिमावतम् याभिरध्वं संतिम् पुरुषंतिमावतम् ताभिरु शु ऊतिभिरश्विनागतम्। सैकड़ों यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म संपन्न करने वाले हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने जिन सामर्थ्यों से अर्जुन के पुत्र कुत्स तुर्वीति एवं दधीति को तथा ध्वसंति और पुरुषंति ऋषियों को संरक्षण प्रदान किया, उन्हीं सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ आप श्रेष्ठ विधि से यहाँ पदार्पण करें। अपनस्वतीमश्विना वाचमस्मे कृतम नो दस्रा वृषणा मनीषाम अद्युत से वसे निहुये वाम वृधे च नो भवतम वाजसातौ। हे दर्शन योग्य शक्ति संपन्न अश्विनी कुमारों, आप दोनों हमारी वाणी और बुद्धि को सत्कर्मों में नियोजित करें। हम याजक गण सन्मार्ग में उपलब्ध होने वाले अन्न हेतु आप दोनों का आवाहन करते हैं। आप दोनों ही यज्ञ में हमारी वृद्धि के कारण बने। द्युभि रक्तुभिः परि पातमस्मानरेष्टि भिरश्विना सौभगेभिः तन्नो मित्रो वरुणो माम हन्ता मदितिः सिंधुः पृथ्वी उत द्यौः। हे अश्विनी कुमारो, दिन रात्रि अनश्वर श्रेष्ठ धनों से हमें सभी प्रकार से संरक्षित करें। मित्र वरुण, अदिति, सिंधु और द्युलोक आपके द्वारा प्रदत्त धनों के संरक्षण में सहायक हों।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 112 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: वेद पुराण ऋचाएं हमारी भारतीय संस्कृति की अक्षुण्य धरोहर हैं। वैदिक ऋचाओं पर आधारित 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण के साथ। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र भारती। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम भक्ति संगीत सुनने का। भगवत आराधना के सुमधुर स्वर सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत में। समस्या देने वाले की हस्ती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर ईश्वर साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर विश्वास, जो तमाम विपत्तियों से घिर जाने पर भी विचलित नहीं होता, वही सच्चा श्रद्धावान है।

उपलब्धियां इस संसार में भरी पड़ी हैं, पर उन्हें प्राप्त करने के लिए ज्ञान, चरित्र और साहस चाहिए।

जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद खुद ब खुद दिखने लगेगा।

एक समय में सभी को खुश रखने का प्रयास मत कीजिए। जो काम हाथ में है केवल उसके ऊपर लक्ष्य रखिए, बाकी सब समय के हाथ में छोड़ दीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए, रेडियो आजाद हिंद।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। ब्रह्मदेश वर्मा पर विजय और सिख युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत वर्ष पर निष्कंटक राज्य करने के सपने देखे, पर उन्हें क्या पता था कि सन 1857 का वर्ष उनकी आशाओं पर तुषारपात का वर्ष सिद्ध होगा। देशव्यापी युद्ध की गोपनीय तैयारियां होने लगी, किसी उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा थी। म्यान में पड़ी भारतीय तलवारें बाहर निकलने को आतुर हो रही थीं। वीरों के भाले शत्रु के रक्त के प्यासे हो रहे थे। भारतीय बंदूकें और तोपें अग्नि वर्षा के लिए विकल हो उठी थीं। वीरों की भुजाएं अब फड़क रही थीं। आजादी के दीवानों को प्रतीक्षा के एक पल एक वर्ष जैसे लंबे लग रहे थे। आखिरकार एक दीवाने के धैर्य का बांध टूट ही गया और वे सामूहिक अभियान की प्रतीक्षा किए बिना ही अंग्रेजों को ललकारते हुए रणभूमि में कूद पड़े। 29 मार्च 1857 का दिन अंग्रेजों के लिए दुर्भाग्य के दिन के रूप में उदित हुआ था। 5वीं कंपनी की 34वीं रेजिमेंट का 446 नंबर का सिपाही वीरवर मंगल पांडे अंग्रेजों के लिए प्रलय सूर्य के समान निकला था। बैरकपुर की संचलन भूमि में प्रलय वीर मंगल पांडे का रणघोष गूंज उठा। बंधुओं उठो, उठो, तुम अब भी किस चिंता में निमग्न हो, उठो, तुम्हें अपने पावन धर्म की सौगंध, चलो स्वातंत्र लक्ष्मी की पावन अर्चना करेंगे, इन अत्याचारी शत्रुओं पर तत्काल प्रहार करो।

मंगल पांडे के बदले हुए तेवर देखकर अंग्रेज सार्जेंट मेजर ह्यूसन उनके पथ को अवरुद्ध करने के लिए आगे बढ़ गया। उसने उन विद्रोही को उसकी उद्दंडता का पुरस्कार देना चाहा। अपनी कड़कती आवाज में मंगल पांडे को खड़ा रहने का आदेश दिया गया। वीर मंगल पांडे के अरमान अब मचल उठे। वो शिवशंकर की भांति सन्नद्ध होकर रक्त गंगा का आवाहन करने लगे। उनकी सबल बाहुओं ने बंदूक अब तान ली। उनकी सधी हुई उंगलियों ने बंदूक का घोड़ा अपनी ओर खींचा और गोली का तीव्र स्वर वातावरण में गहरा उठा। मेजर ह्यूसन घायल कबूतर की तरह भूमि पर तड़प उठा। उसका रक्त भारत की भूमि पर बह गया। 1857 के वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे ने एक फिरंगी की बलि ले ली थी। विप्लव महायज्ञ के पुरोधा मंगल पांडे की बंदूक पहला स्वाहा बोल चुकी थी। स्वातंत्र यज्ञ की वेदी को दस्यु देह की समिधा अर्पित हो चुकी थी। ह्यूसन को धराशाही हुआ देखकर लेफ्टिनेंट बॉब वहां पर जा पहुंचा। उस अश्वारूढ़ गोरे ने मंगल पांडे को घेरना चाहा। पहला ग्रास खाकर मंगल पांडे की बंदूक की भूख अब और भड़क उठी थी। बंदूक ने दूसरी बार मुंह खोला और लेफ्टिनेंट बॉब घोड़े सहित धरती पर दिखाई दिया। गिरकर भी बॉब ने अपनी पिस्तौल मंगल पांडे की ओर साध दी और गोली चला दी। विद्युत गति से वीर मंगल पांडे गोली का वार बचा ले गए और बॉब रह गए देखते। अपनी पिस्तौल को मुंह की खाती हुई देखकर बॉब ने अपनी तलवार खींच ली और वो मंगल पांडे पर टूट पड़ा। मंगल पांडे भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। बॉब ने मंगल पांडे पर प्रहार करने के लिए तलवार तानी ही थी कि पांडे की तलवार का भरपूर हाथ उस पर ऐसा पड़ा कि बॉब का कंधा तलवार वाला हाथ जड़ से कटकर अलग हो गया। एक बलि मंगल पांडे की बंदूक ने लिया और दूसरी बलि उनकी तलवार ने। लेफ्टिनेंट बॉब को गिरा हुआ देखकर एक दूसरा अंग्रेज भी मंगल पांडे की ओर बढ़ गया, लेकिन भारतीय सैनिक ने बंदूक के डंडे से उस अंग्रेज की खोपड़ी खोल दी। अपने आदमियों को गिरता हुआ देखकर कर्नल व्हीलर मंगल पांडे की ओर बढ़ा, लेकिन सभी भारतीय सिंह गर्जना कर उठे, खबरदार जो कोई आगे बढ़ा आज हम अपनी पवित्र देह को स्पर्श नहीं करने देंगे। कर्नल व्हीलर जैसा था वैसा ही लौट गया। इस सारे कांड की सूचना अपने जनरल को देकर उसने अंग्रेजी सेना को बटोरा और वहां से रवाना हो गया।

वीर मंगल पांडे ने अपने कर्तव्य की पूर्ति कर दी थी। उन्होंने शत्रु के रक्त से भारत भूमि का तर्पण किया था। मातृभूमि की स्वाधीनता जैसे महान कार्य के लिए अपनी रक्तांजलि देना भी उन्होंने अपना पावन कर्तव्य समझा। उन्होंने अपनी बंदूक अपनी छाती से अड़ाकर गोली चला दी। गोली छाती में सीधी ना जाकर पसलियों में फंस गई और घायल सिंह अंग्रेजी सेना द्वारा बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों ने भरसक प्रयास किया कि वो मंगल पांडे से क्रांति योजना के विषय में उनके साथियों के नाम और पते पूछ सकें, लेकिन वो मंगल पांडे थे। मंगल होकर अपने साथियों का अमंगल कैसे करते? फौजी अदालत ने न्याय का नाटक रचा और फैसला सुनाया गया। 8 अप्रैल 1857 के सूर्य ने उदित होकर मंगल पांडे के बलिदान का समाचार संसार में प्रसारित कर दिया। वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे के पवित्र प्राण हव्य को पाकर स्वातंत्र यज्ञ की लपटे अब और भड़क उठी। क्रांति की ये लपलपाती हुई लपटें फिरंगियों को लील जाने के लिए अब चारों ओर फैलने लगी थीं। ऐसे थे वीर मंगल पांडे। ऐसे वीर क्रांतिकारी को हम शत शत नमन करते हैं।

0: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
1: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
0: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
1: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
0: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए।
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से।
1: नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में आगे की कहानी जानेंगे। इतिहास के पन्नों से। इसके पहले के एपिसोड्स में हम आपको बता रहे थे गोंड जनजाति के बारे में, रानी दुर्गावती के बारे में, और हम यहां तक पहुंच चुके थे कि बस युद्ध की तैयारियां हो चुकी थीं। युद्ध के मुहाने पर दोनों सेनाएं खड़ी हुई थी, रानी दुर्गावती की और मुगल सेना। इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी में हमने सुना था कि 1564 ईस्वी में गढ़ा की गोंड रानी और दिल्ली के मुगल शासक अकबर के बीच युद्ध पर आ बनी। मुगल सेनापति आसफ खां अकबर की ओर से अपनी विशाल सेना के साथ गढ़ा राज्य की सीमा पर आकर डट गया। इधर जब गोंड रानी दुर्गावती को स्थिति की जानकारी मिली तो उन्होंने भी अपनी सेना को सुगठित किया और युद्ध के लिए नरई की तरफ बढ़ गईं। बीच रास्ते में उन्होंने सेना को फिर से संगठित किया। अनेक लोग उनकी सेना में स्वेच्छा से भर्ती हो गए। रानी की सेना में 2 से 3 हजार सैनिक थे, जबकि मुगल सेना में लगभग 50 हजार सैनिक, हाथी और घोड़े थे। कई इफ्तिखार भी अपनी सेनाओं के साथ मुगल सेना में आकर जुड़ गए थे। इस तरह मुगल सेना जहां एक तरफ बहुत विशाल थी, वहीं रानी की सेना उसकी अपेक्षा में बहुत कम थी। रानी को यह भी सलाह दी गई थी कि वो संधि कर लें और युद्ध से बच जाएं। किंतु रानी दुर्गावती युद्ध से मोड़ लेने जैसा कायराना काम कर ही नहीं सकती थी। उन्होंने युद्ध क्षेत्र को ही चुना। कहते हैं कि रानी ने अपनी सेना को संबोधित किया और उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। यहां करो या मरो की स्थिति थी। रानी के ओजपूर्ण वक्तव्य ने काम किया और उनकी संपूर्ण सेना ने एक मत होकर युद्ध करने की इच्छा जाहिर की और एकजुट होकर स्वीकार किया कि जो भी परिणाम होगा उसके वो सामूहिक रूप से भागीदार होंगे, जिम्मेदार होंगे। हमारी विषय विशेषज्ञ और पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना ने हमें बताया था कि गढ़ा की प्रजा रानी का बहुत अधिक सम्मान करती थी। वो उन्हें माँ दुर्गा के समान मानती थी और इसलिए आज भी जो आख्यान गाए जाते हैं इस क्षेत्र में, उसमें इस नरई के युद्ध की घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। रानी को याद करते हुए आज भी जस गाए जाते हैं, यानी कि यश गीत गाए जाते हैं। ऐसे अनेक जस हैं जिसमें रानी को माँ दुर्गा के समान बताया गया और युद्ध के लिए रानी ने कैसे हुंकार भरी, वो कैसी दिख रही थी, पूजा जी ने बताया था। और एक बार फिर से वो सैला लोकगीत आपको जरा सा उसकी चार पंक्तियां हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तरी नाना मो नाना रे नाना, तरी नाना मो नाना रे नाना, रानी महारानी ओ आए, माता दुर्गा जो आए, रणमा जूझे तलवारी रानी दुर्गा कहाए। पूजा जी फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए। फिर से पहले से ही अग्रिम धन्यवाद।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद
1: पूजा जी। अब आंखों देखा हाल आपसे सुनना चाहेंगे युद्ध का।
2: जैसा आपने कहा कि गढ़ा की सेना और आसफ खां की सेना दोनों लगभग सामने आमने ही थी
1: जी।
2: युद्ध होने को ही था। हालांकि इतिहास में हमने बहुत से युद्ध देखे हैं
1: जी।
2: युद्ध तो किसी के लिए भी ठीक तो नहीं होता
1: जी।
2: दोनों ओर के लोग मारे जाते हैं युद्ध में
1: जी।
2: किसी के कम मरते हैं, किसी के ज्यादा
1: जी।
2: लेकिन हानि तो होती है। फिर भी सदियों से इंसान दूसरे की भूमि हड़पने के लिए लड़ता आया है। भारतीय परंपरा में आक्रमण करके भूमि जीतने वाला राजा महान नहीं माना जाता, बल्कि प्रेम से, त्याग से, दान से, निर्माण से और सबसे अधिक बलिदान से हृदय जीतने वाला राजा महान होता है
1: जी।
2: इसलिए ये अवधारणा का अंतर हमें भारतीय परंपरा में, भारतीय युद्धों में देखने को मिलता है
1: जी।
2: यहाँ वह राजा महान होता है जो प्रजापालक हो, लोकहित में कार्य करता हो, राज्य की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दे। ऐसा राजा, ऐसी रानी हमें प्रिय होती है।
1: बिल्कुल।
2: महानता इसमें नहीं है कि आप कितने साधन संपन्न थे
1: जी, हाँ।
2: आपके पास कितनी विशाल सेना थी या आप कितने बड़े राज्य के मालिक थे।
1: बिल्कुल।
2: महानता इसमें होती है कि जिस परिस्थिति में आप थे उसमें आपने क्या पराक्रम दिखाया
1: जी।
2: आप परिस्थिति का सामना करने की बजाय भाग खड़े हुए या अपनी प्रजा के सम्मान के लिए, राज्य की रक्षा के लिए आप प्राणों की आहुति देने में भी पीछे नहीं हटे
1: जी।
2: इन सभी प्रतिमानों पर हमारी लोकप्रिय गोंड रानी दुर्गावती खरी उतरती है।
1: बिल्कुल, पूरी तरह जी।
2: उनके पास जो भी साधन थे, संसाधन थे, उसके साथ ही वह विशाल मुगल सेना के आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार हो गईं। गढ़ा की सेना को सुगठित किया, अपने वक्तव्य से सैनिकों को प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में गढ़ा की सेना पूरे पराक्रम से इस युद्ध को लड़ी। गढ़ा राज्य की रक्षा के लिए रानी दुर्गावती और उनकी प्रजा सर्वस्व बलिदान करने के लिए सहर्ष तैयार थी।
1: पूजा जी, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि रानी दुर्गावती बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ी सी कुछ कूटनीति का इस्तेमाल किया और उन्होंने जो आगे बढ़ने की दिशा थी वो अपनी बदल दी थी, और उससे क्या आसफ खां की सेना चौंकी, आसफ खां चौंका या नहीं, क्या हुआ?
2: जैसा कि हम जानते हैं कि जब रानी की सेना अचानक जंगलों की ओर मुड़ गई
1: जी
2: नरई आते आते, तो आसफ खां को समझ नहीं आया कि सेना गई कहां।
1: जी
2: कुछ समय बाद जब उनको यह सूचना मिली कि रानी की सेना नरई की ओर बढ़ रही है, तब उसने जल्दी से अपने दो सेनापतियों नाजिर मोहम्मद और आक मोहम्मद को सेना का एक बड़ा भाग देकर आगे आगे जाने को कहा।
1: जी हाँ।
2: वे दोनों मुगल सेना को लेकर नरई की ओर आगे बढ़ने लगे। वहीं सेनापति आसफ खां और अधिक सूचनाएं जुटाता रहा और पीछे बची हुई जितनी सेना थी उसको साथ लेकर नरई की ओर रवाना हो गया।
1: जी।
2: रानी तक भी यह समाचार पहुंचा कि मुगल सेनापति आसफ खां की ओर से नाजिर मोहम्मद और आक मोहम्मद के नेतृत्व में मुगल सेना की टुकड़ियां घाटी में प्रवेश कर रही हैं।
1: जी।
2: अब जैसी की योजना थी, रानी दुर्गावती ने यह निश्चय किया कि जब मुगल सेना नरई घाटी में प्रवेश कर जाएगी
1: जी।
2: तब उसका सामना किया जाएगा, क्योंकि चारों ओर से ये घाटी पहाड़ों से घिरी हुई थी
1: और इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से गोंड सेना जानती
2: भी थी। एक और नर्मदा नदी थी, दूसरी तरफ गौर नदी
1: जी।
2: तो इस क्षेत्र की अच्छी जानकार थी गोंड सेना। तो ये निश्चित हो गया कि जब नरई की घाटी में सेना प्रवेश कर जाएगी आसफ खां की, उसके बाद ही कोई हमला किया जाएगा
1: जी।
2: तो गोंड सेना भी अपने शस्त्रों और अस्त्रों के साथ सुसज्जित थी
1: जी।
2: गोंड सेना में हाथी थे, घोड़े थे और पैदल सैनिक भी थे
1: जी।
2: ये सभी धनुषवाण, ढाल, तलवार, कृपाण, कटार, बर्छी, भाला, ये सब लेकर एकदम तैयार खड़े थे।
1: पूजा जी, युद्ध बिल्कुल लड़ा कब गया, क्या कोई तारीख नजर आती है?
2: बिल्कुल स्पष्ट आईने अकबरी में मेंशन है कि यह युद्ध 1564 ईस्वी में लड़ा गया और तारीख थी 23 जून और 24 जून।
1: अच्छा, यानी ये दो दिन की ये लड़ाई थी
2: कि ये लड़ाई थी। और आज से अगर हम इसको देखें तो 459 वर्ष इसको हो चुके हैं इस युद्ध को, फिर भी ये युद्ध हमारी यादों में आज भी है,
1: आज भी हमारी स्मृतियों में है और आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। रानी दुर्गावती के शौर्य की हम गाथा की बात कर रहे हैं। तो पूजा जी, हमारे श्रोता भी बहुत बेकरार हैं, बहुत उत्सुक हैं कि आगे युद्ध में क्या हुआ, बताइए।
2: जब रानी को यह पता चला कि आसफ खां की सेना की जो अग्रिम टुकड़ियां हैं वो नरई में प्रवेश करने ही वाली हैं, तो रानी दुर्गावती ने अपनी सेना घाटी के चारों ओर ऊंचे स्थान पर इस प्रकार खड़ी की कि शत्रु सेना के आते ही उस पर धावा बोला जा सके। जैसे ही मुगल सेना ने नरई घाटी में प्रवेश किया, रानी दुर्गावती के आदेश से गढ़ा की सेना ने चारों ओर से उस पर हमला बोल दिया
1: जी।
2: दोनों ही सेना के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो गया। हाथी, घोड़े पर सवार दोनों ही सेनाओं के सैनिक युद्ध कर रहे थे। धनुष, बाण, तीर, तलवार और भालों की खनखनाहट से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा था।
1: अच्छा मैम, रानी दुर्गावती तो नेतृत्व तो कर ही रही थी सेना का, लेकिन जैसे कि होता है कि पैदल सेना, जैसे अश्व सेना, हाथी सेना, तो ये जो अलग अलग सेनाएं थी, ये जो अलग अलग युद्ध कौशल थे, तो और कौन कौन नेतृत्व करता थे रानी दुर्गावती की सेना में, उनके अगर यदि आप कुछ नाम हमें बता पाएं।
2: हमने जैसा कि पहले बात की थी एक बार कि जब रायसेन पर आक्रमण हुआ था उस समय रानी दुर्गावती जब विजय हुई थी
1: जी।
2: तो उनकी सेना में कुछ मियाना अफगानी जो थे वो भी शामिल हो गए थे
1: जी, जी।
2: और वो ऊंचे पदों तक भी पहुंचे, उनकी सेना में वो सेनापति भी बने
1: जी।
2: तो आपको कुछ नाम याद होंगे जैसे कि शम्स खां मियाना
1: जी, जी।
2: मुबारक बिलूच
1: जी।
2: तो ये जो थे ये अब भी इस नरई की युद्ध में भी शामिल थे
1: जी।
2: और सेनापति के तौर पर शामिल थे और इन्होंने भी बड़ी वीरता पूर्वक इस युद्ध में लड़ा। इसी तरह जैसा कि हमने पिछले अंकों में बात की थी कि जो गढ़ा के राजा थे दलपत शाह
1: जी,
2: जब उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई तो उनका जो पुत्र था वीर नारायण
1: जी,
2: वो बहुत छोटा था, 3-4 वर्ष का रहा होगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: अगला राजा जो घोषित किया गया था वो वीर नारायण को घोषित किया गया था और रानी ने उनकी संरक्षिका बनकर राजकाज संभाला था।
1: जी हाँ।
2: तो अब इस समय तक आते आते यानी कि 1564 ईस्वी तक आते आते वीर नारायण लगभग 17-18 वर्ष के रहे होंगे। रानी को शासन करते हुए 14 वर्ष हो चुके थे। तो वीर नारायण 17-18 वर्ष के नौजवान थे
1: जी।
2: बहुत अनुभवी तो नहीं रहे होंगे लेकिन हाँ साहसी थे। इस युद्ध में उनका भी वर्णन आता है, वो भी सेना का नेतृत्व कर रहे थे
1: जी।
2: तो ऐसे कुछ नाम हमको गढ़ा राज्य की सेना में मिलते हैं।
1: और पूजा जी, क्या रानी दुर्गावती की सेना में एक फौजदार थे जिनका जिक्र इतिहास में आता है, अर्जुन सिंह, उनकी क्या भूमिका थी इस युद्ध में? क्योंकि ये युद्ध उनके लिए भी काफी याद किया जाता है।
2: इस युद्ध का जो सबसे प्रमुख बलिदान सर्वप्रथम दिया वो थे अर्जुन सिंह बखीला। उनको अर्जुन सिंह बैस के नाम से भी जाना जाता है और अर्जुन सिंह बघेल के नाम से भी जाना जाता है।
1: अच्छा।
2: तो ये जो अर्जुन सिंह बखीला थे ये रानी की जो हाथी सेना थी उसका संचालन किया करते थे
1: जी।
2: फौजदार थे सेना में
1: जी।
2: और जब युद्ध चल रहा था तो उस समय इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब आसफ खां की सेना नरई में प्रवेश कर रही थी उसी समय अर्जुन सिंह बघेला ने पूरा नेतृत्व संभाल लिया और हाथी की सेना के द्वारा उन्होंने खूब अच्छा संचालन किया
1: जी।
2: आप जानते ही हैं कि मध्य युग में हाथियों का सेना में बहुत अधिक महत्व था।
1: जी।
2: हाथी की जो ऊंचाई होती है काफी ज्यादा होती है और ये काफी बलशाली पशु भी है
1: जी।
2: और अपने जो प्रशिक्षक होता है उसकी बात भी बहुत अच्छे से मानता है, इसलिए सेना में हाथियों का खूब उपयोग होता था और हाथी की सेना का जो संचालन करता था उसका भी बहुत ही महत्व था। तो इस पूरे युद्ध में अर्जुन सिंह बघेला का संचालन बहुत महत्व रखता था
1: जी।
2: तो जब आसफ खां की सेना नरई में प्रवेश कर गई तो सबसे पहला सामना अर्जुन सिंह बघेला ने ही किया और उन्होंने काफी वीरतापूर्वक युद्ध किया
1: जी।
2: लेकिन शाम होते होते अर्जुन सिंह बखीला वीरगति को प्राप्त हो गए और ये गढ़ा राज्य के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति थी।
1: निश्चित रूप से कि जिस सेना में हाथी सेना का बहुत, जिस युद्ध में बहुत ज्यादा महत्व हो, उसके जो फौजदार हैं जो हाथी सेना का संचालन ही कर रहे थे वो बहादुरी से लड़े और वो वीरगति को प्राप्त हुए, तो ये एक बड़ा सेटबैक था, ये अपूर्णीय क्षति थी गोंड सेना के लिए। वाकई श्रोताओं, पूजा जी ने हमें एक बहुत अहम जानकारी ये भी अपने पिछले अंकों में दी है कि एक बहुत बड़ा कारण हाथी भी थे गोंड राज्य पर कब्जा करने के लिए, जो अन्य शासक थे वो क्यों ललायत रहते थे। कहते हैं कि उस समय उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में हाथी पाए जाते थे। तो ये एक बहुत अच्छी और नई जानकारी निकल करके आई है, क्योंकि हम आज के मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ बहुत सारे हाथी आज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उस समय वो वन क्षेत्र कितना सघन रहा होगा और कितनी उपजाऊ वो भूमि रही होगी कि वहाँ पर हाथी जैसे बड़े शाकाहारी जीव के लिए परिस्थितियाँ कितनी अनुकूल रही होंगी। तो पूजा जी, जब अर्जुन सिंह बैस वीरगति को प्राप्त हुए तो युद्ध उसके बाद भी जारी रहा, क्या इस पूरी बात से गढ़ा सेना का जोश कुछ कम हुआ?
2: युद्ध अपने चरम पर था, दोनों ओर की सेनाएं जोर शोर से लड़ रही थीं, खूब तीर तलवार ढाले बर्छे सब चल रहे थे
1: जी।
2: कोई कमी नहीं थी। एक योद्धा के जाने से सेना रुक नहीं जाती, वो तो अपने बराबर जिस उद्देश्य को लेकर चली है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करती है
1: जी।
2: तो गढ़ा की सेना भी अपना पूरा दल बल के साथ में लगी हुई थी
1: जी।
2: युद्ध जारी था। अब धीरे धीरे दिन ढलने लगा
1: जी।
2: सूरज की रोशनी भी अब मध्यम हो चली थी
1: जी।
2: पर गढ़ा की सेना का जोश कम नहीं हुआ था
1: जी।
2: लगातार तीर भाले तलवार की आवाजें गूंज रही थी। दोनों ओर से कई सौ सैनिक मारे जा चुके थे
1: जी।
2: फिर भी युद्ध तो अपनी गति पर था
1: जी। तो क्या जब शाम हो चुकी थी तो शाम के बाद भी, सूरज ढलने के बाद भी तब युद्ध होता था?
2: नहीं, जैसा कि पुराने युद्धों में नियम है
1: जी
2: कि शाम ढलने के बाद युद्ध नहीं होगा
1: जी।
2: आपने कभी ध्यान दिया हो तो भारतीय परंपरा में युद्ध जैसा कोई शब्द ही नहीं है।
1: अच्छा।
2: वास्तव में युद्ध एक अधूरा शब्द है, पूरा शब्द है युद्ध कला।
1: अच्छा।
2: युद्ध को भी एक कला के तौर पर देखा जाता है और कला में हमेशा नियम होते हैं।
1: नियम होते हैं
2: और सभी को उसका पालन करना होता है।
1: क्या बात है।
2: इसलिए युद्ध में जो नियम रख दिए जाते हैं कि जैसे कि शाम को नहीं युद्ध लड़ना है, सूरज ढलने के बाद युद्ध नहीं होगा
1: जी।
2: सूरज ढलने के बाद आपस में कोई एक दूसरे को नहीं मारेगा, या युद्ध के समय किस किस प्रकार के नियमों का पालन करना होगा, ये सब सुनिश्चित होता है। इसलिए हम बहुत सारे युद्धों में ऐसा देखते हैं कि जब भारतीय युद्ध लड़ते थे तो वो नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे
1: जी।
2: और उसके कारण कई बार हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी पराजय भी हमको झेलनी पड़ी
1: जी।
2: लेकिन नियमों पर अडिग रहे और कभी भी उन्होंने नियमों को नहीं तोड़ा
1: जी।
2: तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जब शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा, तो अब युद्ध इस दिन का यानी 23 जून का
1: जी।
2: अब समाप्ति की ओर था
1: जी।
2: पर युद्ध बराबर तेजी से लड़ रहे थे, हालांकि काफी सारे सैनिक मारे जा चुके थे
1: जी।
2: गोंड सेनापति भी

0: तभी वो कला कहलाती है। और भारतीयता में ये बात कही गई कि सूरज ढलने के बाद युद्ध कला जारी नहीं रहेगी, हथियार रख दिए जाएंगे और जो लोग थोड़ी देर पहले तक सूरज की किरणों में एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू होते थे वो वहां पर अपनी अपनी तलवारें अपने म्यान में डाल दिया करते थे। तो ये कितनी वाकई अद्भुत बात है युद्ध कला की।
1: तो इस दिन का युद्ध समाप्त होने को था, दोनों सेनाएं खूब जोर शोर से लड़ रही थीं, लेकिन इस तरफ देख रहे थे कि सूरज ढलने को था
0: जी।
1: और बस गढ़ा की सेना ने कमाल दिखा दिया, मुगल सेना को पीछे धकेल ही दिया।
0: वाह।
1: नरे की घाटी से आसफ खां की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया और इस तरह आक मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद बची कुची सेना लेकर घाटी से वापस भाग गए और रानी दुर्गावती की विजय हुई।
0: तो पूजा जी, क्या जो विजय थी, जो 23 जून को जो विजय हुई, ये इसके पीछे रानी की कूटनीति का ही कमाल था? क्योंकि पहले तो दूसरी तरफ से आने वाली थी, फिर रास्ता बदला और उस तरफ से आई जहाँ के उस पूरे इलाके का उनको ज्ञान था और जो ऊंची ऊंची जगहों पर आपने कहा कि हाथी जैसे जीव के ऊपर जब बैठ करके ऊपर से वार किया जाता है तो वो विरोधी के लिए मुश्किल होता है, तो फिर तो हाथी इनके पास भी थे। लेकिन रानी ने दक्षता विशेषज्ञता ये दिखाई कि वो घाटी में बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पर उन्होंने अपने सैनिकों को और शूरवीरों को भेजा, तो क्या इस कूटनीति से उनको लाभ मिला?
1: प्रकृति की जानकारी होना गोंड जनजाति की विशेषता है
0: जी।
1: और यही विशेषता इस पल पर उनके काम आई। जब उनके पास एक बहुत छोटी सेना थी, आकस्मिक आक्रमण हुआ था, तो ये सब जानकारियां उनके लिए तो जैसे सकारात्मक ही थी
0: जी।
1: और रानी ने अपने पराक्रम से, अपने संकल्प से ये कर दिखाया कि इतनी छोटी सेना होते हुए भी उन्होंने एक विशाल सेना के ऊपर विजय प्राप्त कर ली।
0: वाकई ये कमाल की बात है। और देखिए श्रोताओं, कितनी अद्भुत ये बात है कि यदि हमें अपने इलाकों के बारे में बहुत अच्छे से पता हो, ख़ास तौर से जब हम उस दौर की बात करें, राजाओं की बात करें, तो राजा सिर्फ अपने महल में बैठकर ही राजकाज नहीं किया करते थे। जब तक कि वो रानी दुर्गावती की तरह बाहर नहीं घूमते थे, अपने इलाके में नहीं जाते थे, तब तक उन्हें ये जानकारी हो ही नहीं सकती थी कि किस तरफ नदी है, कहाँ नदी का घाट है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ घाटी है और कहाँ आने जाने का रास्ता है। और यदि ये जानकारी रानी के पास नहीं होती तो निश्चित रूप से इस युद्ध में उनकी हार हो सकती थी, क्योंकि बहुत ही कम सेना थी रानी दुर्गावती के पास। अदम्य साहस और शौर्य तो था ही, लेकिन बहुत सटीक जानकारी थी युद्ध कौशल होने के साथ साथ। फिर वहां उन्होंने कूटनीति का भी प्रयोग किया, एक ओर मां नर्मदा का उन्हें आशीर्वाद मिला, दूसरी ओर घाटी थी, और फिर बाकी काम उन सभी लोगों की वीरता ने कर दिखाया। तो मैम, जैसे कि आपने ये कहा, आईना अकबरी में भी 23 जून और 24 जून की इस लड़ाई का उल्लेख मिलता है। 23 जून को तो विजय हो ही गई थी और क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है तो 24 जून की बात तो हम अपने अगले अंक में करेंगे, लेकिन क्या कोई और भी हमें साक्ष्य मिलता है जो इस युद्ध का उल्लेख करता हो?
1: जी हाँ, गढ़ा के गोंड राज्य के बारे में जानने के लिए एक बहुत प्रमाणिक स्रोत है। रामनगर मंडला में एक शिलालेख लगा है जिसमें गढ़ा के गोंड राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। इसी शिलालेख में रानी की विजय के बारे में भी एक श्लोक है।
0: वाह।
1: ये श्लोक संस्कृत में है और श्लोक इस प्रकार है कि अक्षय हीणनीय अमृत भूत लेन यातम रणे तेन महाभटेन बल विजित्या अपि समस्तम अस्य दुर्गावती भीम पराक्रमेण। यानी कि जिस महाभट्ट ने युद्ध में अक्षिणी सेना को अमृत की तरह भूमि पर प्रवाहित कर दिया और बल को जीतने के बाद भी उसकी दुर्गावती भीम पराक्रम से संपूर्ण शक्ति को नष्ट कर दिया, ऐसी दुर्गावती को प्रणाम।
0: वाह। तो मतलब और भी साक्ष्य मिलते हैं आईना अकबरी के अलावा भी, मध्य प्रदेश में ही मंडला में साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं, जाकर देख सकते हैं कि उस लड़ाई के बारे में ये स्पष्ट वहां पर अभिलेखित है, वहां पर उल्लेखित है कि रानी दुर्गावती ने मुगल सेना को पराजित किया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। डॉक्टर पूजा सक्सेना पुरातत्वविद हमारे साथ लगातार पिछले कुछ एपिसोड से बनी हुई हैं हमारे कार्यक्रम में और हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं गोंड राजवंश के बारे में, रानी दुर्गावती के बारे में। आगे भी ये कहानी जारी रहेगी, आगे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कुल इस युद्ध का 2 दिन का उल्लेख मिलता है। यदि तारीख की बात करें तो आज से 459 साल पहले की बात थी, 23 और 24 जून 1564 को ये युद्ध लड़ा गया। जैसे कि डॉक्टर सक्सेना ने हमें बताया कि पहले ही दिन रानी दुर्गावती ने मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और मुगल सेना वहां से भागने को मजबूर हो गई। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, ये पूजा जी से जानेंगे हम अपने अगले अंक में। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए देश के चैनल देश के लिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। अगले कार्यक्रम की कीजिए प्रतीक्षा बस एक अंतराल के बाद।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: स्वस्थ जीवन का आधार है स्वस्थ मन, मस्तिष्क और शरीर। योग हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है और मन मस्तिष्क को भी संवारता है, सहेजता है और उसे सुदृढ़ बनाता है। इसी विषय पर आधारित प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम योग संवाद।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में योग वासिष्ठ की दिव्य कथा के वैराग्य प्रकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें श्री राम के वैराग्य की गहन अनुभूति प्रवाहित है। संपूर्ण ऐश्वर्य, शक्ति और वैभव से युक्त होते हुए भी जब मन संसार से विरक्त हो जाए, जब हर सुख असार लगने लगे, जब ये जगत क्षणभंगुर और माया मात्र प्रतीत हो, तब जो स्थिति उत्पन्न होती है वही है श्री राम की वैराग्य दशा। आज के इस अंक में हम उसी भावभूमि को समझने का प्रयास करेंगे, वो विरक्ति जो पलायन नहीं बल्कि सत्य की खोज का प्रारंभ है, वो प्रश्न जो मन को विचलित नहीं बल्कि जागृत करते हैं। तो आइए उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं जहां श्री राम का वैराग्य हमें अपने ही जीवन के प्रश्नों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। योग संवाद में आज की चर्चा श्री राम की वैराग्य दशा पर, और इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: श्री राम की वैराग्य दशा पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले अंक में हमने बात भी की कि तीर्थ करके जब लौटते हैं भगवान श्री राम
2: जी,
1: तो उनकी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल परिवर्तित हो गई है, वो बहुत कमजोर और सोच में रहने लग गए हैं और इससे पिता उनके बहुत चिंतित हैं
2: जी।
1: तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि तीर्थ करने के बाद श्री राम की स्थिति कैसी है, ये आप हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: आप इसमें देखिए, जब द्वारपाल जाता है राम जी को बुलाने के लिए
1: जी,
2: तो रामचंद्र जी के भवन में जैसे ही वो द्वारपाल पहुंचता है, देखता है कि राम जी अपने भवन में अमन होकर बैठे हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे जो भ्रमर होता है रात को कमल में बंद होकर उदास हो जाता
1: जी, जी,
2: है ना, उसकी दुनिया सिमट जाती
1: जी,
2: है
1: जी, जी, जी।
2: ऐसे ही रामचंद्र जी जो है, जो पूरा जगत जो कहते हैं ना, मैं जहाँ उस ब्रह्म का दर्शन करने का सामर्थ्य उनमें है, वो एक उदासीन मन के साथ अमन की स्थिति में बैठे हैं। अब कहते हैं कि यात्रा से लौट के आने के बाद उनका मन उदास हमेशा रहता है, और जो वो वैराग्य की स्थिति बता रहे हैं वो देखिए, कहते हैं कि वे बार बार खिन्न हो उठते हैं और उनके आंख आंसू से भर जाते हैं।
1: अच्छा।
2: जब जगत देखते हैं तो रो पड़ते हैं
1: जी, जी, जी।
2: जिसको कबीर दास जी भी कहते हैं, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। तो ऐसे जब कोई तत्वदर्शी ऐसा होता है तो वो जगत को देखता है, कहता है देखो आप क्या कर रहा है, आदमी क्या करने आया था
1: जी,
2: क्या
1: जी,
2: कर रहा है
1: जी, जी,
2: अवलो नसानी अबना नसे।
1: हाँ, हाँ,
2: जी। तो राम जी कहते हैं कि संपत्ति से विपत्ति,
1: अच्छा
2: ये उनके वैराग्य की स्थिति है कि जितनी विपत्तियां हैं वो सब संपत्ति से आ रही हैं।
1: अच्छा।
2: और जबकि संसार ठीक उसके उल्टा सोचता है कि सारी विपत्तियों को दूर करने के लिए संपत्ति प्राप्त करना चाहता है।
1: ये एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि संसार में हर व्यक्ति जो काम कर रहा है या जिस लिए जी रहा है, उसके जीने का एक बड़ा मुख्य ध्येय है संपत्ति। और क्या कह रहे हैं श्री राम?
2: कह रहे हैं कि संपत्ति से विपत्ति, घर अथवा विभिन्न चेष्टाओं से क्या क्या होने वाला है। कहते हैं कि जितनी भी विपत्तियां हैं उस विपत्तियों का एकमात्र कारण संपत्ति है। और आप कभी देखिए तो आप एक बच्चे को कभी जब आप देखें, छोटे बच्चे को
1: जी,
2: तो वो जिस आनंद में होता है उसके पास कोई संपत्ति तो नहीं है, ठीक है, लेकिन संपत्ति नहीं है इसलिए कोई विपत्ति भी नहीं है, तो अकारण वो हंसता है, है ना,
1: बिल्कुल
2: है ना? लेकिन जब हम संपत्ति के महत्व को जैसे जानते हैं
1: वैसे वैसे दुखी होते जाते हैं
2: और विपत्तियां घेर लेती हैं।
1: जी, जी,
2: संपत्ति
1: जी।
2: आती है तो फिर आप संपत्ति की रक्षा करने की बात करते हैं, इसको इसके द्वारा ही अपने जीवन में आप सुख समृद्धि ला सकते हैं, ऐसी भावना आपके अंदर आती है। जब तक संपत्ति नहीं थी तब तक ये भाव भी नहीं था। तो वो कहते हैं कि ऐसा होता है और वो कहते हैं यहाँ जगत में सब कुछ मिथ्या है, और ये कहकर वो चुप हो जाते हैं और अकेले बैठ जाते हैं। ये उनकी स्थिति है,
1: ये
2: है
1: ना।
2: तो एकदम किसी विषय में उनका कोई आसक्ति नहीं है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो अक्सर मौन हो जाते हैं। तो ये सब उनकी मतलब वैराग्य की स्थिति है, जो बार बार उन्हें सोचने पर विवश कर रही है कि वास्तव में है क्या ये संसार
3: जी, जी, जी।
2: और तो, इसको लेकर के आपस में वो जूझ रहे हैं जी।
3: हाँ, हाँ, तो श्री राम की जो ये स्थिति है इस पर विश्वामित्र जी क्या कहते हैं?
2: इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं, रघुनंदन श्री राम की जो ये स्थिति है, ये स्थिति न तो किसी मोह से उत्पन्न हुई है और न किसी आपत्ति से। मोह जब होता है तो आपको आसक्ति होती है, और आपत्ति जब आपके जीवन में दिखाई देता है तो आप उस चीज से बचना चाहते हैं, विरक्ति होती है। लेकिन तो आसक्ति और विरक्ति का मूल कारण क्या है? मोह और आपत्ति। जैसे आपको किसी विषय से आपत्ति दिखाई दे रही है या उसमें विपत्ति दिखाई दे रही है तो उससे आप वैराग्य लेते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि इससे जीवन में कष्ट आता है। तो ये कहते हैं कि राम जी की जो स्थिति है, जो संसार के तमाम लोगों की स्थिति है, कि वो जो आपत्ति जो उन्हें होता है और जो आसक्ति होता है और इसकी वजह से उनके जीवन में वैराग्य आता है, वो राम की स्थिति नहीं है। वे विवेक और वैराग्य से संपन्न है, इसलिए उन्हें मोह नहीं बोध प्राप्त हुआ है।
3: अब तो क्या ये आसक्ति विपत्ति और आपत्ति की आपने जो बात की, इसको देखने से वैराग्य होता है क्या?
2: बिल्कुल, वैराग्य आपत्ति विपत्ति संपत्ति नहीं, उसके बोध से होता है। ये आपने बहुत सूक्ष्म सवाल किया। कई बार क्या होता है, जैसे हम जान भी लें, सभी को ये पता हो जाए कि ये मार्ग, जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं एक पंक्ति कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब पर हरि रघुवीर हैं भजहु भजहि जे संत। तो उन्होंने लिख दिया कि ये सबसे ऊपर रघुवीर हैं। ये भरद्वाज जी भी इस बात को कहते हैं कि कैसे उन्होंने इस संकटपूर्ण जीवन को कैसे जिया, वो कथा मुझे कही है। तो कहते हैं उसी का भजन संत करते हैं। तो भजन का अर्थ हम लोग राम नाम जपना समझ लेते हैं। राम नाम जपना नहीं, राम का नाम जिस नाते जपा जा रहा है उस कर्म को जीवन में अंगीकार करना, ये है भजन।
3: बहुत सुंदर।
2: ये भजन नहीं है कि आप उनके नाम को लें,
3: बल्कि
2: आप देखिए कितनी सुंदर बात है। कभी कभी कथा आती है, कई लोग कहते भी हैं कि रावण कहता है कि तामसी तन से राम का नाम लिया नहीं जाता।
3: ओहो,
2: जी
3: जी।
2: और कई बार था आती भी है, बड़ा रोचक तरीके से लोग कहते हैं कि जब मंदोदरी कहती है कि आपको तो वेश बदलना आता है, अगर सीता में इतनी ही आसक्ति आपके पास है तो क्यों नहीं राम का वेश धारण करके आप सीता के सामने जाते हैं और वो आपके साथ हो लेंगी।
3: जी, जी, जी।
2: पत्नी कह रही है।
3: हा, हा, हा।
2: तो वो कहता है कि मैंने ये प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही मैंने राम का वेश धारण किया मुझे पराई स्त्री माँ दिखती है।
3: ये प्रसंग सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाता है।
2: रोमांच हो रहा है।
3: पहले भी मैंने सुना है।
2: अब आप
3: कि रावण ऐसा कहता है,
2: कहते कहते रोमांच हो गया कि अगर ऐसी स्थिति है तो सोचिए उस आत्मी का अंतःकरण मतलब और कैसा होगा,
3: कि वो स्वरूप लेने भर से उसको पराई स्त्री
2: माँ नजर आती है। तो अगर
3: ये राम तत्व है,
2: तो ये राम तत्व है।
3: हाँ।
2: तो इस दृष्टि के साथ जब भी कोई शरीर धारण करेगा तो वो क्या भगवत्ता उससे प्रकट नहीं होगी? कौन है जो उससे विरोध कर सकता है?
3: जी, जी,
2: है ना?
3: जी, जी,
2: तो ऐसी स्थिति है। तो जो आपने कहा कि वशिष्ठ जी यही कहते हैं कि जो ये आसक्ति आपत्ति मतलब के दर्शन नहीं, इसके बोध से आपको वैराग्य होगा।
3: अच्छा, इसमें विश्वामित्र जी बीच में कहीं पर, मैं पलट रही थी इसके पन्ने, तो दिखता है कि वो सत्यता मुदिता और प्रज्ञा के विषय में भी बात करते हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो ये क्या है और वो क्या कह रहे हैं?
2: वो कह रहे हैं कि अगर हमारे उपदेश का वास्तविक बोध हो जाए तो रामचंद्र जी सत्यता की प्राप्ति करेंगे। अब देखिए, सत्यता में कहते अमृत पिए हुए पुरुष की भांति। अब इसमें इशारा क्या है? अब जैसे अमृत की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कोई अमृत है।
3: मुझे लगता है कि पहले आप ये बताएं कि उनका कथन क्या था पूरा।
2: जी, उनका कथन ये था कि जो रघुनंदन ये राम हैं, हम लोगों की भांति परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे जो उपदेश मैं कर रहा हूं, अगर ये उन्होंने सुन लिया।
3: अच्छा,
2: है ना? तो हम लोगों की भांति मतलब जैसे विश्वामित्र जी परम पद में प्रतिष्ठित हैं या ये अपने वशिष्ठ जी परम पद में प्रतिष्ठित हैं, तो ऐसी राम की स्थिति होगी, क्योंकि जो उनकी ये दशा हुई है वो संसारियों की तरह नहीं हुई है, है ना, कि वो आसक्ति और आपत्ति से उत्पन्न हो गई हो, विपत्ति से उत्पन्न हो गई हो, ये तो बोध से उत्पन्न हुआ है। तो बोध से उत्पन्न होने के बाद अगर वो उपदेश सुन सकें तो वो फिर ऐसी स्थिति बनेगी। और उसमें कहते हैं कि अमृत पिए हुए पुरुष की भांति, यानी जिसका मृत्यु भय समाप्त हो गया। अमृत पीने का मतलब अमृत जैसी कोई चीज नहीं है कि जो पी के जिसके चित्त से मृत्यु का भय समाप्त हो गया।
3: हाँ।
2: वो सत्यता को प्राप्त हुआ। मृत्यु का भय समाप्त कभी भी शरीर से तो नहीं होगा, क्योंकि शरीर ने जन्म लिया है तो मृत्यु तो रहेगी, लेकिन इस शरीर से अगर सत्यान्वेषण हो गया और सत्य का बोध हो गया
3: जी।
2: तो वो सत्य जो है आपको मृत्यु भय से जन्म और मृत्यु और पुनर्जन्म, ये जो तीन तरह की संकल्पना लेकर के हम लोग संसार में व्यवहार करते हैं, इससे पूरी तरह से मुक्त कर देगा। तो वो सत्यता, क्योंकि सत्य शरीर नहीं है, सत्य शरीर ही है जिसने शरीर को धारण कर रखा है। जैसे कहते हैं हम लोग ना कि धर्मो रक्षति रक्षितः, कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। तो ऐसे में क्या है वो, इसका अर्थ कि अगर आपके जीवन की रक्षा हो पा रही है तो इसलिए हो पा रही है कि आपने धर्म की रक्षा जाने अनजाने में की है। तो ठीक ऐसे ही शरीरी शरीर में है, इसलिए शरीर की सारी क्रियाएं हो रही हैं, जो इसका बढ़ना है, डेवलपमेंट है, या जो साइको मोटर एक्टिविटीज हैं, जो ये सारी चीजें हो रही हैं, ये हो किसकी वजह से रही है, शरीर की वजह से, उस निर्गुण निराकार की वजह से हो रही हैं, जिसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी दिखाई दे रहा है वो उसकी वजह से दिखाई दे रहा है, ये आत्मतत्व है। तो कहते हैं कि ये जो जान लेगा वो अमृत पिए हुए पुरुष, यानी ऐसा पुरुष जिसको मृत्यु का भय नहीं है। और देखें इसी को हम कहते हैं अभयता। भय जितने भी हैं उस भय के पीछे आप देखेंगे तो मृत्यु ही किसी न किसी रूप में आपको दिखाई देगी। मृत्यु मतलब शरीर की मृत्यु ही नहीं हुई, आपके विचारों की मृत्यु, जो मान सम्मान यश जो कुछ भी आपने अपने शरीर या संसार के व्यवहार या संसार की लर्निंग से आपने सीख रखा है, उन सब में कहीं कहीं मिटने का जो भय होता है, जैसे मृत्यु शरीर के मिटने का भय है, तो ऐसे में कोई भी चीज जो आपने अर्जित की है सुख के लिए उसके मिटने का भय, तो एक प्रकार की मृत्यु ही है वो कह सकते हैं। तो वो कहते हैं क्षरण है, तो वो ऐसी स्थिति आती है उस सत्यता को जो त्रिकाल बाधित है। तो त्रिकाल बाधित कोई अगर है तो ब्रह्म रूपता है, शरीर त्रिकाल बाधित नहीं है। शरीर पर तीनों काल का असर होता है, भूत भविष्य वर्तमान का, तीनों अवस्थाओं का असर होता है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति का। लेकिन उस चैतन्य पर जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में बना हुआ है और तीनों अवस्थाओं से अलग है, उस पर जिसको तुरिया अवस्था कहा गया मांडुक्य उपनिषद में, तो ऐसे में उस पर कोई असर नहीं होता। तो राम को वो सत्यता का बोध होगा। उसके बाद कहते हैं मुदिता, सत्य के बिना व्यक्ति मुदित नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं ना मुदित हो गया, आनंद परमानंद स्वरूपता, तो उसका आनंद अब जाने आने वाला नहीं है क्योंकि उसने सत्य को जान लिया, तो वो मुदित हो गया। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, महर्षि पतंजलि कहते हैं ये चित्त के प्रसन्नता या उसकी पवित्रता के ये सूत्र हैं कि आप पुण्यात्मा के प्रति मुदित हो जाएं। ऐसे जो सत्य के प्राप्त करने वाले लोग हैं उनको देख करके आपके अंदर मुदित भाव हो जाए, तो यानी परम आनंद रूपता हो। और प्रज्ञा की प्राप्ति, प्रज्ञा का मतलब होता है अपरिच्छिन्न ज्ञान रूपता। अब देखिए हम लोगों का जो ज्ञान है वो क्या करता है, हमको अलग करता है। परिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता मतलब अलग करना, और अपरिच्छिन्नता का मतलब कि हम अलग ही नहीं है, सब मुझ में और सब में मैं हूं, ये अपरिच्छिन्नता है। तो इसको कहा गया, हमारे ऋषियों ने कहा प्रज्ञा। तो जब ये तीनों की प्राप्ति होती है, तीनों एक क्रमिक हैं कह सकते हैं, क्रमिक गति से इनकी स्थिति आपको मिलेगी। बिना सत्यानुसंधान के, बिना सत्य बोध के आप जो है मुदिता की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, और बिना मुदिता के आपको प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रज्ञा जो है वो है आपकी अपरिच्छिन्नता। जिसको फिर मैं गोस्वामी जी की पंक्ति में सहज करूं अपने श्रोताओं के लिए कि जो आदि योगी शिव हैं, क्योंकि योग ग्रंथ पर हम बात कर रहे हैं तो हम आदि योगी शिव की बात को करें, वो कहते हैं उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि संग करहि विरोध। वो फिर वही अपरिच्छिन्नता वाली बात आ गई कि निज प्रभु मैं, सी राम में सब जग जानी, करहुं प्रणाम जोरि जुगुपानी। तो वो स्थिति होती है कि राम में पूरी सृष्टि दिखाई दे, वो स्थिति आती है तब जब प्रज्ञा आपके अंदर प्रकट होता है, और प्रज्ञा आपके सत्य और मुदिता की स्थिति आने के बाद ही होता है। तो राम जी को उन्होंने कहा कि ये प्राप्त हो जाएगा, और जब ये प्राप्त हो जाएगा तो वो परम सुख को प्राप्त करेंगे, संताप शून्य हो जाएंगे, और जो शरीर इनका ये कृष्ण दिखाई दे रहा है ये पूरी तरीके से हिष्ट पुष्ट और उत्तम कांति से युक्त हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, आजकल आप देखेंगे जो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां विकसित हो रही हैं, और बहुत सारी नई नई बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो बीमारियां हैं उसमें 75% से 80% बीमारियां आपकी साइकोसोमेटिक हैं, जो मन से आती हैं, है ना। तो मन से क्यों आती हैं, क्योंकि मन की स्थिति यही तीन की नहीं है, न मन सत्य जानता है, न मन मुदित है, न मन प्रज्ञावान है, है ना। तो अब उसमें क्या हुआ, चित्त में दोष उत्पन्न हो गया। अब उस दोष का प्रभाव ये हुआ कि प्रभाव तो शरीर पर दिखेगा, तो शरीर किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो गया। कैंसर जैसी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण माना गया है स्ट्रेस, तनाव, कि कोशिकाओं पर बार बार आप प्रहार कर रहे हैं, तो फिर अंत में वो अपना स्वरूप भूल जाती हैं। वो आपके जीवन के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आई थी, अब वो इम्यून को ही खाने लगी हुई हैं, आपको ही मिटाने पर लगे हुए हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसे कहते हैं कि शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्थिति जब उनको प्राप्त होगी तो वो फिर संताप शून्य होंगे। तो आज आदमी देखे तो संताप में है। भागवत कथा में हम कहते हैं ना कि तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो तीन ताप जो है जिससे चित्त संताप ग्रसित है, जब तक इससे आप अपने को मुक्त नहीं करेंगे, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग ही, सत्संग मतलब वही सत्य, जो सत्य का अनुसंधान जिसमें आप त्रिकाल बाधित सत्ता को जान सकें और जान करके आप फिर हमेशा अपने आनंद स्वरूप में रह सकें, और साथ ही साथ आप अपनी अपरिच्छिन्नता यानी शिवत्व का बोध कर सकते हैं। यही है सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जी जी। तो इस कथा में हम कहाँ पहुंचे हैं कि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राम फिर से वैसे हो जाएंगे
2: जी,
3: अगर मैं जो कह रहा हूँ उसको वो सुने।
2: आप जो राम के शरीर की ये दशा देख रहे हैं, जिसको देख करके तो आप
3: पिता,
2: दुखी हो
3: पिता
2: रहे हैं।
3: की चिंता वो
2: जी, तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि राम को अब योग की जरूरत है, और ये वशिष्ठ जी योग वशिष्ठ का उन्हें जो ज्ञान देंगे उसके बाद वो इस अवस्था को प्राप्त होंगे, सत्य मुदिता और मोक्ष प्रज्ञा उनको मिलेगा। तो इससे फिर वो फिर अब उनका जो शरीर है वो हृष्ट पुष्ट हो जाएगा और उत्तम कांति से युक्त हो जाएंगे।
3: अच्छा, इसी में आगे कहीं लोकव्यापी निर्गुण और सगुण ब्रह्म की चर्चा होती है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि निर्गुण और सगुण ब्रह्म का बोध कैसे होता है, कैसे हो सकता है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, प्रकृति के तीन गुण हैं, क्योंकि व्यवहार तो प्रकृति के साथ प्रकृति में ही होगा, है ना। तो कहते हैं उसमें जो सत्वगुण है, उस सत्वगुण का गुण प्रकाश है। आजकल के मतलब समय में बहुत प्रचलित है एनलाइटेंड, कहते हैं कि एनलाइटेंड हैं, एनलाइटेंड गुरु हैं। अब एनलाइटेंड गुरु का मतलब समझते हैं लोग कि कोई दिव्यता उनमें आ गई, दिव्यता नहीं, उनके पास प्रज्ञा है, वो अपरिच्छिन्नता का बोध है, वो अपने को अलग नहीं कर पा रहे हैं। अब उनके अंदर परिच्छिन्न भाव नहीं है, है ना, वो श्री राममय की स्थिति में जगत को देख रहे हैं
3: जी।
2: तो कहते हैं कि सत्व गुण से युक्त होने पर जो लोकव्यापी, लोक में जो व्याप्त है निर्गुण सगुण, ये दो संप्रदाय बने
3: जी,
2: निर्गुणिया और सगुणी, सगुण वाले संप्रदाय, कुछ लोग सगुण उपासक हो गए, कुछ निर्गुण उपासक हो गए, लेकिन कहते हैं ये दो नहीं है। तो कहते हैं कि ये सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, ये अभेद है, लेकिन ये जानते कौन है, बुद्ध पुरुष।
3: अच्छा।
2: जी, और ये वेद कह रहा है, ये स्थिति है। तो वो कहते हैं कि जब ये तत्व चिंतन होगा तब ये भेद मिटेगा। तो जो लोक व्यापी ये सगुण निर्गुण रूप ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से संपन्न जैसे वो होंगे, वैसे जो ये भेद की स्थिति है, वो जो आज जगत को देख रहे हैं, जगत का व्यवहार देख रहे हैं, जिन कारणों से उनके चित्त में संताप हुआ है या जिस पर विचार करने लगे हैं, या जो कहते हैं ये वैराग्य उत्पन्न हुआ है, तो वो जीवन मुक्त हो सकेंगे। और जीवन मुक्त होने के बाद अभी वैराग्य उत्पन्न हुआ तो उन्होंने क्रिया से अपने आप को अलग कर लिया, तब वो बोध के साथ जो है समस्त क्रियाओं को ऐसे करेंगे जैसे कीचड़ में रहने वाला कमल कीचड़ से सर्वथा मुक्त है।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ये स्थिति उनकी होगी।
3: ये बता रहे हैं विश्वामित्र
2: जी।
3: दुख परंपरा के उत्पादन की बात भी इसमें की गई है। मैं चाहती हूँ इस कथा को आगे बढ़ाते हुए इस बिंदु पर आप आइएगा, तो वो भी एक जगह दिखता है कि दुख परंपरा के उत्पादन की बात दिखाई देती है। तो क्या कारण है जीवन में दुख का?
2: अब जब राम जी को ऐसी स्थिति में देखा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि महाबाहु राजकुमार, तुम बड़े शूरवीर हो, तुमने उन विषय रूपी शत्रुओं पर विजय पा ली है। अब देखिए, शूरवीर होने का मतलब किसी व्यक्ति को जीतना नहीं है, किसी स्थान को जीतना नहीं है, विषय जो बार बार उन विषयों को अपना समझ लेना या अपना बनाने की चेष्टा करना, ये है शत्रुता। आज देखें तो किसी प्रकार का जो विश्व में ये जो शत्रु भाव है, वो शत्रु भाव एक्चुअल में विषय रूपी विषयों को पाने की आकांक्षा से उत्पन्न हो रहा है
3: जी।
2: तो वो कहते हैं कि विषय रूपी शत्रुओं पर तुमने विजय प्राप्त कर ली है। राम को उनके स्वरूप की स्मृति दिला रहे हैं कि तुम ऐसी स्थिति में क्यों हो, क्योंकि अब तो तुम ऐसी स्थिति में हो कि कोई विषय तुम्हारे आकर्षण और विकर्षण का कारण ही नहीं है। सामान्यतया देखें आप तो जो राग और वैराग्य ये दो शब्द आते हैं ये आकर्षण और विकर्षण के संदर्भ में आते हैं या एक दूसरे के सापेक्ष इन्हें समझा जाता है कि संसार में जिनको राग है उन्हें अपने आत्मस्वरूप से वैराग्य हो गया, वो रूप के ही राग में फंसे हुए हैं, और जिनको आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया वो संसार से राग छोड़ के वैरागी हो गए। यही

0: है ना, और अगर उसके अस्तित्व को खतरा है तो आपने अधर्म का रास्ता चुन लिया है,
1: चुन लिया
0: जो है। राक्षस यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ तो प्रकृति का पोषण है, शोषण नहीं है। और आज हम लोगों ने क्या किया, प्रकृति का शोषण करना शुरू कर दिया। जैसे हमारा बौद्धिक ज्ञान विकसित हुआ, तो ये जो अभी हमने सत्य और मुदिता और प्रज्ञा वाली बात नहीं रही, तो परिणाम ये हुआ कि हमने समझ लिया कि अब तो प्रकृति की सारी शक्तियों के अधिपति हम हो गए, और हम उसका लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा खामियाजा आने वाले समय में वो पीढ़ियां भुगतेंगी। डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन सस्टेनेबल होना चाहिए, सतत होना चाहिए। अगर आपके पूर्वजों ने प्रकृति के नियमों या प्रकृति के धर्म का पालन किया तो प्रकृति आपके जीने योग्य रही, लेकिन आप तो इतने बुद्धिमान हो गए कि आपने प्रकृति को ऐसा बना दिया कि कल आने वाली पीढ़ियां जन्म लेने के साथ ही वो सांस लेने में संकट में हों। कितने मतलब बड़े मतलब राक्षस कह सकते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति तो है।
1: इसलिए इन दिनों संवहनीय विकास की जो बात चल रही है।
0: जी बिल्कुल,
1: इसीलिए
0: तो कहते हैं विकास ऐसा होना चाहिए कि आने वाले समय में जो आए उनको भी ये धरातल वैसा मिले जैसा आपको मिला था।
1: अच्छा, इसमें भोग के साधनों पर भी चर्चा है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है?
0: अच्छा, भोग के साधनों,
1: लेकिन इसके पहले मैं चाहती हूँ इस कथा को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लें, क्योंकि वो कथा भी हमारे जो श्रोता है उन तक पहुंचती रहे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो विश्वामित्र जी ने फिर राम जी से कहा कि तुम्हारे जो नेत्रों में जो चंचलता दिखाई अभी दे रही है उसको त्याग कर बताओ कि मोहित क्यों हो रहे हो। क्योंकि राम जी को यहाँ ये दो लोग मतलब गुरु के रूप में हैं, एक वशिष्ठ जी और दूसरे विश्वामित्र।
1: विश्वामित्र
0: उन्हें कर्म शास्त्र का बोध कराने के लिए आए हैं, कर्म शास्त्र के लिए उत्प्रेरित करना है, क्योंकि कर्म शास्त्र छोड़ चुके हैं। लेकिन कर्म शास्त्र बिना तत्व ज्ञान के,
1: जो भूमिका गीता में श्री कृष्ण की है वो यहाँ विश्वामित्र की है, और जो स्थिति वहाँ अर्जुन की वो यहाँ श्री राम की हो गई,
0: कह सकते हैं तुलनात्मक रूप सापेक्षता को समझाते हुए कह सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं, क्योंकि वहाँ यहाँ तो कृष्ण ही वो रूप प्रकट कर रहे हैं जो अर्जुन ने किया है वहाँ, है ना। तो खैर, तो ये कहता हूँ कि वो कहते हैं कि त्याग कर तुम मोहित क्यों हो रहे हो, तुम्हारे इस मोह और भ्रम का क्या कारण है, ये राम जी से पूछते हैं। तो राम जी बोलते हैं कि इस सांसारिक विषयक आस्था में मेरा मन बिल्कुल नहीं जाता। संसार में जो आस्थावान लोग दिखाई देते हैं, जब उनको मैंने देखा और उनकी दशा देखी, तो मेरा तो उस दशा को देखने के बाद, कहते ना कुछ जो समझदार लोग होते हैं वो ठोकर से गिरते नहीं है, ठोकर देख के समझ जाते हैं, है ना। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो ठोकर खा के भी नहीं संभलते, तो राम जी उस तरह के मैं देखा, और संसार में जितने भी भोग हैं ये सब के सब अस्थिर हैं, क्षणभंगुर हैं। राम जी को इसका बोध है, हम लोग इसको कहते हैं
1: बिल्कुल,
0: और निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं उन्हीं भोगों के प्रति, नए नए भोगों के प्रति हमारे अंदर विचार चल रहे होते हैं कि अब गाड़ी थोड़ी बड़ी कर ली जाए, घर थोड़ा बड़ा बना लिया जाए। अब इसके पहले जब ये घर नहीं था तो ऐसे ही घर की कल्पना थी और लगता था कि ये घर मिल जाता तो भगवान तेरी बड़ी कृपा होती, इसके लिए मन्नतें कर रहे थे। अब जब ये घर आ गया तो फिर ये भी छोटा पड़ने लगा, फिर और बड़े घर की कल्पना होगी। तो कहते हैं कि हम लोग भोगों की क्षणभंगुरता के बारे में बोलते हैं, क्षणभंगुरता हमको दिखती नहीं है। अगर दिखे तो बुद्ध की स्थिति, जैसे बुद्ध ने राज्य ही तो छोड़ा था,
1: बिल्कुल
0: है ना। वो जबकि जो चीज हम पाना चाहते हैं या जिसके लिए आज दुनिया लड़ रही है वो सारी चीज छोड़ के वो चले आए। आप देखें अयोध्या को, तो अयोध्या में भी राम जी राज्य ही छोड़ के जा रहे हैं, जंगल में तनिक भी उनको राज्य में आकर्षण नहीं है। तो क्योंकि उनको इस तत्व का बोध हो चुका था कि ये सारे भोग अस्थिर हैं, इनका स्वभाव जो है वास्तविक इनका रूप है, इनकी क्षणभंगुरता है, और आपत्तियों के स्वामी हैं, ये सब विपत्ति में डालते हैं। अब देख कितनी उल्टी बात है, सांसारिक दृष्टि से आप देखें तो संसार का व्यक्ति इनसे अपनी विपत्ति दूर करना चाहता है भोग के साधनों से, क्योंकि वो विपत्ति में इसलिए है कि ये साधन नहीं है उसके पास।
1: और श्रीराम कह रहे हैं कि आपत्तियों का साधन,
0: ये कहते हैं
1: मतलब जो सांसारिक संपदाएं हैं इनका मनुष्य पर प्रभाव अच्छा नहीं है, ये कह रहे हैं वो।
0: हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब पाप स्वरूप है, मतलब आपको पाप से पाप करवाएगा। अच्छा, पाप का मतलब होता है कि पाप हम किसी दूसरे के संदर्भ में करते हैं, दूसरे के संदर्भ में तो करते ही करते हैं, अपने प्रति भी तो पाप करते हैं कि हमने अपने जीवन को एक ऐसे क्रिया में लगा दिया जिस क्रिया का कोई अर्थ नहीं है। जैसे आप देखें जीवन भर जिन चीजों को हम संकलित करते हैं एक दिन उसी को छोड़ के जाते हैं, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन फिर भी जीवन भर संकलन लगा हुआ और क्या क्या नहीं करता उस संकलन के लिए, है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार की अज्ञानता है कि नहीं। अगर आप देखें तो जो प्रकृति है, प्रकृति ने कहा भी गया है कि आवश्यकता पूरी करने का सामर्थ्य इस धरती पर जितने भी जीव हैं उन सब की आवश्यकता पूरी करने में पृथ्वी समर्थ है, लेकिन एक व्यक्ति की आकांक्षा पूरी करने में पूरा ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाएगा।
1: बिल्कुल, लालच को तो नहीं पूरा किया
0: नहीं
1: जा
0: सकता, इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता, और हर आदमी इच्छाओं को ही पूरा करने में लगा है जो कभी पूरी ही नहीं होती। तो ये बात कहने सुनने का नहीं है, ये बात निरंतर चिंतन का है, और राम जी ने तीर्थयात्रा के दौरान यही चिंतन चिंतन किया और देखा कि लोग बात तो वो सारे कर रहे हैं जिन बातों को हम कहते हैं वो भी कह रहे हैं, लेकिन जी रहे हैं जो व्यवहार कर रहे हैं उस ज्ञान की बातों से बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं, तो वो उनकी स्थिति है। और कहते हैं कि मूढ़ बुद्धि लोग इस संसार के पदार्थों में सुख न होने पर भी सुख मानते हैं और उसी के लोभ से आकृष्ट होकर इधर उधर भटकते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। हाँ। और ये बात क्या आज नहीं है समीचीन? आप देखें जिन जिन में आपने सुख देखा था, अगर वो सुख था कुछ समय के लिए था, क्षणिक था, तो फिर वो क्षणभंगुरता हुई ना, तो आपको आगे जिन जिन चीजों के न होने की वजह से आज आप दुखी हैं, तो उस दुख का भी शमन इस ज्ञान से करना था, पूर्व के अनुभव से करना था, लेकिन वो करने के बजाय आपके जीवन में वो चीजें नहीं है, उसके लिए आप परेशान और दुखी हो रहे हैं। तो ये भोगों का जो वास्तविक स्वरूप है वो राम जी ने बताया कि यहाँ पर लोग इधर उधर भटकते रह रहे हैं लोभ के कारण, जबकि सच ये है कि ये सारे जो भोग हैं ये पाप में डालते हैं, ये मनुष्य को विपत्ति में डालते हैं, और आपत्तियों का स्वामी कहा गया इन्हें, ये स्वामित्व है इनमें आपत्ति लाने का, और हम लोग आप विपत्ति मिटाने का स्वामी बना के बैठे हैं,
1: बनाकर बैठे हैं और उसी को जुटाने में पूरा जीवन खर्च
0: लगाए हुए हैं। जी,
1: तो बहुत संक्षेप में एक बात आप बताएं कि चूंकि श्री राम कह रहे हैं कि जो सांसारिक संपदाएं हैं उनसे विपत्ति आती है, तो संपदा को किस दृष्टि से मनुष्य देखे?
0: बिल्कुल, सांसारिक इसका अर्थ कदापि ये नहीं हुआ कि कोई ये समझ ले कि हम इसका तिरस्कार कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसके सत्य को आप जाने और अपने जीवन को जीवन मुक्त की भांति जिए, बंधन में ना जिए। वो कहते ना कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो देखिए, तो ये जैसे नदी है, नदी का कोई मार्ग नहीं है और न उसने कोई चुनाव किया है। जैसे हमारे एक मित्र है, वो नर्मदा परिक्रमा करें तो कहीं नर्मदा जी बहुत सकरी हैं, कहीं बहुत विशाल रूप है, और सागर में मिलके तो सागर हो जाती हैं। तो कहने का आशय ये है कि ये संसार की यात्रा में आप निर्विघ्न और निश्चिंत रहें, मतलब द्वंद ना पालें, क्योंकि द्वंद पाल करके आप अपने सामर्थ्य को घटा लेंगे।
1: जी जी।
0: आपसे जो होने की संभावनाएं हैं वो भी कम हो जाएंगी, और संसार की संपदाएं सदा वंचना ही करती रहती हैं। हाँ, ये राम जी कह रहे हैं कि सदा वंचना करती हैं, क्योंकि उनके वैराग्य में ऐसा उनको दिखा है। ये मनुष्यों की मनोवृत्ति को मोह लेती हैं और उनकी सगुण राशि का नाश करती हैं। अब देखिए, संसार जो है आपके सगुण को नष्ट करता है, सद्गुण का
1: जी,
0: और तरह तरह के दुख दिया करता है, दुखों का जाल बिछा देता है, धन वैभव की चिंताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, इसलिए मुझे ये आनंद नहीं देते।
1: जी, तो ये एक कारण उनके वैराग्य का है, और भी उनके मन में बहुत सी बातें
0: हैं, बहुत सारी बातें हैं जी,
1: तो वो बातें हम एक एक कर आगे सुनेंगे, क्योंकि अब इस कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है, तो इसी बिंदु पर हम ठहरते हैं और अगले अंक की प्रतीक्षा करते हैं। आपने आज बहुत ही सुंदर व्याख्या की भगवान श्री राम की वैराग्य दशा की, यही चर्चा आगे हम जारी रखेंगे अगले अंक में। आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज आपने भगवान श्री राम की वैराग्य दशा पर चर्चा सुनी। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की थी, ध्वनियांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें इस कार्यक्रम से। नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
3: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
5: नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे आज के इस बेहद खास प्रसारण भारत विभूति में। एक ऐसी श्रृंखला जिसमें हम उन व्यक्तित्वों को याद करते हैं जिन्होंने अपने विचारों, कर्मों और साधना से भारत की आत्मा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया।
4: जी हाँ, आज की ये कड़ी समर्पित है एक ऐसे योग पुरुष को जिनकी 70 वर्षों से अधिक की साधना ने योग को केवल आश्रमों और गुरुकुलों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे घर घर, देश देश और महाद्वीप महाद्वीप तक पहुंचाया। एक ऐसी तपस्या जिसमें शरीर की सीमाएं थीं, पर आत्मबल असीमित था।
5: जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं योगाचार्य BKS अयंगर की। दुनिया जिन्हें उनकी कालजयी कृति लाइट ऑन योगा के माध्यम से जानती है और जिनका नाम आज योग की एक पूरी विधा का पर्याय बन चुका है।
4: उनका पूरा नाम था योगाचार्य बेल्लूर कृष्णमाचार सुंदरराज अयंगर, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने योग को व्यायाम या स्वास्थ्य का साधन नहीं माना, बल्कि उसे जीवन जीने की एक अनुशासित और सजग साधना के रूप में स्थापित किया।
5: शारीरिक दुर्बलताओं, कठिन परिस्थितियों और संघर्षों से भरे जीवन में भी अयंगर जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अनुभवों, प्रयोगों और गहन अभ्यास से ये सिद्ध किया कि योग हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह स्वस्थ हो या रोगी, युवा हो या वृद्ध, कलाकार हो या साधारण गृहस्थ।
4: उनकी साधना में कठोर अनुशासन था, पर उद्देश्य करुणा से भरा हुआ। उनकी शिक्षा में सख्ती थी, पर उनके पीछे जीवन को बेहतर बनाने की गहरी भावना छिपी थी। आज के इस प्रसारण में हम उनके जीवन की उसी यात्रा को फिर से जीवंत करेंगे, संघर्ष से साधना तक, साधना से सिद्धि तक, और फिर सिद्धि से सेवा तक।
5: December 14, 1918 दक्षिण भारत के कर्नाटक का एक छोटा सा गांव बेल्लूर। आज सुबह की धुंध कच्ची धरती पर ऐसे बैठी थी जैसे समय भी ठहर गया हो। गांव की सकरी पगडंडियों पर बसे कुछ साधारण से घरों में ही एक गरीब ब्राह्मण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर संसार को योग का एक नया मार्ग दिखाने वाला था। बेल्लूर कृष्णाचार सुंदरराज अयंगर।
4: इस बालक के जन्म लेते ही उसकी सांसें मानो जीवन से संघर्ष करने लगीं। वह 13 बच्चों वाले परिवार में माता पिता की 11वीं संतान था। माँ स्वयं पहले से ही इन्फ्लुएंजा जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, और ऐसे समय में एक ऐसा बालक जन्मा जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल, दुबला और कई बीमारियों से घिरा हुआ था।
5: बालक की हालत इतनी नाजुक थी कि जब उसे बाहों में उठाया जाता तो उसके शरीर का भार नहीं बल्कि उसकी असहाय कोमलता महसूस होती, जैसे वह जीवन और मृत्यु की सीमा पर खड़ा हो। डॉक्टरों की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी और उनके शब्दों में निराशा। उन्होंने माता पिता से कह दिया कि इस बच्चे का जीवन शायद लंबा ना हो।
4: उस क्षण किसी को यह आभास भी न था कि यही दुर्बल सा बालक आगे चलकर अपने संकल्प और साधना से न केवल अपने जीवन को बदलेगा, बल्कि लाखों लोगों के जीवन में स्वास्थ्य, आशा और संतुलन का प्रकाश भी फैलाएगा।
5: डॉक्टरों की ये बात सुनकर माँ की आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा। इस बालक के पिता की चुप्पी में दर्द चीख रहा था, पर इतिहास साक्षी है कि वही बच्चे जिन्हें दुनिया असहाय समझ लेती है आगे चलकर अपनी नियति को चुनौती देते हैं और अपना भविष्य स्वयं लिखते हैं।
4: कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। कौन जानता था कि जन्म लेते ही जीवन से संघर्ष करने वाला ये बालक आने वाले समय में सांस को ही दुनिया का सबसे बड़ा उपचार बनाना सिखाएगा। वह दर्द से भरा हुआ था, पर शायद वही दर्द उसका सुनहरा भविष्य गढ़ने वाला था। कमजोरी भले ही उसके शरीर की थी, पर एक अद्भुत अदम्य शक्ति उसके भीतर से प्रकट होने को आतुर थी।
5: एक ऐसी शक्ति जो उस बालक को केवल जीवित ही नहीं रखेगी बल्कि उसे योग की दुनिया का सूर्य बना देगी। कौन जानता था कि बेल्लूर की यह मिट्टी, यह साधारण सा घर, यह बीमार बालक एक दिन विश्व के करोड़ों लोगों के जीवन को छुएगा, उनके जीवन को निरोगी रहना सिखाएगा।
4: अयंगर का जीवन आरंभ में अनुकूल नहीं था। 13 बच्चों की देखभाल करने वाली उनकी अकेली माँ खुद ही अक्सर बीमार रहा करती थी। वहीं टाइफाइड, मलेरिया और तपेदिक सहित बचपन की कई बीमारियों के कारण अयंगर की स्कूली शिक्षा भी सीमित रही। उनके पिता का निधन 9 वर्ष की आयु में हो गया और लगातार खराब स्वास्थ्य, कुपोषण और गरीबी ने 14 वर्ष की आयु में उनकी जीवन प्रत्याशा को और कम कर दिया।
5: संसार में आते ही अयंगर की जीवन परीक्षा शुरू हो गई थी। जैसे जैसे ये बालक बढ़ रहा था, उसका शरीर कमजोर हो रहा था। वो कई बीमारियों से ग्रसित था। परिवार पहले ही गरीबी से जूझ रहा था। तभी उनके जीवन में प्रवेश हुआ एक ऐसे गुरु का जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। कुछ वर्षों में ही बचपन की बीमारी और संघर्षों का ये बुरा दौर गुजर गया। वो युवा अब जीवन के एक नए मोड़ पर था।
4: कुछ समय बाद अयंगर मैसूर रहने चले गए, जहां उनका जीवन एकदम बदल गया। यहां उनका मार्गदर्शन करने वाले थे पूजनीय योगाचार्य तिरुमलई कृष्णमाचार्य, उनके बहनोई, उनके गुरु और उनके योग के उस काल के महानतम विद्वान।
5: अयंगर के जीवन की शुरुआत तो भले ही कठिन थी, लेकिन कठोर अभ्यास, अनुशासन, गुरु की डांट और घंटों तक आसनों की साधना, मानो जैसे अयंगर जी के भीतर एक चुप सा संकल्प जाग उठा था, अगर जीवित रहना है तो योग ही जीवन बनेगा।
4: हालांकि कृष्णमाचार्य का प्रशिक्षण बिल्कुल भी सरल नहीं था। यहाँ बेहद कठिन, निर्भीक और अत्यंत अनुशासित जीवन शैली थी। अब जिसे अपनाने के अलावा अयंगर के पास कोई और विकल्प था ही नहीं। उनके मन में विचार आया कि अब यह केवल साधना नहीं है, यह उनके अस्तित्व का प्रश्न है। जीना है तो योग करना ही होगा।
5: गुरु का आदेश था अभ्यास, निरंतर अभ्यास करो और शरीर का हर दर्द आपके परिवर्तन की पहली सीढ़ी बन जाएगा। गुरु के इस आदेश से युवा अयंगर तप की अग्नि में उतर गए। दिन हो या रात, कठोर आसन, कठिन अभ्यास और शरीर को योग की अंतिम सीमा तक ले जाना, यही उनकी दिनचर्या बन गई।
4: अयंगर की शरीर को साधने की यात्रा शुरू हो चुकी थी। मन को संतुलित करना और आत्मा को ऊंचा उठाना, अब यही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। दिन में 10 से 12 घंटे अभ्यास, कभी कठिन, कभी वेदनादायक, पर हर दिन आगे बढ़ना है। यही एक ही संकल्प उनकी साधना का भी, बस एक यही सूत्र था, अभ्यास, अभ्यास और केवल अभ्यास।
5: उन्होंने अपने शरीर को एक प्रयोगशाला बना लिया। कौन सा आसन किस रेखा पर टिकेगा, किस सांस पर उसे स्थिरता मिलेगी, इन सब का वो वैज्ञानिक परीक्षण किया करते। और अपनी इसी तपस्या के फलस्वरूप आगे चलकर उनके जीवन को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और कई उपलब्धियां उनके नाम लिख दी गईं।
4: वर्ष 1937, सिर्फ 18 वर्ष की आयु में उन्हें अपने परिवार से दूर एक बार फिर पुणे भेज दिया गया। एक बिल्कुल नया शहर, बिल्कुल नया जीवन, पर मन में एक वचन था, योग को समझूंगा या प्रयास में मर जाऊंगा। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कम ही लोग कर पाते हैं। अयंगर ने इस प्रतिज्ञा को आत्मसात कर लिया।
5: जीवन के इतने उतार चढ़ाव, संघर्ष और असहनीय पीड़ा को बहुत कम उम्र में देख चुके अयंगर यह भली भांति जानते थे कि उनका मार्ग संन्यास तो नहीं है। उन्होंने कभी संसार से पलायन नहीं किया। उन्होंने यह निर्णय स्पष्ट रूप से लिया कि वे गृहस्थ जीवन अपनाएंगे, विवाह करेंगे, परिवार बसाएंगे और समाज के बीच रहकर ही योग का अभ्यास और प्रचार करेंगे।
4: अयंगर के लिए योग किसी गुफा या आश्रम तक सीमित साधना नहीं था। उनके लिए योग रोजमर्रा के जीवन का ही हिस्सा था, जैसे सांस लेना, चलना, काम करना और रिश्तों को निभाना। वे मानते थे कि सच्चा योग वही है जो सामान्य मनुष्य अपने घर, अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों के बीच में जी कर सके।
5: यही कारण था कि उन्होंने योग को साधारण जनमानस की भाषा में उतारा। उन्होंने दिखाया कि योग केवल तपस्वियों का नहीं, योगियों के लिए नहीं, बल्कि गृहस्थों, विद्यार्थियों, महिलाओं, वृद्धों और रोगियों, सबके लिए है। उनके योग में जीवन से पलायन नहीं, जीवन से संवाद था।
4: धीरे धीरे अयंगर का जीवन इस बात का पुख्ता प्रमाण बन गया कि योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और संतुलन के साथ जीवन जीने की कला है। उन्होंने योग को ऊंचे आसनों से उठाकर आम आदमी की जमीन पर रखा और वहीं से उसे विश्व भर में फैलाया।
5: इस योगाभ्यासी का गृहस्थ जीवन भी शुरुआत में कठिन रहा। कभी कभी 10-10 घंटे अभ्यास और बदले में नाम मात्र की कमाई, कभी भूखे सोना, कभी बिना विश्राम अभ्यास करना। लेकिन उनके भीतर आगे बढ़ने की एक जिद थी। योग को समझना, योग को जीना और योग को पूर्णता तक पहुंचाना उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था।
4: कहते हैं परिवार के साथ साथ जीवन में मित्रों का होना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि जो संबल, विश्वास और प्रेरणा एक सच्चा मित्र देता है, वह शायद किसी और रिश्ते से नहीं मिल पाता। और जब जीवन में ऐसी मित्रता प्रवेश करती है तो वह कृष्ण सुदामा जैसी अमर मिसाल बन जाती है।
5: अयंगर जी के जीवन में भी ऐसा ही एक अद्भुत क्षण आया जब नियति ने उनका परिचय विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन से करवाया। यह मुलाकात केवल दो व्यक्तियों की भेंट नहीं थी, बल्कि योग और संगीत, दो साधनाओं के मिलन की शुरुआत थी, जिसने आगे चलकर अयंगर जी के जीवन और योग की दिशा को वैश्विक पहचान दिलाई।
4: जी हाँ, साल 1952 की बात है। मेनुहिन अपने वायलिन वादन के एक मुश्किल विषय से जूझ रहे थे। शरीर की थकान, सांस की पकड़ और मन की बेचैनी उनका प्रदर्शन प्रभावित कर रही थी। तभी किसी परिचित ने उन्हें अयंगर से मिलने की सलाह दी। मेनुहिन ने अयंगर के पास आकर योग का अभ्यास शुरू किया, जो केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, सांस और मन के बीच का संतुलन खोजने की एक विधि थी।
5: जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ा, मेनुहिन ने अपने वादन में चमत्कारिक सुधार महसूस किया। उनकी पकड़ मजबूत हुई, सांसों का नियंत्रण बेहतर हुआ और मन अधिक केंद्रित हुआ। इस अनुभव ने दोनों के बीच गुरु शिष्य का बंधन गहरा कर दिया, जो एक सच्ची मित्रता में भी बदल गया। मेनुहिन ने अयंगर को पश्चिम बुलाया, उनसे कहा, आइए हम अपने यहाँ लोगों को भी ये सिखाएं।
4: अयंगर ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और यही वो मोड़ बना जिसने भारत के बाहर अयंगर योग की मान्यता को जन्म दिया। 1960 के दशक में लंदन से एक आग्रह आया। शैक्षिक प्राधिकरण ने अयंगर से कहा कि वे विद्यालयों और कॉलेजों में योग पढ़ाएं। यह कार्यक्रम न केवल शिक्षकों और छात्रों के बीच लोकप्रिय हुआ, बल्कि ब्रिटेन में अयंगर योग के लिए पहला ठोस आधार बना।
5: उन यात्राओं में अयंगर ने सिर्फ योग के आसन नहीं सिखाए, उन्होंने यह दिखाया कि योग कैसे कलाकारों, संगीतकारों और साधारण लोगों के जीवन में शारीरिक और मानसिक सुधार ला सकता है। मेनुहिन ने बाद में कहा कि अयंगर मुझे मेरे सबसे महान वायलिन शिक्षक की तरह मार्गदर्शित करते रहे। यह तारीफ किसी पुरस्कार से कम नहीं थी। उनकी मित्रता ने पश्चिम में योग के प्रति विश्वास और रुचि जगाई।
4: अयंगर और मेनुहिन की यह साझेदारी एक सांस्कृतिक सेतु बनकर उभरी, संगीत और योग के बीच का संवाद। इस मित्रता से यह संदेश गया कि ज्ञान, स्वास्थ्य और कला सीमाओं से परे साझा किए जा सकते हैं। आज भी जिन स्थानों पर अयंगर ने पढ़ाया, वहां उनके प्रभाव के निशान दिखाई देते हैं, जैसे स्वास्थ्य सुधार, बेहतर प्रदर्शन और जीवन के लिए नए दृष्टिकोण।
5: मेनुहिन को अयंगर की साधना में जो दिव्यता दिखाई दी थी, उसमें दुनिया को बदलने की ताकत थी। इस अटूट मित्रता में एक ओर था संगीत का तपस्वी और दूसरी ओर था योग का साधक। मेनुहिन के पश्चिम आने का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद अयंगर कभी नहीं रुके। यही था एक छोटी सी मुलाकात का एक बड़ा असर। जब एक महान संगीतकार और एक समर्पित योगाचार्य मिलते हैं, तो वह सिर्फ व्यक्तिगत लाभ नहीं रहता, बल्कि एक पूरी सभ्यता को एक नया मार्ग भी दिखा देता है।
4: इस योग साधक की इस ऐतिहासिक यात्रा ने उन्हें और भारतीय योग को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। लंदन, पेरिस, जिनेवा, अमेरिका, जहां भी अयंगर जाते, लोग उनके सटीक और अनुशासित योग ज्ञान से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। उनका योग अब केवल अभ्यास नहीं, एक वैज्ञानिक पद्धति, एक सुरक्षित प्रणाली और दुनिया भर के लोगों के लिए आशा बन चुका था।
5: समय बीता, योग की उनकी साधना गहराती चली गई। 1973 में उनकी पत्नी इस दुनिया से चली गई। उनकी स्मृति को योग की पवित्र भूमि में अमर रखना अयंगर जी के लिए एक आध्यात्मिक कर्तव्य बन गया। अयंगर ने अपनी जीवन संगिनी राममणि के सम्मान में एक ऐसा संस्थान स्थापित किया जिसने योग की दुनिया की दिशा ही बदल दी। पुणे में स्थित राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान, यह संस्थान सिर्फ एक भवन नहीं था, यह था प्रेम, स्मृति और समर्पण का प्रतीक।
4: यहीं से योग को मिला एक व्यवस्थित ढांचा, एक वैज्ञानिक पद्धति और एक

0: आज एक वैश्विक आंदोलन का स्वरूप ले चुकी है।
1: अयंगर ने एक कठोर लेकिन सुंदर शिक्षण पद्धति बनाई। अयंगर योग सिखाना हो तो सालों का अभ्यास, अनुशासन और परीक्षा अनिवार्य थी। आज 40 देशों में 1800 से अधिक संस्थान अयंगर योग का प्रसार कर रहे हैं। अयंगर का शिक्षण गहरा, सटीक और अत्यंत अनुशासित रहा है। वे कहा करते थे, योग मेरी जीवन शैली है। उनके 3 सिद्धांत संतुलन, सटीकता और स्थिरता योग की दुनिया में विख्यात हैं।
0: वे योग को लेकर इतने व्यवस्थित थे कि कभी कभी हास्य शैली में बताते थे कि लोग अक्सर उनके नाम BKS को बीट, कीक और शाउट समझ लेते हैं, क्योंकि वे गलत आसन को तुरंत सुधारते थे। उन्होंने छोटे समूहों से लेकर 1000 लोगों की कक्षाओं में योग सिखाया। 86 वर्ष की उम्र में कोलोराडो, 92 की उम्र में मॉस्को और बीजिंग में उन्होंने योग की कक्षाएं ली। दुनिया उनके सामने नतमस्तक थी।
1: चीन ने तो उनके सम्मान में डाक टिकट तक जारी किया। 1966 में उन्होंने दुनिया को एक कालजयी रचना योग पर प्रकाश, लाइट ऑन योगा, समर्पित की, जिसमें 600 से अधिक आसन और तकनीकें हैं। आज भी इसे योग की बाइबिल कहा जाता है। अब तक कुल 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है।
0: अयंगर ने 1993 में यहूदी मेनुहिन की प्रस्तावना के साथ लाइट ऑन द योगा, सूत्र ऑफ पतंजलि, और 2012 में दलाई लामा की प्रस्तावना के साथ कोर ऑफ द योगा, सूत्र द डेफिनेटिव गाइड टू द फिलोसफी ऑफ योगा प्रकाशित की।
1: अयंगर के भारत के प्रति उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें 1991 में पद्मश्री पुरस्कार, वर्ष 2002 में पद्मभूषण और 2012 में प्रतिष्ठित IMC जुरान क्वालिटी मेडल से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तित्वों को दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में जागरूकता और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने में आदर्श भूमिका निभाई है।
0: अयंगर इस पुरस्कार को लेने वाले केवल 2 गैर उद्योगपतियों में से एक हैं। 2012 में उन्हें देश में गांधी जी के बाद 50 महानतम भारतीयों में से एक चुना गया था। अप्रैल 2014 में ही वे भारत गणराज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण को ग्रहण करने के लिए दिल्ली गए थे।
1: समारोह के बाद दिए एक इंटरव्यू में अयंगर ने अपनी जग प्रसिद्ध सादगी के साथ कहा, जीवन में हमारी बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। यह त्याग के लिए नहीं बना है। हम इस समाज में रहते हैं और समाज को कुछ वापस देना हमारा कर्तव्य है। त्याग का विचार मुझे 96 वर्ष की आयु में आएगा। त्याग का अर्थ है सांसारिक सुखों का आनंद छोड़ देना, लेकिन मैं आंतरिक सुख से परिपूर्ण हूँ।
0: उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 20 ग्रंथों का लेखन किया। ये अविश्वसनीय नहीं लगता कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 14 साल में स्कूल छोड़ दिया, वही आगे चलकर योग का सबसे बड़ा दार्शनिक लेखक बन गया।
1: जब किसी में योग्यता होती है तो ईश्वर स्वयं उसमें सामर्थ्य भी भर देते हैं। जीवन के अभावों में पले बढ़े अयंगर सिर्फ योग के साधक ही नहीं थे, बल्कि वे लोक कल्याण के मार्ग पर चलने वाले तपस्वी भी थे। समाज की पीड़ा उन्हें भीतर तक छूती थी, इसीलिए उन्होंने अनेक सामाजिक कार्यों के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में अपना अहम योगदान दिया।
0: योग से मिले धन से अयंगर जी ने बेलूर ट्रस्ट की स्थापना की और उसी बेलूर ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने अपने पैतृक गांव को पानी, बिजली, अस्पताल, विद्यालय, कॉलेज और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र की सौगात दी। उनकी यही सेवा भावना योग की तरह ही लोगों के जीवन में रोशनी बनकर पहुंची।
1: उन्होंने ऋषि पतंजलि का पहला मंदिर भी पुणे में बनवाया। पश्चिम में योग को विज्ञान और कला की तरह स्थापित करने का सबसे बड़ा श्रेय अयंगर को जाता है। अगर कोई आसन कठिन लगता तो वे कहते, प्रयास करो, जरूरत हो तो रस्सी, ईंट, कुर्सी का सहारा लो, तुम जरूर कर पाओगे।
0: और इसी कारण उन्हें फर्नीचर योगी भी कहा गया। आज जो हम योग के प्रॉप्स जानते हैं, उसकी शुरुआत अयंगर ने ही की थी। योग में प्रॉप्स का उपयोग, ये एकदम नया आविष्कार था जिसमें बेल्ट्स, ब्लॉक्स और बोलस्टर शामिल थे।
1: बोल्स्टर को कुशन, एक तकिया या एक सहारे के रूप में भी जाना जाता है, ताकि हर व्यक्ति, चाहे वो कमजोर हो या वरिष्ठ हो, अपनी क्षमता के अनुसार सुरक्षित योग कर सके। उनकी योग पद्धति ने लाखों साधकों के जीवन को नया रूप दिया, जिससे कई चमत्कारी परिवर्तन योग साधकों ने महसूस किए। शरीर बदला, स्वास्थ्य सुधरा और मन स्थिर हुआ।
0: अयंगर की मुलाकात जब भी किसी साधक, चिंतक या योगी से होती थी, वे उनसे प्रभावित होते थे, उनके जीवन से प्रेरणा लेते, उनकी बातों से जीवन में संतोष का अनुभव करते। दलाई लामा से अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं जीवन भर योग का विद्यार्थी रहा हूँ। योग किसी जाति, धर्म या देश का नहीं, बल्कि यह पूरी मानवता का है। जीवन में हमारी कई जिम्मेदारियां हैं और समाज को कुछ लौटाना ही जीवन का उद्देश्य है।
1: अयंगर ने अपने योग जीवन में ये अनुभव किए कि स्वस्थ रहते हुए योग करने से हम कई बीमारियों से लड़ सकते हैं। यदि बीमार है तब भी योग से बीमारी कम की जा सकती है या उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने राममणि अयंगर मेमोरियल योगा इंस्टीट्यूट संस्थान में और बाहर भी पश्चिमी डॉक्टरों के साथ मिलकर ऐसे तरीके खोजे जिनमें मरीज अपनी बीमारी के इलाज में सक्रिय रूप से शामिल हो।
0: अयंगर कहते थे, मेरी करुणा कठोर है, मैं बीमारी से लड़ता हूँ, व्यक्ति से नहीं, इसलिए मेरी दया भी कठोर है। आज पश्चिमी चिकित्सा भी उनके इस काम को गंभीरता से देख रही है। उनके इलाज और शोध के कई परिणाम प्रकाशित हो चुके हैं और वैज्ञानिक अध्ययनों के बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं।
1: उनके योग अभ्यास पर एक फिल्म बनाई गई थी। कैमरे में दिखाया गया कि कैसे वे आसनों के बीच बादलों की तरह तेजी से, सहजता से एक से दूसरे आसन में बहते चले जाते थे। यह देखना अद्भुत था, पर साथ ही खतरनाक भी।
0: धीरे धीरे अयंगर जी को यह समझ आया कि तेज गति वाला अभ्यास केवल युवा और अत्यंत स्वस्थ लोगों के लिए ही उपयुक्त है और इसमें गलतियों की संभावना भी बहुत अधिक रहती है। इसलिए उन्होंने अपने अभ्यास की चाल को धीमा किया। हर आसन के कोण, हर स्थिति, हर आंदोलन और हर श्वास का गहन अध्ययन शुरू किया।
1: यही वह पल था जब उनके भीतर शोध का एक नया संसार खुला और यही शोध बाद में योग की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। जब दुनिया में योग की क्रांति आई तब योग आसनों को पेटेंट कराने की होड़ होने लगी, जिसका उन्होंने वर्ष 2011 में खुलेआम विरोध किया। वो कहते थे, योग का अनुभव हर व्यक्ति का अधिकार है, यह बहस का विषय नहीं, अभ्यास का मार्ग है।
0: 1950 के दशक में अयंगर के मित्र के आह्वान पर शुरू हुई भारत के योग की विश्व यात्रा सतत चलती रही। उन्होंने पश्चिम को यह दिखाया कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवन यात्रा है। उनकी पुस्तक लाइट ऑन योगा ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। आज भी उनकी ये किताब योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, जहां जहां वे पहुंचे वहां योग के मानो बीज फूट पड़े।
1: टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया। ये सम्मान केवल किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत की योग परंपरा का था। अयंगर योग की कई विशेषताएं हैं। अयंगर योग का मूल मंत्र है संतुलन, सटीकता और स्थिरता। वो हर आसन को बारीकी से करने में विश्वास रखते ताकि रोम रोम तक योग को महसूस किया जा सके।
0: हाँ, हम कह सकते हैं कि अयंगर शिक्षक से ज्यादा मूर्तिकार थे। वे अपने हर विद्यार्थी को ध्यान से देखते और उनकी गलती तुरंत सुधारते। वे तब तक सुधार करवाते जब तक योग आसन अपनी पूर्णता को न छू ले। उनके शिष्यों से उन्हें सिर्फ एक अपेक्षा थी, निष्ठा, नैतिकता और ईमानदार अभ्यास। वे कहते, लोकप्रियता योग के सच्चे लाभों को ढक दे, यह मैं कभी नहीं चाहता।
1: घर में वे अत्यंत सरल थे, शांत, नम्र और नियमों के पक्के व्यक्तित्व। सफलता के अभिमान ने उन्हें कभी छुआ ही नहीं। वे हमेशा कहते, मैं सिर्फ योग का एक विद्यार्थी हूँ। उनकी विनम्रता ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। उनका मानना था कि उदाहरण ही सब कुछ है और जब उदाहरण सत्य को व्यक्त करता है तो उसमें दूसरों को बदलने की शक्ति होती है।
0: उनके ये शब्द आज भी प्रेरणा है। आपका शरीर आपका मंदिर है, इसे शुद्ध और स्वच्छ रखें ताकि इसमें आत्मा का वास हो सके। उनका यही संदेश था। उनका मानना था कि योग केवल नजर नहीं बदलता बल्कि जीवन जीने का नजरिया बदल देता है।
1: वर्ष 2001 में एक तारे का नाम उनके नाम पर रखा गया तो वे हमेशा की तरह हंसते हुए बोले, योग की यात्रा अब धरती पर नहीं रही, आकाश तक पहुंच गई है।
0: और आज दुनिया भर में अयंगर योग संस्थान के लाखों शिक्षक इन संस्थानों में कई लोगों को योग की शिक्षा दे रहे हैं। ये करोड़ों साधक उनकी इस योग साधना की विरासत को जीवित बनाए हुए हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया। पर उनका सबसे बड़ा पुरस्कार वो लाखों मुस्कानें थीं जो योग से जीवन पाती रही।
1: 20 अगस्त 2014 का दिन, 96 वर्ष की आयु में वो अपनी योग की दुनिया से विदा हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसा प्रकाश जो दुनिया को आने वाली सदियों तक योग का मार्ग दिखाता रहेगा। BKS अयंगर, साधक, शोधकर्ता, शिक्षक, दार्शनिक और मानवता के लिए योग का अमूल्य उपहार थे। श्रोताओं, जब तक ये संसार रहेगा तब तक इस विभूति का नाम भी अमर रहेगा।
0: उनकी बुद्धि ऊंची थी पर पैर हमेशा धरती पर टिके रहे। वे असाधारण भी थे और आश्चर्यजनक रूप से साधारण भी। यही संतुलन, यही स्थिरता उन्हें योग जगत का सूर्य बनाती है।
1: आज का यह विशेष कार्यक्रम योगाचार्य BKS अयंगर को समर्पित था। उनकी 70 वर्षों की योग साधना हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। यहाँ हम कह सकते हैं कि वे केवल शरीर से विदा हुए पर योग के हर श्वास, हर आसन, हर क्षण में वे आज भी जीवित हैं। भारत की इस विभूति को हमारा शत शत नमन।
0: मन को दृढ़ बनाओ, योग तुम्हें पुनर्जन्म देगा। हम अयंगर के इस मंत्र के साथ आज के विशेष कार्यक्रम भारत विभूति को यहीं विराम देते हैं।
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन हमें मिला संतोष कुमार वर्मा से। परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। समन्वय सहयोग था सतीश बाथम का। लेखन स्वाति गिरी का। और आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना
0: और मैं विजयकांत नायक।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है रेडियो रिपोर्ट।

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय में, जहां शुक्रवार यानी 15 मई की शाम रचना पाठ और व्याख्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
1: यथार्थ के सपने बहुत ऊंचे नहीं थे, बस वह जीवन में व्यवहारिक था, जिसे अंग्रेजी में प्रैक्टिकल होना कहते हैं। उसके विचार से मम्मी पापा आज के जमाने के हिसाब से नहीं थे, वह थोड़े भावुक, रिश्तों का मान रखने वाले।
0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए इस कार्यक्रम में। ये हैं डॉक्टर अशोक व्यास।
1: इस कहानी का शीर्षक है दिल, रील और डील। इसमें देखें, दिल पहले आया है, फिर उसके बाद रील आई है, फिर डील आई है। अब कहानी में कैसे ये पात्र किस चीज को प्रमुखता देते हैं वो आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो यह आपको अच्छा लगेगा। इस कहानी का नायक है यथार्थ। उस यथार्थ पर मैंने कहानी लिखी है कि यथार्थ के माता पिता परेशान हो गए थे। उसके लिए सर्वगुण संपन्न लड़की ढूंढते हुए उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। इतने सारे बायोडाटा उन्होंने इकट्ठे कर लिए, बातें बहुत चल रही थी, परिचय सम्मेलन में भी कई बार पर्यटन कर लिया था, वहाँ भी परिणाम के नाम पर परिचय पुस्तक मिलती थी जिसमें लड़के लड़कियों की जानकारी ऐसी मिलती थी जो यथार्थ की कुंडली या उसके बायोडाटा से मेल नहीं खाती थी। यथार्थ के सपने बहुत ऊंचे नहीं थे, बस वह जीवन में व्यवहारिक था, जिसे अंग्रेजी में प्रैक्टिकल होना कहते हैं। उसके विचार से मम्मी पापा आज के जमाने के हिसाब से नहीं थे, वह थोड़े भावुक, रिश्तों का मान रखने वाले, परंपरावादी, आदर्शवादी भले नहीं थे लेकिन हृदय के तल पर जीने वाले थे। दिल का कहा मानते थे, या साफ शब्दों में कहें तो आज के सोशल मीडिया के ज्ञान के जमाने में थोड़े नासमझ ही थे। वैसे भी जब कोई लड़का पढ़ लिख कर अच्छा खासा कमाने धमाने वाला बन जाए तो उसके दिमाग में पहला विचार यही आता है कि माँ बाप की सोच आज भी पिछड़ी है। भले ही माँ बाप शिक्षित खुली सोच रखने वाले ही क्यों ना हो, कि आज की पीढ़ी आधुनिक, पढ़ी लिखी, दिमागदार, समझदार, स्मार्ट और प्रैक्टिकल है। और यथार्थ इतना भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ था कि माँ बाप को सपने देखने से रोक सके। उनके अनुसार बेटे की शादी हो जाए, दादा दादी बन जाए तो मानो उनका जन्म सफल हो गया। वैसे यथार्थ के लिए जरूरी नहीं था, फिर भी सामने वाली पार्टी की अगर इच्छा होगी तभी मामला आगे बढ़ेगा, या चाइल्ड फ्री फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली या जिस पर भी दोनों पार्टी सहमत हो जाए। यथार्थ कंप्यूटर विशेषज्ञ IIT का टॉपर था, कई कंपनियों से ऑफर मिलने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर उसने डील करके ज्वाइन किया था। उसने पैकेज पर डील करके ज्वाइन किया, मेहनत से काम करता था, बहुत समझदार और आज की भाषा में कहें तो बहुत शार्प, स्मार्ट, लेकिन जिंदगी में प्रैक्टिकल था। उसे बिल्कुल नेक टू नेक अपने स्तर की लड़की चाहिए, उसके बराबर की पढ़ी लिखी हो, उससे कम नहीं चलेगी, उसके बराबर पैकेज वाली होनी चाहिए, पैकेज अधिक हो चलेगा, जीवन में महत्वाकांक्षी होना चाहिए। उसे खाली रोटी बनाने वाली लड़की नहीं चाहिए, उसे घर का काम करने वाली लड़की नहीं चली चाहिए, उसे वह लड़की चाहिए जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, समाज में, सोसाइटी में, दोस्तों में उसका रुतबा बढ़ा सके। शादी विवाह भी उसके लिए एक ऐसी डील थी जिसकी शर्तें विवाह से पहले तय हो जाए तो अच्छा रहता है। आखिर में यथार्थ के मम्मी पापा ने आज के जमाने की वास्तविकता को स्वीकार करके यथार्थ से कहा कि तुम जानो, जिसे तुम पसंद करो वही हमारी पसंद होगी। बहुत खोजबीन और मेट्रोमिनल के विज्ञापन देने के बाद एक लड़की थोड़ा ठीक ठाक लगी जो बैंक में अधिकारी थी। यथार्थ ने उसके लिए सहमति दे दी। अब लड़की देखने जाने वाला वही चिर परिचित तरीका आजमाया गया। स्वागत सत्कार के बाद यथार्थ ने माँ बाप के बोलने से पहले ही बातचीत का सूत्र अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो बैठ सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, अगर इन्हें लगता है कि बात अकेले में करना चाहिए तो आप हमें अकेला छोड़ सकते हैं। सबने लड़की की तरफ देखा, उसने अपने पेरेंट्स को जाने का इशारा कर दिया। सबने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, यह तो आजकल होता ही है। यह बात अलग है कि इस कारण यथार्थ के माँ बाप द्वारा बेटे से पहले लड़की का इंटरव्यू लेने का सपना टूट गया, उनको अकेला छोड़ दिया गया। वैसे भी उनका इंटरव्यू लेना पिछड़ा तरीका था जिसे यथार्थ के लिए मानना बिल्कुल संभव नहीं था। पहली बार मिले वह लोग और मिलते ही यथार्थ ने कहा, देखो मुझे तुम्हारा बायोडाटा ठीक लगा, मेरा बायोडाटा भी तुमने देखा होगा, और ठीक लगा हो तो आगे बात करें, वरना तुम भी दूसरा देखो, मैं भी किसी दूसरे प्रपोजल के बारे में विचार करूंगा। तशा ने कहा, हाँ देखा है, ठीक लगा, तभी तो मैंने मिलने की सहमति दी है। इतना कहने के बाद लड़की मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लगी। इस पहले वाक्य में यह पता लग गया कि वह भी जीवन की वास्तविकता को समझती है। अब वह दोनों चर्चा करने लगे, पैकेज पर, स्वभाव पर, पसंद नापसंद पर, फैशन पर, कैरियर पर बातचीत करने लगे। बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर वह अड़ सकते थे, लेकिन धीरे धीरे वह बहुत सारे मुद्दों पर सहमत हुए। कुछ उसने अपने आप को थोड़ा एडजस्ट किया, कुछ तृषा ने एडजस्ट किया। बस एक ही बात यथार्थ को ठीक नहीं लग रही थी कि तृषा को रील बनाने का बहुत शौक था। उसने सोचा कि बैंक की अच्छी खासी नौकरी है, इतना समझौता चलेगा। और भी बहुत सारी बातों पर विचार किया उन दोनों ने। अंत में यह तय हुआ इस प्रकार पहली मीटिंग में सर्वसम्मत फैसला लेना उचित नहीं, कई मीटिंग करना होगा। इसलिए दूसरी मीटिंग की तारीख दोनों ने मिलकर तय कर ली। उसके बाद भी उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वह सब होने के बाद भी माता पिता की पसंद आए या ना है, डील फाइनल होने तक हमें पर्याप्त समय लेना चाहिए, क्योंकि शादी ब्याह एक दिन का मामला नहीं है, जीवन का मामला है। थोड़ा सा हम मिलेंगे, कुछ समय बिताकर एक दूसरे को और जानेंगे, थोड़ा सोचेंगे, मीटिंग करेंगे, तभी तो हम एक दूसरे को ठीक से जानेंगे। और यह तय हो गया कि वो फिर मिलेंगे। मिलने के बाद ही सारे मुद्दों पर आगे चर्चा करेंगे, और जैसे ही फाइनल हो जाएगा तब हम शादी की डील फाइनल करेंगे। यथार्थ और तृषा इस मीटिंग के बाद कई बार मिलने लगे, बहुत सारे मुद्दों पर बातें हुई, और उन मुद्दों पर बात कर रहे थे जो आज के जीवन के मुद्दे हैं, जैसे फैमिली, चाइल्ड फ्री रखना चाहिए या न्यूक्लियर फैमिली होनी चाहिए, और तो और शादी से पहले ही तलाक की शर्तें भी तय कर लेते हैं। शादी हाइब्रिड होगी, डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे या ट्रेडिशनल प्री वेडिंग शूट पर, तो तृषा ने कहा यह तो होगा ही होगा, क्योंकि उसे रील बनानी है। यथार्थ का कहना था माइक्रो वेडिंग कर लेते हैं। माइक्रो वेडिंग मतलब जिसको कोई शामिल नहीं होता, लड़का लड़की रहते हैं, बस वो माइक्रो वेडिंग कहलाती है। लेकिन तृषा इस मामले पर राजी नहीं हुई, क्योंकि उनका जो शौक है उसे हर अवसर पर रील बनानी है और सोशल मीडिया पर अपलोड करना है। हाँ ठीक है, अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो। यथार्थ भी तृषा की बैंकिंग नौकरी के कारण सहमत हो गया कि हम प्री वेडिंग शूट करेंगे। जिन जिन बातों पर वो सहमत नहीं हो रहे थे, उस पर वह धीरे धीरे सहमत होने लगे। लेकिन फिर भी विशेषकर कैरियर वाले मामले में बात करते थे, उसमें भविष्य की योजनाएं शामिल थी, विदेश में सेटलमेंट होने के लिए उनका विचार बनता था, परिवार का वह दोनों ही ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनके माँ बाप दोनों ही बढ़िया स्थिति थे में, इसलिए वित्तीय योजना के लिए वह अक्सर बातें करते थे कि हम दो हैं, हमें क्या करना है। संतान के बारे में उन्होंने सोचा कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन उसके बारे में अगर शादी के बाद फैसला लिया जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि बच्चे होंगे तो उनकी परवरिश और शिक्षा के खर्च की जिम्मेदारी का सवाल उनके सामने मुंह बाए खड़ा हो जाता। अब घर के काम का प्रश्न आया तो यथार्थ के माँ बाप को तो बहू के हाथ की रोटी चाहिए। बैंक में अच्छी नौकरी करती थी और उसे घर के काम नहीं आते थे, जो कि स्वाभाविक है। बच्चों को संभालने काम कौन करेगा, उसे कमन सेट कौन करेगा। मीटिंग में यह बात तय हुई कि उसके बारे में चर्चा तब करेंगे जब संतान पैदा करेंगे। उनके बीच में व्यक्तिगत शौक, रुचियां, सम्मान के बारे में चर्चा हुई और एक दूसरे को स्पेस देने के बारे में भी बात होने लगी। एक दूसरे को स्पेस जरूर देना चाहिए, जब आज के जमाने में स्पेस का मतलब ही क्या हो सकता है, कि तुम उसकी निजी स्वतंत्रता का ध्यान रखो और वह तुम्हारी निजी स्वतंत्रता का ध्यान रखे। एक दूसरे से राजी जब होने लगे, एक को रील बनाने का शौक है, एक को डील करने का शौक था कि मन माफिक डील हो जाए, शादी उसके लिए डील की तरह थी, और तृषा के लिए कोई भी जीवन का पल हो, उसे रील का शौक था, उसमें दिल का मामला कहीं नहीं था, दिल की कोई बात ही नहीं थी, भावनाओं का कोई सवाल ही नहीं था, एकदम कठोर वास्तविकताओं का पर्वत वो दोनों खड़े थे और समझौते पर पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहे थे। धीरे धीरे वे एक दूसरे की कमजोरी को जानने लगे, एक दूसरे को पहचानने लगे, समझने लगे। इस तरह बार बार मिलने से, मीटिंग करने से बस रहस्य ही समाप्त हो गया, वह उत्सुकता ही खत्म हो गई जो पति पत्नी को विवाह के बाद पहली बार मिलने पर होती है। लगातार मीटिंग, काफी डेट्स, लंच ब्रेक, मुलाकातों और अनगिनत रीलों के बीच एक दिन ऐसा आया जब यथार्थ ने महसूस किया कि अब उनकी बातचीत क्या चाहिए से आगे बढ़कर क्यों चाहिए तक नहीं जा रही। हर मुद्दे पर एक्सेल शीट बन चुकी थी, पैकेज, स्पेस, बच्चों की परवरिश, बस एक चीज तय नहीं थी, मन जो इतने किंतु परंतु के बाद भी नहीं मिल पा रहे थे उन दोनों के मन।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम रेडियो रिपोर्ट। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना, नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

कि मैं हूँ मुकेश खन्ना आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
3: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों, फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: नमस्ते, मैं हूँ रानी मुखर्जी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आजाद हिंद।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने। आजाद हिंद।
1: नमस्कार मित्रों, आजाद हिंद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन। आप तो मुझे पहचानते हैं ना, मैं हूं इतिहास।
2: और मैं हूं तारीख। मेरा भी नमस्कार आप सभी आजाद हिंद के श्रोताओं को। इतिहास
1: जी,
2: मेरी तो एक ही जिज्ञासा रहती है, एक ही सवाल होता है
1: कि आज कौन सी शौर्य गाथा है।
2: जी बिल्कुल, बताइए ना।
1: जी, आज फिर बारी है बंगाल के क्रांतिकारियों की गौरव गाथा की। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में बंगाल और बंगाल के क्रांतिकारियों का कितना बड़ा योगदान है, ये तो आप और हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, पुलिन बिहारी दास और मास्टरदा, ऐसे कितने और भी नाम हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने योगदान से देश को आजादी दिलाई।
2: इतिहास
1: जी,
2: अभी भी आपने नहीं बताया कि वो कौन से क्रांतिवीर हैं जो हमारी आज की गौरव गाथा के नायक हैं।
1: जी, आपके साथ हमारे श्रोता भी जानना चाह रहे होंगे।
2: बिल्कुल।
1: तो आज हम बात करते हैं एक नहीं दो क्रांतिकारियों की, और वो हैं मृगेंद्र कुमार दत्त और रामकृष्ण रॉय।
2: जी हाँ,
1: 1930 का साल, पूरे देश में क्रांति की आग फैली हुई थी। हमारे राजनेता देशभक्त अपने अपने मोर्चों पर लगे हुए थे और हर एक क्रांतिकारी, हर देशभक्त और हर भारतवासी की एक ही अभिलाषा थी, और वो थी भारत की आजादी।
2: आजादी पाने की इसी अभिलाषा ने बंगाल के क्रांतिकारियों में भी जोश भर दिया। बंगाल के बाकी हिस्सों की तरह मिदनापुर भी क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र था।
1: जी,
2: देश के बाकी हिस्सों की तरह मिदनापुर भी ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों का शिकार था।
1: मिदनापुर में उन दिनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे। भारतीय चाहते थे कि अपने देश का ही नागरिक वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने। मिदनापुर के क्रांतिकारियों ने प्रण किया कि हम मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तब तक मारते जाएंगे जब तक उस पद पर कोई भारतीय नियुक्त नहीं किया जाता। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इनकी बातों पर जरा भी गौर नहीं किया।

0: मिदनापुर के एक विद्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। उस प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेम्स पेड्डी को बुलाया गया। 7 अप्रैल 1931 को प्रदर्शनी का उद्घाटन करने शाम 7:30 बजे श्री जेम्स वहां आए। विद्यालय के कई कमरों में प्रदर्शनी लगाई गई थी।
1: विद्यालय के पहले कमरे में जेम्स पेड्डी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद प्रदर्शनी के बाकी हिस्सों को देखने के लिए वो दूसरे कमरे में पहुंचे। वे जैसे ही कमरे में घुसे, एक नौजवान ने रिवॉल्वर निकाली और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही वो वहां से भागे, एक दूसरे क्रांतिकारी ने उनका पीछा किया और उन पर लगातार गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज से पूरे विद्यालय में भगदड़ मच गई। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन के लिए कलकत्ता से खास डॉक्टर भी बुलवाए गए। डॉक्टर आए और ऑपरेशन से जेम्स पेड्डी के शरीर से एक गोली निकाली।
0: अगली सुबह एक ऑपरेशन और किया गया और उनके शरीर से एक और गोली निकाली गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हालत इसके बाद भी लगातार बिगड़ती गई और 8 अप्रैल 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। मिदनापुर के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों को मारने का जो प्रण किया था, उसकी पहली कड़ी में वे सफल रहे।
1: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेम्स पेड्डी की मौत से अंग्रेज सरकार बौखला गई, लेकिन क्रांतिकारियों के आगे वो झुके नहीं। जेम्स पेड्डी की जगह एक और अंग्रेज को इस पद पर नियुक्त किया गया और उनका नाम था रॉबर्ट डगलस।
0: रॉबर्ट डगलस ने मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम संभाल तो लिया, लेकिन वे शुरू से डरे हुए थे
1: जी।
0: उन्होंने अपने भाई और कुछ मित्रों को पत्र भी लिखे जिसमें उन्होंने इस डर का भी जिक्र किया। सरकार ने उनकी सुरक्षा के इंतजाम भी किए, लेकिन क्रांतिकारियों के इन धमकियों से सरकारी कामकाज रोका तो नहीं जा सकता था। 30 अप्रैल 1932 को मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग चल रही थी। श्री डगलस इस बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। मीटिंग में कई सदस्य हिस्सा ले रहे थे। मजिस्ट्रेट डगलस फाइल के कागजातों पर हस्ताक्षर भी करते जा रहे थे। इतने में दो नौजवान डगलस के कमरे में घुसे। दोनों ने एक साथ डगलस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक के बाद एक 8 गोलियां डगलस के शरीर में समा गई।
1: गोलियां चलाकर दोनों नौजवान भागे। पुलिस ने पीछा किया। उनमें से एक पुलिस की गोली से घायल होकर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारी का नाम था प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य। उसकी तलाशी ली गई और जेब से एक पर्चा निकला जिसमें लिखा था, हिजली जेल में कैदियों पर किए गए अमानवीय अत्याचारों का ये हल्का प्रतिरोध है। हमारे बलिदानों से अंग्रेज सरकार को ये सबक लेना चाहिए और भारतीयों को भी इन बलिदानों से जाग जाना चाहिए।
0: हिजली जेल में कैदियों पर 16 सितंबर 1931 की रात जेल के सिपाहियों ने मिलकर लाठियों से प्रहार किया और गोलियां चलाई, जिसमें संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर दत्त नाम के दो क्रांतिकारी मारे गए। इसी घटना के बारे में प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य ने पत्र में लिखा था जो उनकी जेब से बरामद किया गया था।
1: घायल डगलस को अस्पताल ले जाया गया। खड़गपुर से ऑपरेशन के लिए डॉक्टर भी बुलवाए गए, लेकिन डगलस को बचाया नहीं जा सका। प्रद्योत भट्टाचार्य को पुलिस ने बड़ी यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे साथी का नाम नहीं बताया।
0: प्रद्योत भट्टाचार्य पर विशेष अदालत में मुकदमा चला। उन्हें फांसी की सजा दी गई। 12 जनवरी 1933 की सुबह प्रद्योत भट्टाचार्य को फांसी दे दी गई।
1: रॉबर्ट डगलस की मृत्यु के बाद पीईजी बर्क को मिदनापुर का नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया। पिछले दो अधिकारियों की हत्या से नए अधिकारी बर्क घबराए हुए थे और उन्होंने अपनी हिफाजत के और भी कड़े इंतजाम किए थे।
0: 2 सितंबर 1933 को मिस्टर बर्ग की टीम टाउन क्लब और मोहम्मडन स्पोर्ट्स क्लब के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ। श्रीबर्ग निर्धारित समय पर मैदान पहुंचे।

0: 6 गोलियां खाकर मजिस्ट्रेट बर्ग जमीन पर गिर पड़े और कुछ ही क्षणों में उनकी मौत हो गई।
1: पास में खड़े पुलिस अधिकारी ने मृगेंद्र को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और बर्ग के अंगरक्षकों ने उस पर गोली चला दी। क्रांतिकारी मृगेंद्र नीचे गिर पड़े और गिरफ्तार कर लिए गए।
0: दूसरे क्रांतिकारी अनाथ बंधु पांजा को रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर ने गोली मार दी और मैदान में ही उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन मृगेंद्रनाथ दत्त की मौत अस्पताल में हो गई।
1: इसी बीच खेल के मैदान को पुलिस ने घेर लिया। खेल को रोककर सभी दर्शकों की तलाशी ली गई। तलाशी के बाद 3 और क्रांतिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन क्रांतिकारियों में निर्मल जीवन घोष, ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण रॉय थे।
0: इन 3 पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण रॉय को 25 अक्टूबर और निर्मल जीवन घोष को 26 अक्टूबर 1934 को मिदनापुर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई।
1: अपने 3 अधिकारियों की मौत के बाद अंग्रेज सरकार को मिदनापुर के क्रांतिकारियों से आखिरकार हार माननी पड़ी और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर एक और भारतीय को ही चुना गया।

0: वायदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: अभी आप सुन रहे थे आजाद हिंद कार्यक्रम का प्रसारण। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
3: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: जो लौट के घर न आए।
4: वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम हैं लल्लन जी। अरे लापता गंजे वाले, PWD में काम करते, PWD में कौन ऐसे वैसे आदमी नहीं बताए दे रहे। हाँ नहीं तो, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं,

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

0: कि मैं हूँ मुकेश खन्ना, आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण अपने रेडियो मित्र भारती के साथ। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर सागर।

0: कलाकार हैं राम भावसार और उनके साथी। ये प्रस्तुति हुई मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित श्रृंखला संभावना के तहत।
1: अब लेते हैं आनंद भक्ति गायन का। यह प्रस्तुति शाजापुर के राम भावसार एवं साथियों द्वारा दी जा रही है।
2: नमस्कार, मेरा नाम राम भावसार है और उज्जैन संभाग शाजापुर जिला पुलाई कला ग्राम का मैं निवासी हूँ और ये मेरी पूरी टीम है। क्योंकि मालवा की संस्कृति में अनेक परंपराएं चलती है, मध्य प्रदेश में चार परंपराएं जो हमारे फोक के अनुसार होती हैं, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, मालवा और निमाड़ी। तो मालवा क्षेत्र की जो लोकगीत की परंपरा है, इसमें अनेक परंपराएं हैं गायन की, किंतु वर्तमान में हम जिसकी प्रस्तुति देने जा रहे हैं ये काफ़ी पुरानी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जन जन तक इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आशीर्वाद चाहते हैं, धन्यवाद। और इस परंपरा का नाम है अम्बे माता का गरबा, जो कि गर्वो शब्द से इसका उच्चारण किया जाता है, जो ज्वाला देवी के लिए उपयोग होता है। तो आइए गणेश वंदना से हम प्रारंभ करते हैं।

इसी परंपरा में अंबा माता का आह्वान किया जाता है, और आह्वान में अंबा माता का मतलब ये होता है कि आदि शक्ति जगदम्बा स्वरूपा दुर्गा माँ, उनका आह्वान किया जाता है और मटकी पे उनको विराजमान किया जाता है ज्वाला देवी के रूप में। तो परंपरा में अगला गीत है

जल जमनारो पानी मैं गई ने सुन सावरिया। गोपियां कृष्ण भगवान को कह रही है, रासलीला में प्रवेश कर रहे हैं, जो मालवा की रासलीला हम कह सकते हैं।

हमारी जो देवास की जो हमारे मालवा क्षेत्र की जो पहचान है, बाबा महाकाल और देवास की टेकरी की माता जी हमारी जगदम्बा माई, उनके लिए मालवा का एक प्रसिद्ध भजन है।

ये सब मालवा के फोक में कृष्ण की लीलाओं का भी बहुत सारी जगह वर्णन है। तो कृष्ण भगवान के ऊपर भी मालवा में बहुत अच्छे अच्छे गुणी कलाकारों ने बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखी है, उनको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।

कार्यक्रम सुरसागर में आप सुन रहे थे भक्ति गायन। कलाकार थे राम भावसार और उनके साथी। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर सागर। आप हैं रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण के साथ 90.8 MHz पर। देश का चैनल देश के लिए।
1: मैं हूं हरिप्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
2: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
3: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद रेडियो रूपक।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: पिछली कड़ी में आपने जाना कि इंग्लैंड में रहते समय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मैक्स मूलर महोदय से स्वामी जी की भेंट हुई थी। वे विश्व विख्यात विद्वान थे और विराट प्राच्य विद्या विशारद एवं भारत प्रेमी भी थे। इस मुलाकात को सभी ने एक ऐतिहासिक घटना माना है।
1: इंग्लैंड प्रवास के दिनों में सेवियर दंपत्ति और कुमारी मूलर ने स्वामी जी को लेकर यूरोप भ्रमण, खासकर स्विट्जरलैंड भ्रमण करने का निश्चय किया। स्वामी जी खुशी खुशी गए। कई महीनों के कठिन परिश्रम के बाद उन्हें विश्राम करने की जरूरत महसूस हुई।
0: जुलाई माह के अंतिम भाग में शिष्य व मित्रों के साथ लंदन से यात्रा कर स्वामी जी जेनेवा शहर पहुंचे। उस समय जेनेवा में एक शिल्प प्रदर्शनी हो रही थी। स्वामी जी ने सब कुछ घूम घूम कर देखा। अंत में उन्हें एक बड़ा सा बैलून दिखा। उन्होंने पूछा,
2: ये बैलून जैसी चीज क्या है?
3: स्वामी जी, ये बैलून ही है। इसमें इतनी गैस भरी जाती है कि ये दो चार लोगों को टोकरी में बिठाकर उड़ा ले जा सकता है।
2: अच्छा, तो मैं भी उसमें बैठूंगा, देखूं तो जरा ऊपर से दुनिया कैसी दिखती है।
3: आप? अरे नहीं, ये बहुत सुरक्षित नहीं है।
2: सुरक्षित नहीं तो इतने लोग इसमें सवारी करने के लिए कतार में क्यों लगे हैं?
3: नहीं स्वामी जी, आप ना जाइए।
2: अरे मुझे कुछ नहीं होगा। कब उड़ेगा गुब्बारा?
3: सूर्यास्त के समय आकाश का नजारा बहुत बढ़िया दिखता है।
2: ठीक है।
0: स्वामी जी अधीर होकर सूर्यास्त का इंतजार करने लगे। उनकी बच्चों जैसी अधीरता देख सब मन ही मन मुस्कुराते रहे। अंत में स्वामी जी की बारी आई। वे खुशी खुशी गुब्बारे में सवार होकर उड़ने लगे। आकाश साफ था। सूर्यास्त के समय आसमान को देखकर स्वामी जी बहुत ही प्रसन्न हुए। नीचे आकर उन्होंने कहा,
2: आहा, क्या स्वर्गीय नजारा था, क्या रंग थे, आकाश का एक नया रूप देखा, और तुम लोग मुझे स्वर्गीय दृश्य को देखने से रोक रहे थे।

0: जेनेवा से साथियों के साथ कैसल ऑफ चिलो गए। स्वामी जी ने वहाँ से मॉन्ट ब्लैंक की ओर यात्रा की। मनोरम पर्वतों पर से गुजरते समय उन्हें हिमालय की याद हो आई। अपने परिव्राजक जीवन को याद करते हुए उन्होंने कहा,
1: मैं चाहता हूँ हिमालय में एक मठ स्थापित कर शेष जीवन ध्यान व तपस्या में बिता दूं। इस मठ में मेरे भारतीय व पाश्चात्य शिष्यगण रहेंगे। मैं उन्हें प्रचार कर्मी के रूप में तैयार कर दूंगा। पहले दल के शिष्यगण पाश्चात्य देशों में वेदांत के प्रचार कार्य में संलग्न होंगे और दूसरा दल भारत की उन्नति के लिए आत्मोत्सर्ग करेगा।
2: स्वामी जी के शिष्यगण उनका संकल्प जानकर उत्साह से बोले, अवश्य स्वामी जी, भविष्य के कार्य के लिए हमें इस प्रकार का एक मठ अवश्य चाहिए। एल्प्स पर्वत के शिखर पर बैठे स्वामी जी ने शिष्यों के साथ जो चर्चा की थी वो बाद में ईश्वर की कृपा से कार्य रूप में परिणित हुई।
0: शिष्यों के साथ आश्रम की चर्चा करने के बाद स्वामी जी ने भारत में लाला बद्री शाह को पत्र लिखा।
1: क्या आप अल्मोड़ा के समीप कोई ऐसा उपयुक्त स्थान जानते हैं जहां उद्यान आदि के साथ मैं अपना मठ बना सकूं? उद्यान का होना अत्यंत आवश्यक है। एक छोटी सी पहाड़ी मिल जाए तो ठीक हमारे मन माफिक होगा।
2: स्वामी जी की इच्छा अनुसार ऐसा ही एक सुंदर आश्रम पिथौरागढ़ जिले के मायावती नामक स्थान पर सेविया दंपत्ति द्वारा प्रतिष्ठित किया गया। वस्तुतः स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक दृश्य पग पग पर उन्हें हिमालय की याद दिला रहे थे और उनके साथ ही उनके मन में ध्यान, तपस्या, आश्रम आदि की अभिलाषा जाग रही थी। वहां के किसानों का व्यवहार देखकर उनके मन में हिमालय की पहाड़ी जातियों की स्मृति उदय हो रही थी। उन्होंने अपने साथियों से कहा,
1: इनके रीति रिवाज तथा वेशभूषा देखता हूँ, बिल्कुल हिमालय की पहाड़ी जातियों के समान ही ये लोग, जो अपनी पीठ पर लंबी टोकरी लटकाए चलते हैं, वो भी हमारे देश के पहाड़ी अंचल में व्याप्त टोकरियों के समान ही हैं।
0: स्विट्जरलैंड में एक पहाड़ी पर चढ़ते समय स्वामी जी ने जिद करके एक हिमनद पे पार किया था। उस हिमनद का नाम था मर्दे ग्लेस। वहाँ से उनका दल चामोनीज नामक एक खूबसूरत गांव में गया। पास ही लिटन सेंट वर्नॉन में ईसाई साधुओं का मठ है, वहाँ भी गए। उसी के ऊपर सुविख्यात सेंट ऑगस्टाइन नामक दर्रा है, जिसके शिखर पर ऑगस्टाइन संप्रदाय के साधुओं की धर्मशाला स्थित है। ये यूरोप की सबसे ऊंचाई पर बसे मानव बस्तियों में एक है।
2: वहाँ से उनका दल मिस मूलर की इच्छा अनुसार सांसफी नामक स्थान पर गया। ये स्थान तुषार मंडित पर्वत शिखरों से घिरा है और शांति एवं निस्तब्धता का साम्राज्य है। संसार की गंदगी का नामो निशान न था। ऐसे अनुकूल परिवेश में स्वामी जी अक्सर ध्यान मग्न रहते थे। पहाड़ों पर वे अकेले ही घूमने निकल जाया करते थे।
0: एक दिन पहाड़ों पर उन्हें एक छोटा मंदिर दिखा। वो मैरी माता का मंदिर था। स्वामी जी पहाड़ से कुछ फूल चुनकर लाए और श्रीमती सेवियर से बोले,
1: मेरी भक्ति और कृतज्ञता के प्रतीक स्वरूप आप इन फूलों को वर्जिन मैरी के चरणों में अर्पित कर दीजिए, क्योंकि वे भी तो माँ ही हैं।
0: इस प्रकार स्विट्जरलैंड में कई सप्ताह बिताने के बाद स्वामी जी ने स्वयं को काफी स्वस्थ महसूस किया। उन्होंने 8 अगस्त के पत्र में गुडविन को सूचित किया,
1: अब मैं काफी ताजगी महसूस करता हूँ। खिड़की से बाहर दृष्टि डालते ही सामने विराट हिमनद देख पाता हूँ और ऐसा अनुभव होता है मानो मैं हिमालय में हूँ। मेरी रगों में स्वाभाविक शक्ति पुनः लौट आई है और जिस प्रकार की परेशानियों की बात तुमने लिखी है वे मुझे स्पर्श तक नहीं करती। ये बच्चों का खेल भला मुझे कैसे उद्विग्न कर सकता है? सारा संसार बच्चों का खेल मात्र है, प्रचार करना, शिक्षा देना आदि सब। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो न द्वेष करते हैं और न कामना, उन्हीं को सन्यासी समझो। कुछ दिनों पूर्व अचानक ही कृपानंद को पत्र लिखने की तीव्र इच्छा हुई। संभव है वो दुखी होकर मेरी याद कर रहा हो, अतः मैंने उसे एक स्नेहपूर्ण पत्र लिखा था। कुमारी वाल्डो से कहना कि अपना आंतरिक स्नेह प्रदर्शित करते हुए उसे कुछ धन भेज दे। प्रेम का कभी नाश नहीं होता, संतान चाहे जैसी हो या चाहे जो करे, पर पिता का प्रेम अमर है, वो मेरे पुत्र के समान है। इस समय दुख में होने के कारण मेरे स्नेह एवं सहानुभूति पर उसका अधिकार वैसा ही है या शायद उससे भी अधिक।
0: उन्होंने कृपानंद को लिखा था,
1: कल मैं मोंटेरोजा के हिमनद के किनारे गया था और वहां चिर तुषार के प्रायः बीच में उत्पन्न कुछ सदाबहार फूल तोड़ लाया। उनमें से एक इस पत्र में रखकर तुम्हारे लिए भेज रहा हूं। आशा है तुम भी इस पार्थिव जीवन के समस्त बाधा विघ्न रूपी हिम तथा तुषार राशि के बीच उसी प्रकार की आध्यात्मिक दृढ़ता प्राप्त करोगे। सत्य की ही विजय होती है, मिथ्या की नहीं। सत्य के होकर ही देवयान का मार्ग अग्रसर होता है। यहां पर कोई आश्रम नहीं है, एक रहने से कितना अच्छा होता, मैं उसे अतीव आनंदित होता और इस देश का भी कितना भला होता।
2: स्विट्जरलैंड के ग्रैंड होटल सासफी वेले से लिखित स्वामी जी के 8 अगस्त के पत्र से ज्ञात होता है कि वे कील निवासी जर्मन दार्शनिक पॉल डायसन के आमंत्रण पर 10 सितंबर को सेवियर दंपत्ति के साथ प्राध्यापक के घर पहुंचने वाले हैं, परंतु कुमारी मूलर उसके पहले ही इंग्लैंड लौट जाएंगी। प्राच्य विद्या के महान पंडित डायसन स्वामी जी के बारे में जानते थे तथा उनके व्याख्यानों का पाठ करते थे। उन्होंने स्वामी जी से मिलने की उत्सुकता व्यक्त करते हुए पत्र लिखा था जो लंदन से घूमकर उस सुदूरवर्ती गांव में आकर उन्हें प्राप्त हुआ। प्राध्यापक की इच्छा अनुसार स्वामी जी ने भ्रमण योजना में किंचित परिवर्तन कर जर्मनी होते हुए इंग्लैंड लौटने का निश्चय किया, परंतु तब भी पूरा एक महीना हाथ में था। अतः ऐसी योजना बनी कि वे लोग कुछ दिन और स्विट्जरलैंड में ही बिताएंगे और तदुपरांत कुमारी मूलर के अतिरिक्त बाकी लोग जर्मनी के 2-1 स्थानों का दर्शन करते हुए कीव पहुंचेंगे। मूलर स्विट्जरलैंड से ही वापस लौट जाएगी।
0: पूर्वोक्त ग्राम त्याग कर पूरी टोली संभवतः 22 अगस्त को स्विट्जरलैंड के ही लुसर्न नगर में जा पहुंची। लुसर्न में देखने योग्य काफी कुछ था और उन्होंने एक एक कर सब देखा। कप्तान सेवियर के अतिरिक्त अन्य सभी लोगों ने वहां पर पहाड़ी ट्रेन पर सवार होकर माउंट रिगी के शिखर तक आरोहण किया। इस भ्रमण में भी एक तरह की नवीनता थी और पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर जगत के एक अतुलनीय हिम दृश्यावली ने उनके नयन मन को मुग्ध कर लिया। लुसर्न में उन लोगों ने अन्य स्थानों के अतिरिक्त स्विस गार्डो का कब्रिस्तान और उसके ऊपर के पर्वत पर खुदी हुई निद्रित सिंह की एक सुंदर मूर्ति का अवलोकन किया। यहाँ से उन्होंने रीड्स नदी के ऊपर स्थित चित्रों से शोभित 2 सेतुओं को पार किया। इनमें से एक पर मृत्यु का तांडव नृत्य अंकित था और दूसरा सेतु स्विट्जरलैंड के इतिहास की घटनाओं से अलंकृत काष्ठ फलकों द्वारा सुशोभित था।
2: उसके बाद उन्होंने लुसर्न का अजायब घर तथा इतिहास में विख्यात धर्म मंदिर का सुप्रसिद्ध वॉइस यूमेना मानव कंठ नामक ऑर्गन देखा। इस वाद्य यंत्र से ठीक मानवीय कंठ के समान ध्वनि निकलते देखकर स्वामी जी बड़े आनंदित हुए। इसके बाद सबने स्टीमर पर चढ़कर लुसर्न झील की सैर की। लुसर्न में विलियम टेल के नाम पर बने एक छोटे से मंदिर को देखकर उस देश प्रेमी के जीवन की कितनी ही घटनाएं स्वामी जी के मन से होकर गुजर गईं। झील के किनारे एक दिन मिर्ची बिकते देख स्वामी जी ने उनमें से

0: पहुंचे और वहां 2 दिन निवास किया। विश्वविद्यालय का परिदर्शन कर और जर्मन लोगों में विद्यादान का विपुल आयोजन और विद्यार्थियों में अदम्य उत्साह देखकर स्वामी जी विस्मित हो गए। नगर के किनारे एक ऊंचे स्थान पर स्थित किला भी उन लोगों ने देखा। वहां से वे लोग कोबलेंज गए और वहां एक रात बिताने के बाद स्टीमर पर सवार हुए। स्टीमर 60 मील दूर कोलोन नगर पहुंचा। उक्त शहर में 2-3 दिन रहकर इन लोगों ने वहां का वृहत प्रार्थना गृह, वहां का कोषागार तथा सन्यासियों द्वारा हस्त निर्मित खूबसूरत जड़ाऊ सलीब एवं अन्य दर्शनीय वस्तुओं को देखा। एक दिन स्वामी जी प्रार्थना गृह में प्रार्थना के समय भी उपस्थित हुए। सेवियर दंपत्ति ने सोचा था कि कोलोन से वे सीधे कील जाएंगे, परंतु स्वामी जी की बर्लिन देखने की इच्छा है जानकर वे लोग उस ओर अग्रसर हुए।
1: स्वामी जी जर्मनी में जाकर जितना ही वहाँ की संस्कृति, कर्मोद्यम, समृद्धि तथा आधुनिक रीतियों से नगर निर्माण का परीक्षण करने लगे, उतने ही विस्मित होकर वे जर्मन लोगों की प्रशंसा करने लगे। आखिरकार वे बर्लिन पहुँचे। उस महानगर की चौड़ी सड़कों, मनोहर उद्यानों तथा सुंदर भवनों ने उन्हें पेरिस की याद दिला दी और उनका चिंतनशील मन फ्रांसीसी और जर्मन सभ्यताओं के तुलनात्मक चिंतन में लग गया। वे समझ गए कि दोनों देशों का अपना अपना वैशिष्ट है। जर्मन वीरों की जाति है और लौकिक तथा बौद्धिक प्रगति के मार्ग की समस्त बाधाओं को पार करने के लिए कटिबद्ध है। जर्मनी की सुप्रशिक्षित सेना को देखकर उन्होंने कहा था, क्या ही सुंदर वीरता की प्रतिमूर्ति है। इसके बाद सेवियर ने जब उन्हें ड्रेसडेन ले जाना चाहा, तो स्वामी जी बोले,
2: प्रोफेसर डायसन हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए।
0: अतः वे लोग वहां से सीधे बाल्टिक सागर के तट पर स्थित कील नगर की ओर चल पड़े और 8 सितंबर को वहां पहुंचकर एक होटल में आश्रय लिया। प्राध्यापक के साथ स्वामी जी के मिलने के विषय में श्रीमती सेवियर की स्मृति कथा से जो बातें ज्ञात होती हैं, वे इस प्रकार हैं।
3: बाल्टिक सागर तट के मनोरम पृष्ठभूमि में स्थित मनोरम कील नगर की ओर तथा वहां के विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर पॉल डायसन के सानिध्य में मेरा जो एक आनंदमय दिन बीता था, उसकी स्मृति के साथ अनेक मधुर घटनाओं के जुड़े होने की वजह से वो मेरे मानस पटल पर अत्यंत स्पष्ट रूप से अंकित है। यूरोपीय संस्कृतविद पंडितों में डायसन का स्थान सर्वोपरि है और उनकी दर्शन पर पकड़ भी अनुपम है। स्वामी जी के होटल में पहुंचने की सूचना पाते ही प्राध्यापक ने एक पत्र लिखकर उन्हें अगले दिन अपने साथ जलपान के लिए आमंत्रित किया और इसके साथ ही सौजन्यतापूर्वक मुझे तथा मेरे पति को भी आमंत्रित किया। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे हम उनके घर जा पहुंचे और हमें उनके पुस्तकालय में ले जाया गया। वहां पर अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर डायसन हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने सादर हमारा स्वागत किया। डायसन स्वयं जिन अनुवाद कार्यों में लगे थे, स्वामी जी ने उनमें रुचि ली तथा उनके बीच अनेक मुश्किल शब्दों के अर्थ एवं तात्पर्य के बारे में चर्चा होने लगी। स्वामी जी ने कहा कि परिभाषा की स्पष्टता ही मुख्य चीज है और भाषा का माधुर्य गौण है। स्वामी जी जिस प्रकार दृढ़ विश्वास के साथ शब्दों के तात्पर्य समझाने लगे और सूक्ष्म तत्वों का परिचय देने लगे, उसके फलस्वरूप जर्मन विद्वान को आखिरकार उन्हीं के मत को मानना पड़ा। भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा चल रही थी कि इसी बीच प्रोफेसर महोदय किसी दूसरे काम से उठकर चले गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने लौटकर देखा कि स्वामी जी कविता की एक पुस्तक के पन्ने पलट रहे हैं। इस कार्य में वे इतने तन्मय थे कि प्रोफेसर के आने की आवाज तक उनके कानों में न पहुंची। पुस्तक समाप्त कर स्वामी जी अध्यापक की ओर देखते ही समझ गए कि वे काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा,
2: पुस्तक पढ़ रहा था, शायद आप बहुत देर से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्षमा कीजिएगा।
4: इतने कम समय में आपने पूरी किताब पढ़ ली?
2: जी हाँ, और याद भी कर लिया है।
0: स्वामी जी ने उस पुस्तक का कुछ अंश और कविताएं ज्यों की त्यों सुना दी। विस्मय से अभिभूत होकर प्रोफेसर बोले,
4: इससे पहले आपने अवश्य इस पुस्तक को पढ़ा होगा, वरना केवल एक सरसरी निगाह से ही 400 पृष्ठ की किसी पुस्तक को आधे घंटे में याद कर लेना दुसाध्य क्या असंभव है।
2: संयत मना योगी के लिए ये असंभव नहीं है, मेरा यह विश्वास है। ये शक्ति सभी प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं मैं काम कांचन त्यागी सन्यासी हूं, आजन्म अखंड ब्रह्मचर्य के परिणाम में ये शक्ति स्वयं ही मुझ में आ गई है। पाश्चात्य देश में अनेक लोग इस पर विश्वास नहीं भी कर सकते हैं, परंतु भारत में ब्रह्मचर्य के बल पर इस प्रकार की स्मृति शक्ति के अधिकारी आज कम होने पर भी खत्म नहीं हुए हैं।
1: प्रोफेसर साहब निरुत्तर हो गए और उसी दिन से विस्वामी जी के

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। रात्रि के 10 बज चुके हैं। रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण सेवा का सफर आज यहीं तक। कल प्रातः फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपनी रेडियो मित्र भारती को दीजिए अनुमति। जय हिंद।